मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:55 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है। नमस्कार लखनऊ, और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, नंदिनी मिश्रा। स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदिनी का। दोस्तों, आंखें खोलिए, जल्दी से देखिए कितनी प्यारी सुबह आपका इंतजार कर रही है। न जाने कितनी संभावनाएं, कितनी खुशियां, कितने और बेहतर अवसर आज की ये सुबह आपके लिए लेकर आइए। तो भाई, नींद को भगाइए, अपने बिस्तर को छोड़िए, उस परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त कीजिए एक और खूबसूरत दिन की, एक और नई

0: शुरुआत के लिए और ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। फिलहाल नमस्कार लखनऊ में सुबह के 6 बजने वाले और ये समय है देश दुनिया की खबर प्राप्त करने का। तो आइए आपको सुनाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत में तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के

0: लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ नमस्कार। लखनऊ में सबसे पहले बात कृषि की, तो आज की कृषि चर्चा का विषय है आम के बागों की सामयिक देखभाल। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आम की व्यावसायिक बागवानी आप कर रहे हैं, वहां हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन इस समय क्या कुछ करें, कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एके मिश्रा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय आम के फल की तुड़ाई भी हो रही है, कहीं कहीं जहाँ विलम्ब से पकने वाली प्रजातियाँ पेड़ों पर हैं, तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन आम के बागों में क्या करें, कैसे करें, कब करें?
4: किसान भाइयों, बारिश शुरू हो गई है प्रदेश में, इसके साथ साथ जो है कीट और रोग का थोड़ा विस्तार होना लगता है।
3: हाँ।
4: और कुछ कीट और रोग जो हैं जो आम में प्रमुख हानि पहुंचाते हैं, वो इस समय भी बहुत प्रमुख होते हैं।
3: जैसे?
4: जैसे कि आम में अब देखिए लीफ वेबर है, जिसको टेंट कैटरपिलर कहते हैं
3: जी,
4: वो जो है वो लगने की शुरुआत होगी और हमको शुरू से ही उसकी जो है व्यवस्था कुछ करनी चाहिए।
3: और आगे चल करके गुच्छा बना लेगा,
4: जो कीड़े के लार्वी हैं वो पत्तियों को पहले खाना शुरू करते हैं, थोड़ा फिर जब उसकी उम्र बढ़ती है तो वो सब पत्तियों को आपस में मिला करके और पूरी पत्ती खा भी जाते हैं और एक जाला जैसा बनाते हैं। इसीलिए इसको जाला कीट भी कहते हैं और जाले के अंदर घुसे रहते हैं, इसलिए इसमें जो है बड़ी आसानी से दवाई भी डाली नहीं जा पाती है।
3: तो इसके प्रबंधन के लिए करें क्या बागवान भाई बहन?
4: इसके प्रबंधन के लिए ये करना होगा कि आप जो है जब पौधों के ऊपर इसको देखें तो उसको किसी निकालने वाले लग्गी से, जिसको कहते हैं, या तेज हसिया हो, या जो है CISH ने एक वेबर निकालने के लिए एक यंत्र बनाया है छोटा सा
3: जी,
4: तो उसको जो है इस्तेमाल करके आप जितने भी जाल झोंझ बने हुए हैं उनको निकाल के जमीन पे गिरा दीजिए। और साथ साथ है कि स्प्रे आप करेंगे भी, पेड़ पे भी स्प्रे करेंगे और जमीन पे जो लार्वी गिरे रहेंगे उनके ऊपर भी स्प्रे करेंगे। और ये स्प्रे जो होगा आपको लेमडा साइलोथ्रिन का जो है 1 ml पर लीटर, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव आप करें। और इसके अलावा आप क्विनोलफॉस का भी छिड़काव कर सकते हैं जो कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से होगा।
3: सब आम के बागों में तना बेधक कीट भी एक समस्या,
4: तना बेधक कीट भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है कीट है,
3: तो इसका प्रबंधन हो कैसे डॉक्टर साहब?
4: इसको तो जो है बहुत इसका आसान उपाय है, जितने भी छेद हैं आप मैनुअली जो जैसे साइकिल की तीली होती है, कड़ी जो लोहे की तीली होती है, उससे आप मैनुअली निकालिए तो बहुत से लार्वी निकल भी जाएंगे, उनको निकाल लीजिए। साथ साथ ये भी है कि यदि लार्वी नहीं भी निकलता है तो उसके अंदर जो है एक जिसमें गैस बनती है वैसी दवा उसमें अंदर थोड़ा सा डाल करके ऊपर से मिट्टी से भर देते हैं, जो डाइक्लोरवास है वो जो है उसको हम
3: रुई में बोर के
4: लगा दें, पहले है जैसे 5 ml पर लीटर के हिसाब से।

0: घोल बना दिया, रुई में उसको लगा दिया और उसके अंदर डाल करके और ऊपर से मिट्टी से उसके तने को बंद कर दीजिए,
1: यानी गीली मिट्टी,
0: गीली मिट्टी से बंद कर दीजिए, जिससे कि गैस अंदर बनी रहे और गैस से वो कीड़े मर जाएंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा,
2: एक जिसमें गैस बनती है वैसी दवा उसमें अंदर थोड़ा सा डाल करके ऊपर से मिट्टी से भर देते हैं। जो डाइक्लोरवास है वो जो है उसको हम
1: रूई में बोर के।
2: रूई में बोर के लगा दें, पहले है जैसे 5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना दिया, रूई में उसको लगा दिया और उसके अंदर डाल करके और ऊपर से मिट्टी से उसके तने को बंद कर दीजिए,
1: यानी गीली मिट्टी,
2: गीली मिट्टी से बंद कर दीजिए, जिससे कि गैस अंदर बनी रहे और गैस से वो कीड़े मर जाएंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी छेद हैं सब बंद हों, जिससे कि गैस अंदर अंदर है और सारे जो है कीटाणु उसमें मर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: मेरा मोबाइल नंबर है 98 38।
0: पानी भी लग जाता होगा, इसकी व्यवस्था करें कि जड़ के पास पानी ज्यादा ना लगे, जल निकास की व्यवस्था रहे, नहीं तो आपको जड़ में कुछ सड़न रोग भी लगते हैं। आजकल आम के बाग सूख भी रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें जल भराव नहीं हो, इसकी व्यवस्था रखें। साथ साथ ये है कि बाग की सफाई जैसे ही बरसात खत्म होगी आप अवश्य कर दें, और उसके बाद गुड़ाई करेंगे, जिससे कि बाद में जो है मिलीबग भी आने की संभावना कम हो जाएगी।
1: डॉक्टर AK मिश्रा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में कीट रोग प्रबंधन क्या कुछ करें, कैसे करें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
3: कृषि चर्चा में आज आम के बागों की सामयिक देखभाल के विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र, आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ आज की कृषि चर्चा यहीं संपन्न हुई। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में अब बारी है एक बहुत ही प्यारे से सुविचार की। विषय है आत्मविश्वास, स्वर एवं आलेख प्रेम चंद्र कौशल का।
4: दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति सफलता की बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है। सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आत्मविश्वास की होती है। आत्मविश्वास के बिना आप किसी भी दशा में सफल जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आत्मविश्वास का सीधा मतलब है खुद पर विश्वास करना। यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आत्मविश्वास में सफलता का वो जादू छिपा हुआ है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। मैं उस व्यक्ति को पराजित नहीं मानता हूं जिसे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि पराजित मैं ऐसे व्यक्ति को मानता हूं जिसने अपना आत्मविश्वास खोकर अपने को हारा मान लिया है। डर, शंका, निराशा एवं नकारात्मक विचार आत्मविश्वास मजबूत होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आपके मन में अपनी योग्यता अथवा क्षमता पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो उसे तत्काल निकाल दें। आज के दौर में हमारा जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। हमें मानकर चलना चाहिए कि जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, विफलताओं का भी आलिंगन करना पड़ सकता है। यदि आप पूरी तरह से निराश और हताश हो जाएं, तो आपका आत्मविश्वास आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर सकता है। आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करनी होगी जो आपके साथ रहकर आपके अंदर नकारात्मक विचार पैदा करते हों। दुनिया का इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है जिनकी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए और उन्हें तमाम चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर जिंदगी की तमाम विपरीत परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। जिस कार्य को लगातार समर्पण एवं निष्ठा के साथ करते रहने से आत्मविश्वास स्वयं ही जागृत हो जाता है। आपको अपने लक्ष्य को पूर्ण होने में किसी भी प्रकार की शंका, डर या घबराहट नहीं होनी चाहिए। स्वयं की शक्तियों पर विश्वास रखते हुए अपने काम में तब तक डटे रहें जब तक वह पूरा ना हो जाए। आपको अपनी क्षमता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका कोई मित्र या परिजन आपकी क्षमताओं पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करता है तो उनके शब्दों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। यदि आप उनके कहे हुए शब्दों एवं टीका टिप्पणी पर ध्यान देंगे

0: तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तथा आपके अंदर स्वयं के प्रति हीन भावना पैदा हो जाएगी। परिणाम स्वरूप आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। सदैव ये मानकर चलें कि सफलता का भाग्य से कोई संबंध नहीं है, सफलता का सीधा संबंध आत्मविश्वास से है। यदि आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचना है तो अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। यह कार्य कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास सफलता का पहला रहस्य है। आत्मविश्वास रूपी जलधारा के सामने बाधाओं की कठिन से कठिन चट्टानें भी चकनाचूर हो जाया करती हैं। यदि आप अपना आत्मविश्वास विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं खोते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यह सारा जहां भी आपके विरोध में खड़ा हो जाए और आप स्वयं को अकेला ही महसूस करें तो उस समय भी आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। यदि आप अपने स्वर्णिम भविष्य के प्रति पूरे आत्मविश्वास के साथ आशान्वित हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाएगा। इसलिए एक बेहतर जिंदगी जीने तथा सफलतियों की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए प्रत्येक दशा में आत्मविश्वास बनाए रखें।
1: तो जीवन में उपलब्धियां हासिल करनी है, अपनी मनचाही मंजिल हासिल करनी है तो आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। आज का सुविचार श्रोताओं अभी आपने सुना, विषय था आत्मविश्वास, स्वर एवं आलेख प्रेम चंद्र कौशल जी का। और इसी के साथ अब कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में हम आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं, प्रवाहित करते हैं आज की भक्ति धारा, आज की आराधना।

जो व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति में अपने मन को रमाता है, ईश्वर से उसकी उतनी अधिक निकटता बढ़ती जाती है।

ईश्वर के हर निर्णय पर सदैव विश्वास रखिए, क्योंकि वो हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, मगर ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि पूरे निर्विकार भाव से, समर्पण भाव से, विश्वास के भाव से हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए।

परमात्मा सब जानते हैं, इंसान की नियत को भी और उसके दिखावे को भी। इसीलिए अगर प्रभु हमें किसी विशेष परिस्थिति तक लाए हैं तो विश्वास रखिए उस परिस्थिति से भी हमें पार वो ही निकालेंगे।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे, इस शुभकामना के साथ हमारी आज की आराधना यही संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति, आज लीजिए सुनिए इसका भाग 230। आज इसके अंतर्गत आपको सुनवाने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें सरस्वती से भरत की मति फेर देने की देवगणों की प्रार्थना का वर्णन आता है।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सके। किंतु सरस्वती जानती थी कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

कांत परगांवकर और संगीत निर्देशन दिया था सतीश भाटिया ने। इसी के साथ श्री रामचरित मानस से गान संपन्न हुआ।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और जैसा कि आप जानते हैं इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं और ये समय होता है संस्कृत समाचारों का। तो आइए आपको संस्कृत में समाचार सुनवाते हैं और ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितम् यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलम् निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अन्तरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तन्त्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखण्डतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1 शततमो भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्तमञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीशाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सहापि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयं आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः।

0: अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूं मैं नंदिनी मिश्रा। फिलहाल नमस्कार लखनऊ में अब बातें स्वास्थ्य की, तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हमारे खान पान से जुड़ी एक ऐसी चीज की जिसे हम खाते तो हैं लेकिन अक्सर इसका महत्व नहीं समझते। आज हम बात करेंगे रफेज की, जिसे हिंदी में रेशा भी कहा जाता है। श्रोताओं, रफेज कोई खास खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि ये हर उस खाने में पाया जाता है जिसमें फाइबर होता है। ये वो हिस्सा होता है जो न तो पचता है और न ही हमारे खून में घुलता है, लेकिन यही अपचनीय भाग हमारी आंतों की सफाई करता है, पेट को हल्का रखता है और पाचन को सुचारू बनाता है। हम जो फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और बीज खाते हैं, उन सभी में अलग अलग मात्रा में रेशे होते हैं। इनका कोई स्वाद नहीं होता, कोई चमक नहीं होती, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये कहता है कि हर वयस्क को रोजाना कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर यानी रफेज जरूर लेना चाहिए। अब सवाल उठता है, इसकी जरूरत क्यों है? हमारे शरीर का पाचन तंत्र एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील प्रणाली है। जब हम रफेज से भरपूर खाना खाते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र में जाकर पानी सोखता है, मल को नरम बनाता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जो लोग कब्ज, गैस या भारीपन महसूस करते हैं, उनके लिए रफेज किसी प्राकृतिक औषधि से कम नहीं है। इसके अलावा रफेज ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। जब आप रेशे से भरपूर भोजन करते हैं तो वो धीरे धीरे पचता है, जिससे खून में शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। यही कारण है कि डायबिटीज के रोगियों को हमेशा फाइबर युक्त खाना खाने की सलाह विशेषज्ञ डॉक्टर्स देते हैं। रफेज कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित करता है। ये आंतों में मौजूद अतिरिक्त वसा को सोख लेता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। श्रोताओं, रफेज की एक और बड़ी खासियत ये है कि ये लंबे समय तक पेट भरा रखने का एहसास देता है। जब हम फाइबर से भरपूर खाना खाते हैं तो हमें जल्दी भूख नहीं लगती। यही वजह है कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए रफेज युक्त आहार एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। अब बात करें कि रफेज हमें किन चीजों से मिलता है। फल जैसे कि सेब, नाशपाती, अमरूद, संतरा और पपीता, इन सभी में खूब फाइबर होता है, खासकर जब आप इन्हें छिलके सहित खाते हैं। सब्जियां जैसे कि भिंडी, परवल, लौकी, गाजर, मटर, शलगम, शकरकंद, ये सब रफेज से भरपूर हैं। साबुत अनाज जैसे कि गेहूं, जौ, बाजरा, रागी और ओट्स, इनका नियमित सेवन भी फाइबर की अच्छी मात्रा देता है। दालें और चना, मूंगफली, तिल और अलसी के बीज, ये सभी भी रेशे से भरपूर होते हैं। कई बार हम अज्ञानता में रफेज को अपने खाने से निकाल देते हैं।

जैसे हम अनाज का छिलका हटा देते हैं, सब्जियों को जरूरत से ज्यादा छीलते हैं या छिलके सहित फलों को खाने से कतराते हैं, लेकिन दरअसल वही छिलका ही सबसे ज्यादा फाइबर का स्रोत होता है। आजकल बाजार में जो पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड आता है उसमें रफेज की मात्रा बहुत कम होती है। यही कारण है कि बाहर का खाना ज्यादा खाने वालों को अक्सर पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। श्रोताओं, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि रफेज दो प्रकार का होता है, एक होता है घुलनशील और दूसरा होता है अघुलनशील। घुलनशील रफेज पानी में घुलकर जेल जैसी संरचना बना लेता है और रक्त में शुगर व कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। ये दलिया, ओट्स, चिया सीड्स और फलों में मिलता है। वहीं अघुलनशील रफेज आंतों को साफ करता है, मल को नरम बनाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। ये सब्जियों

को नरम बनाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। ये सब्जियों, भूसी वाले अनाज और छिलकों में पाया जाता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब आप रफेज का सेवन बढ़ाते हैं तो साथ में पानी पीना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर फाइबर के साथ पानी ना लिया जाए तो इससे पेट में भारीपन या गैस की समस्या भी हो सकती है। तो आइए इस स्वास्थ्य चर्चा के माध्यम से हम रफेज यानी कि रेशे को लेकर अपनी सोच बदलें। ये कोई अलग से मिलने वाला पोषक तत्व नहीं, बल्कि हमारे हर रोज के खाने में मौजूद एक अनदेखा रक्षक है, जो चुपचाप हमारी आंतों की सफाई करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को हल्का बनाए रखता है। अगली बार जब आप खाना बनाएं या थाली सजाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कोई ऐसी चीज जरूर हो जो रफेज से भरपूर हो। सादा मूंग की दाल, एक कटोरी भिंडी की सब्जी या एक सेब, ये छोटे छोटे विकल्प आपके पेट को रोज आराम दे सकते हैं। आज की स्वास्थ्य चर्चा में श्रोताओं बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही सामान्य लेकिन उपयोगी तत्व के साथ, जो हमारे जीवन को सादगी के साथ संवारता है। तब तक अपने खाने में रफेज को जगह दीजिए और याद रखिए, सफाई केवल बाहर की नहीं भीतर की भी जरूरी होती है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

श्रोताओ, स्वास्थ्य चर्चा में आपने जाना कि हमारे जीवन में पौष्टिक आहार के साथ साथ रफेज खाने का भी बहुत महत्व होता है, जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। तो स्वास्थ्य चर्चा के बाद अब नमस्कार लखनऊ में बारी है कि आज अपनी विभिन्न सभाओं में हम आपके लिए जो कार्यक्रम लेकर आएंगे उनके बारे में आपको जानकारी दे दें।

आज रात 10 बजे रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिएगा रूपक, जिसका शीर्षक है इस्पात संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। लेखक शाहिद अनवर, संयोजन राजेश कुमार राय का और प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में मनीष कुमार की वार्ता सुनिएगा, सोशल मीडिया और हमारा जीवन। शाम 7:30 पर सुनिएगा स्वास्थ्य मैगजीन स्वास्थ्य वार्ता। डॉक्टर दिनकर कुलश्रेष्ठ बताएंगे डिजिटल डिटॉक्स और मेंटल हेल्थ के बारे में। आपसे बातचीत करेंगे देवाशीष। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा बलिया और फिरोजाबाद जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम, जो कि आज प्रयागराज केंद्र की पेशकश होगा। इसमें पहले समाज फरमाइएगा मकाला, नाजिश प्रतापगढ़ी की शायरी में इंसानियत और रवादारी का पैगाम। मकाला निकार होंगे डॉक्टर नौशाद कामरान। इसके अलावा कलामी शायर के तहत सुनिएगा खुर्शीद अंबर से उनका कलाम। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ इंटरनेशनल रॉक डे के अवसर पर सुनिएगा गीत गाया पत्थरों ने। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा, विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। इसमें डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा, स्टार्टअप दशा और दिशा। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। कार्यक्रम नई उड़ान होगा शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम में डॉक्टर

माखनलाल से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। बरसात की प्रमुख बीमारियां और आयुर्वेदिक उपचार, आपसे भेंट करेंगी नीना सोनकर। किसान भाई सुनिए अपना कार्यक्रम खेती किसानी शाम 6:50 पर। इसमें डॉक्टर आनंद सिंह से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। बरसात में पशुओं का खान पान और रख रखाव, आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आज सुनिएगा सितार वादन कलाकार होंगे उस्ताद नसीर खान। लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा नीरजा प्रकाश के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब प्रस्तुत है आज की विविधता।

आज की विविधा गीत गाया पत्थरों ने। जी हाँ, पत्थर जो बोलते नहीं, चलते नहीं, लेकिन अगर ध्यान से सुनिए तो इनके भीतर करोड़ों वर्षों का इतिहास धड़कता है। हर चट्टान, हर पहाड़ और हर शिला अपने भीतर समय का ऐसा संगीत समेटे हुए है जिसे प्रकृति ने स्वयं रचा है। आज अंतर्राष्ट्रीय रॉक डे के अवसर पर आइए इन्हीं पत्थरों की अनकही कहानी सुनते हैं।

जब हम किसी पहाड़ को देखते हैं तो हमें केवल एक विशाल चट्टान दिखाई देती है, लेकिन भूवैज्ञानिक बताते हैं कि हर चट्टान धरती के बनने, बदलने और विकसित होने की कहानी अपने भीतर संजोई रहती है। कहीं ज्वालामुखी के लावे ने इन्हें जन्म दिया, कहीं नदियों ने हजारों वर्ष तक इन्हें तराशा, तो कहीं हवा और बारिश ने इन्हें नया रूप दिया। प्रकृति की हर चोट ने इन्हें और भी सुंदर बना दिया। यानी पत्थरों का ये गीत हमें सिखाता है कि कठिनाइयां इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि सही मायनों में गढ़ती हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी मुश्किलों की आंधियां आती हैं, कभी असफलता, कभी आलोचना, कभी अकेलापन। लेकिन जो व्यक्ति हर चुनौती को स्वीकार करता है वो भी एक साधारण पत्थर से तराशी हुई सुंदर मूर्ति बन जाता है। शायद इसी कारण कहा जाता है मूर्तियां पत्थरों से ही बनती है, मिट्टी से नहीं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ की चट्टानें केवल भूगोल नहीं, हमारी संस्कृति भी है। कहीं राजस्थान के अरावली पर्वत, कहीं हिमालय की विराट श्रृंखलाएं, कहीं मध्य प्रदेश की अद्भुत शिलाएं, तो कहीं दक्षिण भारत की प्राचीन चट्टानें, इन सब ने सभ्यता को जन्म लेते देखा है। इन पत्थरों पर बने मंदिर, गुफाएं और स्मारक आज भी हमारे पूर्वजों की कला, विज्ञान और आस्था की जीवित पहचान है। अजंता और अलोरा की गुफाएं हो या प्राचीन मंदिरों की भव्य शिल्प कला, ये सब हमें बताते हैं कि

पत्थर केवल कठोर नहीं होते, इनके भीतर सौंदर्य भी छिपा होता है। लेकिन आज यही चट्टानें हमारी लापरवाही का बोझ भी झेल रही हैं। अवैध खनन, पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई, विस्फोट और पर्यावरण की अनदेखी, इन्हें प्रकृति के इस संगीत को धीरे धीरे मौन करना शुरू कर दिया है। जब एक पहाड़ टूटता है तो केवल पृथ्वी नहीं, पत्थर ही नहीं गिरती, नदियों का संतुलन बिगड़ता है, वन्य जीवों का घर उजड़ता है और भविष्य की पीढ़ियों से प्रकृति की एक अनमोल धरोहर छिन जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रॉक डे के केवल उत्सव ही नहीं मनाने चाहिए, ये दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं बल्कि प्रकृति के इन मौन कलाकारों के प्रति सम्मान और संरक्षण का संकल्प लेने का अवसर भी है। सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, यदि ये पत्थर सचमुच बोल पाते तो शायद कहते, हमने करोड़ों वर्षों तक धूप सही, बारिश सही, तूफान सही, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित धरती दे सके। अब हमारी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कितनी गहरी बात है, जो स्वयं कभी शिकायत नहीं करते वही हमें धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। तो आइए आज इस अंतर्राष्ट्रीय रॉक डे पर हम भी एक छोटा सा संकल्प लें। प्राकृतिक धरोहरों का सम्मान करें, पहाड़ों और चट्टानों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचें। प्रकृति को केवल संसाधन नहीं अपनी विरासत मानेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती का एक अनमोल संगीत सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि पत्थर कभी शब्दों में नहीं बोलते, लेकिन उनका मौन भी एक गीत होता है, एक ऐसा गीत जो हमें धैर्य सिखाता है, संघर्ष सिखाता है और ये विश्वास भी देता है कि समय ही हर परीक्षा के बाद जीवन और अधिक मजबूत होकर उभरता है। तो दोस्तों, ये था आज का विविधा गीत गाया पत्थरों ने। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति, विविधा के एक और अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़

0: वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में पौधरोपण महाअभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाअभियान एक पेड़ माह के नाम के तहत कल 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है। नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने वनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वानिकी आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौसी का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए पौधरोपण महाअभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40,29,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: कल प्रदेश भर में जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगंदरा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। कल से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे।
1: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस से आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कल अयोध्या में बताया कि आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
2: मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। एक रिपोर्ट।
3: EPFO की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी अंक के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश में कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़े मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
4: मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं, जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
0: इस बीच बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, आगामी 22 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला। और सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में आइए अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज लीजिए प्रस्तुत है सारंगी वादन। कलाकार हैं उस्ताद नसीर खां। आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं सारंगी पर राग नट भैरव, जिसमें विलंबित लय झूमरा ताल में निबद्ध है और मध्य लय 3 ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे सारंगी वादन। कलाकार थे उस्ताद नसीर खां। आज आपने प्रस्तुत किया सारंगी पर राग नट भैरव, जिसमें विलंबित लय झूमरा ताल में निबद्ध थी और मध्य लय तीन ताल में निबद्ध थी। इसी के साथ अब हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001

0: 8242 पर
1: 8700014242।
0: श्रोताओ, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा आज का नमस्कार लखनऊ। लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को। फिलहाल सुबह के 8 बजने वाले हैं और आइए समाचार प्रभात सुनवाने के लिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा

0: देंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी।

0: सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मूज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से

0: हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। अब हम लेकर आए हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। साथियों, कहते हैं ना कि कहते क्या है, हमें सबको मालूम ही है कि पौधे लगाने से हमें क्या क्या मिलता है। पौधे लगाने से पर्यावरण संतुलन बनाने में हमें सहयोग मिलता है। पौधे लगाने से जो क्लाइमेट है वो एकदम सुचारू रूप से बना रहता है। बहुत से ऐसे लाभ हैं जो पौधों से, पेड़ों से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि फल भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में सभी लोगों का कहना होता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, जिससे कि हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का जो क्लाइमेट है वो सुचारू रूप से चलता रहे। और ऐसे में बरेली शहर में एक बड़ा ही महायज्ञ का आयोजन किया गया। साथियों, हम आपको बता दें कि 12.5 घंटे में जिले भर में रोप दिए गए, मतलब लगा दिए गए लगभग 35,81,000 पौधे। तो ये तो बड़ा एक बहुत बड़ा काम है जो हमारे बरेली शहर ने किया है। ऐसे में पौधारोपण महायज्ञ में कल जो बीत गया, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जिले भर में 35,78,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 15 मिनट पहले 11:45 पर ही लक्ष्य से अधिक 35,81,000 पौधारोपण कर लिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर 7.80 लाख पौधारोपण किया गया था। इस सीजन में अब तक कुल लक्ष्य 43,58,000 सापेक्ष 43,061,000 पौधे रोपे गए। सेक्टर अधिकारी स्तर से हर घंटे रिपोर्ट भी दी गई। मुख्य कार्यक्रम जो पौधारोपण का हुआ वो मुख्यतः बरेली लखनऊ हाईवे पर बड़ा बाईपास के पास हुआ, जिसमें बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, आम जनता का भी इसमें सहयोग रहा। तो ये एक इंस्पायर करने वाली घटना कह लीजिए या कार्य कह लीजिए हुआ है। और हम सभी को अपने घर के आसपास पौधा जो भी होता है, अगर जो भी सरल तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं पौधों को, आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी हमारे पेड़ पौधे ही देते हैं। तो जीवन देने वाले इन पौधों को अगर हम काटें ना, और जितने ज़्यादा पौधे हम लगाएंगे वो बड़े होकर हमें बहुत सारे लाभ प्रदान करेंगे।

साथियों, बरेली शहर में आपके अपने हमारे सभी के शहर बरेली में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन एक कार्य अक्सर हम और आप देखते हैं कि जो पानी की निकासी का साधन होते हैं, हम बात कर रहे हैं नालों की, तो उन नालों में कहीं ना कहीं कुछ जगह पर वो नाले चोक हो जाते हैं और पानी रुक जाता है और बारिश का मौसम आ भी चुका है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ऐसे में जब नाले चोक हो जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं कि पानी भर जाता है और सड़कों पर आ जाता है, और जिनके मकान, जिनके घर सड़क के निचले स्तर पर हैं, मतलब ज़मीन से सटे हुए हैं, उनके घरों तक में पानी चला जाता है। चूँकि गंदा पानी होता है तो बहुत सारे कीटाणु विषाणु घरों में भी पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी हमारे शहर, आपके शहर बरेली में बाकी हैं। नालों पर विशेष ध्यान भी दिया जाता है, लेकिन समय समय पर, यहाँ तक कि अगर हम ये कहें कि रोज ही अगर नालों पर, जो नालों की सफाई है, उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत से हमारे बरेली शहर के जो कर्मचारी हैं या उनके ऊपर जो अधिकारी हैं या जो हमारे शहर के सभासद हैं, वो इस ओर ध्यान देते हैं, ज़रूर देते हैं, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ दिन नालों की सफाई की वजह से पानी का

निकास अच्छी तरह हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से यथास्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे शहर के जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, या हमारे जो सभासद, हमारे जो भी भाई बहन हैं, वो अगर नित्य प्रति इस ओर ध्यान देंगे तो ज़रूर हमारे शहर बरेली का जो पानी है निकासी के लिए नालों में जाता है, वो बेरोक टोक आगे बढ़ता जाएगा और हमारे शहर को साफ रखेगा।

साथियों, हम इस गाने से पहले बात कर रहे थे बरेली के जो पानी निकासी के साधन हैं उन पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं। ऐसे ही हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के आगे का जो रोड है, जब हम शहर की ओर से आते हैं, फ्लाईओवर पार करके आगे की ओर बढ़ते हैं बदायूं रोड पर, तो एक बाएं हाथ पर बदायूं रोड पर आगे जाने के लिए जब बढ़ते हैं तो एक बहुत सारी जगह पर एक गड्ढा सा हो जाता है और अक्सर हो जाता है। उस ओर भी हम संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों से को ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब गाड़ी या बाइक फ्लाईओवर से उतरती है, और चूँकि फ्लाईओवर पर स्पीडली गाड़ी चलती है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, और उसके बाद अचानक गड्ढा सामने आ जाता है तो दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है और अक्सर हो भी जाती है दुर्घटना। इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब आकाशवाणी बरेली के आगे की ओर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर भी पानी निकासी का साधन ना के बराबर है। एक नाला है आकाशवाणी बाउंड्री के बराबर में, वो अक्सर बहुत सारी कीचड़ गंदगी ऑफिस के बाहर जमा कर देता है। अब चूंकि हमें ड्यूटी पर आना है, सभी कर्मचारियों को अधिकारियों को ड्यूटी पर आना है, तो वो तो आएंगे ही। चूंकि हम अपनी जनता और बहुत से तमाम लोगों से जुड़ते हैं, बड़े एनजीओ हमें सुनते हैं, आकाशवाणी बरेली को सुनते हैं, तो हम लोग कहना चाहेंगे कि अगर संभव हो तो आप लोग इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव वाइब को आपके पास भेजते हुए आपको बता रहे हैं कि बरेली में जो रेलवे क्रॉसिंग होती थी ना, वो उस जगह जब जाम लग जाता था और बड़ी तेज बारिश या धूप होती थी तो बड़ी समस्याएं होती थी। तो ऐसे में शहरी क्षेत्र यानी बरेली के शहरी क्षेत्र में 5 रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की समस्या के समाधान के लिए 3 अंडरपास बनाने का काम चल रहा है। नैनीताल हाईवे पर DRM ऑफिस और यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर मंडल के बीच अंडरपास पर अंतिम चरण का काम चल रहा है। सिटी शमशान भूमि अंडरपास का काम आधा हो चुका है और हॉटमैन अंडरपास में एक तरफ की जो अप्रोच रोड बनने को शेष रह गई है। शेष अंडरपास से वाहनों का आवागमन शुरू होने से किला, बाकरगंज, हार्टमैन, रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।

साथियों, अब प्रोग्राम नमस्ते बरेली में बात कर लेते हैं बरेली में आज की ट्रैफिक व्यवस्थाओं के विषय में। श्रोताओं, आज यानी कि 13 जुलाई 2026 में जो बरेली की ट्रैफिक व्यवस्था है वो सामान्य रूप से रहेगी। हाँ, एक जरूरी सूचना इसी सेगमेंट में शामिल करते हैं कि नाले की सफाई के कारण जो पिछले दिनों जो अंधी पुलिया मार्ग कहते हैं, जिसको सुभाष नगर की ओर जो जाने वाला रास्ता है, वो वहाँ पर काम चल रहा है, इसलिए यातायात पुलिस ने इस रूट पर डायवर्जन लागू किया हुआ है। अगर आप लोग भी उधर से निकलना चाहते हैं तो कृपया हमारी इस सूचना को ध्यान में रखिएगा और जो डायवर्जन किया गया है उसके अनुसार आगे बढ़िएगा। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था की जब बात हुई है तो अब देखते हैं कि शहर में अब ई रिक्शा का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और अक्सर ये भी देखा जाता है कि कहीं पर अगर ई रिक्शा जाना संभव नहीं होता है या हमारे पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी उस रूट पर ई रिक्शा का प्रयोग नहीं होने देते हैं, लेकिन हमारे जो भैया लोग होते हैं ना ई रिक्शा चलाने वाले, वो लोग चूँकि वो शहर में रहते हैं उन्हें गलियां मालूम हैं, तो गलियों से होते हुए वो अपनी उस सवारी को जिन्हें अगर मान लीजिए कुतुब खाने पर छोड़ना है और मटकी चौकी से आगे जाने का रास्ता नहीं दिया गया है ई रिक्शा को, तो वो उनको मालूम है कि हमें कौन सी गली से कहाँ निकलना है और जहाँ कुतुब खाने सब्जी मंडी के पास या मनिहारन गली के पास उनको पहुँचना है तो हम सवारी को कैसे पहुँचाएंगे। तो प्लीज़ आप ट्रैफिक व्यवस्था में ई रिक्शा वाले जितने भी हमारे भैया लोग हैं, अगर 100.4 FM आकाशवाणी बरेली का प्रसारण आप अपने ई रिक्शा में सुन रहे हैं तो कृपया ध्यान दें कि जहां आपको कानूनी रूप से जाने की इजाज़त नहीं है वहां ना जाएं। आप जो व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक की उनमें सहयोग करें तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

दोस्तों आज का प्रोग्राम नमस्ते बरेली यहीं तक। कार्यक्रम में जो भी हमने आपसे बात करी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ईमेल या खतों के माध्यम से दे सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बहरहाल कार्यक्रम से अपने दोस्त संजय को दें इजाजत।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से 8:45 पर हम लेकर आए हैं कुछ लोकगीत। आइए आपको पहला लोकगीत सुनवाते हैं राकेश देवेश की आवाज में।

अगला लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 14 जुलाई को शाम 7:30 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार 13 जुलाई को, यानी कि आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुने, विषय प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 13 जुलाई यानी कि आज शाम 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200।

साथियों, ये ब्रज गीत आपने सुना घनश्याम शर्मा की आवाज में। एक और ब्रज गीत सुनते हैं संवेद स्वर में।

0: साथियों, अभी हम आपको सुनवा रहे थे कुछ लोकगीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 9 बजे हैं। लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला।
1: लीजिए सुनिए, दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू,
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
2: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
2: 9837000048।
5: नमस्कार श्रोताओं, प्रोग्राम है सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला और मेरे साथ मौजूद हैं दीपमाला हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: स्वागत है सब लोगों का।
5: डॉक्टर साहब, सांस फूलना एक ऐसी समस्या है जिसको कई बार तो छुपाया भी जाता है और कई बार बताया जाता है, तो क्यों ना आज सांस फूलने के बारे में आपसे जानकारी हासिल की जाए।
6: जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है।
5: डॉक्टर साहब, सांस फूलने की जहां तक बात है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
6: ठीक है, देखिए, सांस फूलने की वजहें तो 5 हो सकती हैं, लेकिन हम सबसे पहली 2 नॉर्मल वजहों पे, 2 बीमारियों से बात शुरू करते हैं
5: जी।
6: पहली है एलर्जी या ब्रोंकाइटिस
5: जी,
6: जैसे एलर्जी, इसनोफीलिया या ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं। और दूसरा है हृदय रोग।
5: अच्छा।
6: यानी कि कोरोनरी डिजीज, हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाना, हार्ट बड़ा हो जाना या हार्ट फैल जाना जो आमतौर पर कहा जाता है। ये दोनों ही बीमारियां आज की तारीख में बहुत ज्यादा कॉमन है
5: जी।
6: उसके बाद हम बात करेंगे मार तमाम और सारी छोटी छोटी वजहें क्या हो सकती हैं सांस फूलने की
5: जी।
6: तो नंबर 1 वजह जिसे हम लोग इसनोफिलिया या एलर्जी कहते हैं, ये आज की तारीख में बहुत से लोगों में देखी जा रही है। कभी कभी लोग एलर्जी को अस्थमा से कंफ्यूज कर जाते हैं
5: जी।
6: ब्रोंकल अस्थमा ऐसी कंडीशन होती है जो काफी लंबे समय तक चलती है, जिनको होनी होती है वो कम उम्र में ही हो जाती है, छोटे बच्चों में, और बड़ी उम्र में आने पे काफी हद तक कम हो जाती है। ब्रोंकल अस्थमा का परमानेंट ट्रीटमेंट कोई नहीं होता है, और उस समय के ब्रोंको डायलेटर लेके या सूखने वाले कैप्सूल लेके या दवाइयां लेके उसको काफी कंट्रोल में किया जा सकता है
5: जी।
6: दूसरी प्रॉब्लम होती है एलर्जी, जो कि ब्रोंकल अस्थमा की तरह लगती है। इसमें होता क्या है, अक्सर लोगों को नाक सी राइनाइटिस होती है, नाक से छींके आती है, मौसम बदला, परफ्यूम सूंघा, धूल पड़ी या कोई मिर्च हुई से छींके आने लगती है। छींके आने के बाद आवाज बैठ सकती है, और उसके बाद पूरा उनको सांस में सीटियां बजना और चलने फिरने पे सांस फूलने की दिक्कत शुरू हो जाती है।
5: अच्छा।
6: इसको कि ब्रोंकाइटिस कहते हैं
5: जी।
6: ऐसी आजकल समस्याएं बड़ी उम्र के लोगों में जो मेट्रोपॉलिस में रहते हैं या ज्यादातर जिनका सड़क पे रहने का काम है, जो प्रदूषण से भी प्रभावित होते हैं, उसमें भी ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ती जाती है
5: जी।
6: और ऐसे लोगों में सोने पे सुहागा तब हो जाता है अगर वो स्मोकर्स होते हैं या स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू खाते हैं। तो अगर कोई एलर्जी का पेशेंट या जिसके परिवार में एलर्जी की संभावना है, ऐसा पेशेंट बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू करेगा तो उसकी सांस बहुत तेजी से गड़बड़ होगी।
5: अच्छा।
6: और दूसरा कारण होता है सांस फूलने का, जो मिडिल एजेड लोगों में होता है, यानी कि 40-45 साल की उम्र के बाद के लोगों में होता है, वो होता है हृदय रोग की वजह से सांस फूलना।
5: अच्छा, हृदय रोग की वजह से किस तरह के लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब सांस फूलने के?
6: हमारा हृदय एक पंप है
5: जी,
6: और उसका काम है खून को पंप करके पूरे शरीर में, खास तौर से फेफड़े तक लेके जाना
5: जी,
6: जहां पे उनमें ऑक्सीजन फिल होती है, और ऑक्सीजन लेकर के वो सारे शरीर में भी खून का पंप हार्ट ही करता है।
5: अच्छा।
6: तो अगर हार्ट की खुद की दीवारों की क्षमता कम हो जाए, ताकत कम हो जाए, और ऐसा होता है उन लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, और जो कहते हैं कि मैं तो अर्जुन की छाल खा के और कभी कभी दवाई खाता हूं ऐसे ही ठीक चल रहा हूं, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है।
5: अच्छा।
6: उनमें अधिकतर हृदय फैल जाता है, उसकी दीवारें पतली हो जाती हैं और पंपिंग पावर कम हो जाती है
5: जी।
6: हृदय की पंपिंग पावर कम हृदय रोग हार्ट अटैक के बाद भी हो सकती है।
5: अच्छा।
6: हार्ट अटैक का मतलब हृदय की दीवारों में खून का दौरा अचानक रुक जाना, जिससे उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाएं और उनकी ताकत चली जाए।
5: अच्छा।
6: तो ज्यादा प्रेशर चलने की वजह से हार्ट को गुब्बारे की तरह फूल जाना, या दीवार में थक्के आने की वजह से हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाना
5: जी।
6: या ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल हो

0: या ब्लड कंट्रोल में भी हो तब भी शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये बताया गया है कि अगर 5 किलो वजन बढ़ जाए तो हृदय को कम से कम आधा किलोमीटर ज्यादा पंप करना पड़ेगा, आधा किलोमीटर लंबी कैपिलरीज का पतली नाड़ियों का जाल बढ़ जाएगा।
1: जी जी।
0: तो जरा सा वजन बढ़ने से, और खासतौर से जो लोग काफी ज्यादा भारी होते हैं, उन लोगों के हृदय को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो थक जाता है, फैल जाता है। ऐसे लोग की सांस जब फूलती है तो वो धूल धक्कड़ से नहीं फूलती है, वो एक तो चलने पर फूलती है, जीना चढ़ते हैं तो सीने में भारीपन लगने लगता है, उनके पैरों में सूजन आने लगती है क्योंकि हार्ट पंप करके पानी को नीचे से ऊपर नहीं ले जा पाता है, और सबसे बड़ा लक्षण होता है रात में सोने के 2 घंटे बाद उनको ऊब जैसे लगने लगती है, मन करता है खिड़की खोल लो, खड़े हो जाओ, पानी पी लो, चल लो,
1: घबराहट होती है।

0: करता है, खिड़की खोल लो, खड़े हो जाओ, पानी पी लो, चल लो,
1: घबराहट होती है,
0: घबराहट होती है और सांस फूलती है लेटने पर और बैठने पे कम हो जाती है।
1: अच्छा,
0: इसको पीएनडी या पैरोजिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया कहते हैं।
1: अच्छा,
0: उसके माने यह है कि जब आदमी लेट गया तो पैरों का खून भी लंग्स में और हार्ट की तरफ आ गया और हार्ट की पंपिंग पावर कम है तो हार्ट वो लंग से पूरा पंप नहीं कर पाता है
1: जी।
0: तो लंग्स को ऐसा लगने लगता है जैसे उनकी सांस फूल रही है और ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाता है।
1: कम हो जाता है। ये तो बात रही डॉक्टर साहब, आपने मैकेनिज्म बताई, जो तरीका है वो बताया। कई बार कहते हैं कि हृदय का साइज बढ़ गया है, तो हार्ट का बढ़ना या साइज का बढ़ना ये क्या होता है?
0: देखिए, एक व्यक्ति के हार्ट का वजन होना चाहिए 120 ग्राम
1: जी।
0: जब उसके अंदर खून भरा हुआ है और 105 या 100 ग्राम जब खून उसमें से निकला हुआ है
1: जी।
0: अगर आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ चले, आदमी को खून की कमी हो या आदमी को थायराइड हो, तो फिर हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: जिसकी वजह से उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं। कुछ समय तक तो दीवारें मोटी करके वो ज्यादा काम करने लगता है
1: जी।
0: मगर कुछ समय के बाद, खास तौर से जब मेल न्यूट्रिशन हो, पोषक तत्व पूरे ना हो
1: जी,
0: तो वो फैल के पतला हो जाता है। इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं।
1: अच्छा, इसी को हार्ट का साइज बढ़ना,
0: हार्ट का साइज बढ़ना कहते हैं। हार्ट का साइज बढ़ दरअसल वॉल्वुलर हार्ट डिजीज में भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो रेयर बीमारियां हैं आज की तारीख में। किसी के हार्ट का मेन वॉल्व या छोटा वॉल्व का मुंह पतला हो जाए तो उससे पीछे का हिस्सा फूल जाता है, वो पूरा हार्ट नहीं फूलता है, हार्ट का एक चैम्बर फूलता है और उसका इलाज ऑपरेशन होता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो कुछ खास वजह आपने बताई, बीमारियों के नाम भी लिए, और भी इसके अलावा कोई वजह होती है सांस फूलने की?
0: देखिए, बिल्कुल, नंबर वन वजह सांस फूलने की होती है खून की, हीमोग्लोबिन की कमी होना।
1: अच्छा,
0: खास तौर से कम उम्र की बच्चियों में अक्सर खून की कमी हो जाती है
1: जी।
0: जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनको खून की कमी हो जाती है, जिनको बवासीर या दूसरी दिक्कतें होती हैं, जो लोग बिल्कुल प्योरली वेजिटेरियन होते हैं जिनका खाना पीना ठीक नहीं होता, आयरन की कमी से या विटामिन B12 की कमी से उनको खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी को समझ लें, खून इस तरह से है, जैसे मान लीजिए बाल्टी से आप पानी निकाल रहे हैं बाहर
1: जी,
0: और अगर आप मग्गे की जगह आप छोटी ग्लेशिया यूज करने लगे तो आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल बार बार हाथ चलाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो रक्त की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है।
1: अच्छा।
0: तो उतना ही ऑक्सीजन बचाने के लिए उसको डबल काम करना पड़ता है
1: जी।
0: तो एनीमिया या खून की कमी होना सांस फूलने का या थकान होने का एक नंबर थर्ड कारण है।
1: इलाज के विषय में बताइए डॉक्टर साहब, चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सांस फूलना कई बीमारियों के साथ जोड़ा जाता है जैसा आपने बताया, इलाज कैसे होता है?
0: देखिए, अगर खून की कमी की वजह से सांस फूल रही है तो सबसे पहले आपको एक जांच CBC करानी होती है
1: जी।
0: उसमें RBC का साइज देखना होता है।
1: अच्छा।
0: अगर RBC का साइज बहुत छोटा हो गया है और खून की कमी है तो इस बात का लक्षण होता है कि शरीर में आयरन की कमी है, माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया जिसको कहते हैं
1: जी।
0: और अगर तब भी डाउट हो तो आप आयरन स्टडीज करा सकते हैं, खून में आयरन की मात्रा, खून में ट्रांसफरिन की मात्रा या टोटल आयरन बैरिंग कैपेसिटी, रक्त की आयरन को ले जाने की मात्रा।
1: अच्छा।
0: इनकी जांच करा के सिद्ध कर सकते हैं और उसका इलाज वही होता है, आयरन वाली चीजें खाना। आयरन वाली चीजों का मतलब ये नहीं कि ब्लेड खाने लग जाएं या चम्मच खाने लग जाएं, उसका मतलब आयरन, एलिमेंटल आयरन जिसमें ज्यादा हो, या तो आयरन के कैप्सूल ले लें, टैबलेट ले लें। लेकिन आयरन ओरल खाने से अक्सर लोगों को गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी की दिक्कत होती है
1: जी।
0: आयरन अगर बहुत कम है, 5 ग्राम से कम है या 6 ग्राम से कम है या विशेष परिस्थितियां हैं, तो आयरन के इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। आजकल जो है माल्टोस आयरन आता है जो कि 1 ग्राम तक भी एक ही दिन में लगाया जा सकता है
1: जी,
0: जिससे काफी तेजी से आयरन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है
1: जी।
0: और जो रोजमर्रा के खाने की चीजें हैं जैसे कि खजूर, अनार, चुकंदर
1: जी,
0: गुड़, पालक, इन सब चीजों में आयरन की बहुत यात्रा होती है
1: जी।
0: तो इन चीजों को खाने से भी आयरन बढ़ाया जा सकता है।
1: अच्छा।
0: दूसरा कारण खून की कमी होने का होता है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी होना
1: जी।
0: CBC कराएं तो इसमें RBC का साइज बढ़ा हुआ दिखाई देता है, तो कहते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया।
1: अच्छा।
0: मतलब RBC का साइज बड़ा हो गया, रंग कम है, हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन साइज बहुत बड़ा है। ऐसा B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है
1: जी।
0: और इसमें बस B12 के इंजेक्शन लगा लो तो मरीज बड़ी तेजी से हीमोग्लोबिन ठीक हो जाती है।
1: आपने जो हृदय की बात बताई, हार्ट के विषय में जो कहा, अगर उस तरह के मरीज हैं, उस तरह की समस्या है, तो उसका इलाज किस तरह होता है? ऑपरेशन होता है या फिर कुछ और इलाज है?
0: देखिए, अगर वाल्व की वजह से हृदय फैल के बड़ा हुआ है, हृदय का चैम्बर, तो वाल्व को खोलना पड़ेगा, उसके लिए ऑपरेशन या बैलून वाल्वोप्लास्टी की जरूरत पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: लेकिन पूरा अगर हृदय

0: ही फैल के बड़ा हो गया है, तो उसमें हैं तो कई सारे ऑपरेशन लेकिन वो अनप्रैक्टिकल हैं और काफ़ी ज़्यादा लागत के हैं, विषम परिस्थितियों में ही करे जाते हैं।
1: जी
0: अगर हृदय फैल के बड़ा हो गया है तो कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हृदय की पंपिंग पावर को ठीक करती हैं उनको दे करके कुछ समय के अंदर हार्ट की पंपिंग पावर को ठीक करा जा सकता है।
1: जी
0: और दूसरा जो छोटे कारणों हीमोग्लोबिन की कमी होना, आयरन की कमी होना, इन सब चीज़ों को करेक्ट करके भी मरीजों को आराम दिया जा सकता है।
1: जी सीओपीडी एक बीमारी का नाम कई बार लिया जाता है सर, सीओपीडी के इलाज के विषय में आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
0: सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज उन लोगों में होती है जो स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू करते हैं, या जो ऑर्गेनिक डस्ट को एक्सपोज होते हैं, कपास करने वाले, कोयले की खान में काम करने वाले,
1: जी
0: पाउडर जिनके पास बार बार पड़ता हूँ, उन लोगों को न्यूमोकोनियसिस की वजह से और स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी होती है। सीओपीडी का मतलब यह है कि जो फुसफुस धमनियाँ होती हैं, एल्वियोलाई होते हैं,
1: जी
0: सबसे आखिर में बहुत छोटे छोटे अंगूरों के दाने के बराबर, अंगूरों जैसे बिल्कुल छोटे छोटे सुई के नोक के बराबर एल्वियोलाई होते हैं, जिनके फूलने और पिचकने से हवा अंदर और बाहर आती है
1: फेफड़ों में।
0: फेफड़ों के अंदर,
1: जी
0: देखिए ना, हमारे जो सांस लेने की गली है, ये टेटुआ है, गला है, मुंह से टेढ़े तक आई, इसके टेढ़ों के दो हिस्से हो गए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाले के 5 हिस्से, लेफ्ट साइड वाले के 4 हिस्से, फिर उसके बाद 4 के 4 और 4 के 4 और 4 के 4, ऐसे करके 30-32 टाइम ये नाड़ियां डिवाइड होती हैं,
1: जी
0: और आखिर में जाकर जो सबसे छोटी जो रास्ता होता है उसको एल्वेलाई कहते हैं। उसमें सिर्फ बहुत पतली सी स्किन की मेम्ब्रेन होती है जिसके फूलने और निकलने से हवा अंदर और बाहर जाती है।
1: जी
0: तो अगर इनकी ये मेम्ब्रेन्स या झिल्लियाँ मोटी हो जाएं, जो कि सीओपीडी में होता है, या फैल के बड़ी हो जाएं, या जो आखिर के 3, 4, 5 के गुब्बारे हैं वो टूट के बड़े गुब्बारे बन जाएं, जिसको इम्फाइसीमा कहते हैं,
1: जी
0: तो या उनके अंदर सूजन आ जाए, बलगम आने लगे, जिसको कि ब्रोंकाइटिस कहते हैं,
1: जी
0: तो ऐसी स्थिति को सीओपीडी कहते हैं।
1: अच्छा
0: ऐसे व्यक्तियों का परमानेंट इलाज नहीं होता है, उनको सबसे पहले तो स्मोकिंग या दूसरे कारण जिसकी वजह से लंग्स को डैमेज है उनको छोड़ देना चाहिए,
1: जी
0: और बार बार निबलाइज करने से और ब्रोंको डायलेटर दवाइयाँ लेने से, फेफड़े को खोलने वाली दवाइयाँ लेने से उनको सांस में आराम मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि समय हमारे इस कार्यक्रम का सीमित है, तो क्या खास बात बताना चाहेंगे जो सांस फूलने के मरीज हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एक और खास वजह होती है, खास तौर से यंग लड़कियों में या स्टूडेंट्स में, जिनमें मानसिक तनाव बढ़ने की वजह से
1: जी
0: जो हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं, मतलब तेज तेज सांस लेने लगते हैं, तेज तेज सांस लेने से उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हाथ पर बैठने लगते हैं और सांस फूलने लगती है,
1: जी
0: तो स्ट्रेस की वजह से भी फूल सकती है।
1: अच्छा
0: और इसके अलावा मैं सारे अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि हर सांस फूलने को आप इसिनोफिलिया मत समझिए, हर सांस फूलने को दमा या सांस की दिक्कत मत समझिए। सांस फूलने के बहुत सारे कारण होते हैं, सांस फूल रही है तो अपने लंग फंक्शन टेस्ट PFT कराएं और पीको जरूर कराएं, इन दो जांच कराने से आपको बिल्कुल सटीक इलाज मिलेगा।
1: जी अगले कार्यक्रम में डॉक्टर साहब कुछ और जानकारी के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, सुनते रहिए सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। नमस्कार,
2: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। 9:15 होने को है, थोड़ी देर में हम प्रसारित कर रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का गाना आवाज है अलका याग्निक की, समीर का लिखा हुआ गाना है और संगीत नदीम श्रवण का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म का गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में कभी अलविदा ना कहना इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मंजू द्विवेदी के साथ।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: लीजिए प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र

0: नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050। श्रोताओं, जाने तो जहाने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान है डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और आज हमारा विषय है बढ़ती हुई उम्र की दहलीज पर मोतियाबिंद का दस्तक देना एक समस्या है तो समाधान भी है। डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद के बारे में लोगों के दिलों में कई सवाल उठते हैं। जैसे सुना कि मोतियाबिंद है, तो आखिर मोतियाबिंद है क्या?
1: मोतियाबिंद के बारे में सबसे जरूरी चीज एक जो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोतियाबिंद जो है वो बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद जो है वो आंखों के उम्र का बदलाव है। आंख जैसे शरीर बढ़ रहा है, उम्र के साथ में शरीर में बदलाव आ रहे हैं उम्र के साथ में, वैसे ही मोतियाबिंद भी एक आंखों का बदलाव है और बीमारी नहीं है। जैसे कि हम बड़े होते हैं, हमारी आंख में बदलाव होते हैं। सबसे पहले बदलाव जो शुरू होता है वो 35 से 40 की साल की उम्र में शुरू होता है और उसको हम कहते हैं पास का नजर का चश्मा आना। ये पास का नजर का चश्मा जो है, इसको हम जो आता है, इस चेंज को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हमारे जो आंख जो है पास का कोई भी काम पढ़ने में, उसको फोकस करने में उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। ये क्षमता खत्म इसलिए होती है क्योंकि आंख का जो लेंस है वो थोड़ा सा टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से जो रेज है जो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए वो पर्दे पे फोकस ना होके पर्दे के पीछे फोकस होती है और इससे हमें पास का देखने में दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहला जो आंख में 35 से 40 साल की उम्र में बदलाव आता है उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। इस प्रेस बायोपिया में आपको पास का देखने में दिक्कत होना, खासतौर से शुरुआती दौर में, क्या कहते हैं, थोड़ा सा जब लाइट कम हो जाती है, आसपास के चारों तरफ की लाइट कम होती है तो देखने में ज्यादा दिक्कत होती है, जबकि वही चीज जब आप धूप में जाएंगे तो थोड़ा सा सही लगता है आपको। पास का पड़ेंगे अगर बहुत लंबे समय तक तो आंखों पे जोर पड़ना, आंखों में थकान, सर में दर्द, ये सारी दिक्कतें। और फिर क्या कहते हैं, ये दिक्कतें आने लगती हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो 20 डायोप्टर के आसपास उसकी आंख में क्षमता होती है, वो दूर और पास का आंख जो है अकोमोडेट कर ले उसके हिस्से। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ये क्षमता खत्म होती जाती है और 60 साल की उम्र पे लगभग बिल्कुल क्षमता खत्म हो जाती है पास का फोकस करने के लिए।
0: जैसा कि आपने बताया कि देखने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन आयु के साथ भी तो कुछ बदलाव होते हैं, तो कैसे जाने कि जो हमारे साथ बदलाव हो रहे हैं उम्र के साथ या मोतियाबिंद के कारण हो रहे हैं?
1: मोतियाबिंद भी और उम्र के बदलाव भी दोनों ही एक उम्र के बदलाव की श्रेणी में ही आता है। 35 से 40 के साल की उम्र में जब आपको पास का देखने में दिक्कत होने लगे, आंख में भारीपन लगने लगे, या आपको ये महसूस हो कि मैं घर के अंदर हूँ तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है और बाहर धूप में पढ़ रहा हूँ तो मुझे हो रही, तो फिर आपको इसीलिए 40 साल की उम्र पे एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 40 साल पे आपको एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी आंख का इवैल्यूएशन कराना ही है। क्योंकि जो बहुत सारे बदलाव है, जैसे चश्मे का नंबर है, मोतियाबिंद है, काला पानी है, समलवाई जिसको हम कहते हैं, सारे बदलाव शुरू होने लगते हैं जिसके लिए हमें एक बारी नॉर्मल रूटीन में 40 साल की उम्र में जाके दिखाना जरूरी रहता है।
0: जी, यानी साल में एक बार आंखों के डॉक्टर को जरूर अपनी आंखें दिखानी चाहिए, चेक करानी चाहिए।
1: बिल्कुल। अब इसी तरीके से जब हम आंखों में उम्र के हिसाब से बदलाव की बात कर रहे हैं तो दूसरा जो बदलाव अब शुरू होता है, शुरू में तो 35 से 40 साल की उम्र में शुरू हुआ प्रेस बायोपिया, पास का चश्मे का नंबर आना। 45 से 50 साल की उम्र में शुरू होता है मोतियाबिंद का डेवलप होना। मोतियाबिंद जो है लेंस होता है, ये लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि रोशनी सारी की सारी पर्दे तक पहुंच पाए। लेकिन इसके जो बनावट में फाइबर होते हैं, ये फाइबर धीरे धीरे से कमी के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण, ये जो है कंडेंस होने लगते हैं जिसको कहते हैं वो, और सफेद होने लगते हैं, जिसकी वजह से सफेद मोतियाबिंद का डेवलपमेंट होता है और इसकी वजह से हमारे को धुंधलापन आना शुरू होता है। अब ये धुंधलापन मोतियाबिंद की वजह से है या ये धुंधलापन उम्र का बदलाव की वजह से है, इसके लिए एक बार आपको अस्पताल आके अपना इवेल्युएशन करवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये दोनों में से किस कारण की वजह से है।
0: तो डॉक्टर साहब, किस तरह की जांचें होती हैं? क्या कोई ऐसी मशीन होती है या आप विशेषज्ञ लोग अपने आप ऐसे देख करके बता देते हैं?
1: जी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन हम उसको कहते हैं। एक हमारे पास मशीन होती है, उसको उससे हम देखते हैं और उससे देख पाते हैं कि जो आंख में लेंस है वो लेंस में कितनी सफेदी आई है, कितनी सफेदी नहीं आई है। और इस एग्जामिनेशन के दौरान हमें पता चल जाता है कि जो रोशनी में कमी है वो मोतियाबिंद की वजह से है या ये रोशनी में कमी सिर्फ पास के चश्मे की वजह से है।
0: डॉक्टर साहब, पता चल गया कि मोतियाबिंद है, तो फिर आपकी क्या सलाह होती है मरीज

0: के लिए।
1: वो फिर से मैं कहूंगी कि उम्र का बदलाव है, मोतियाबिंद होना ही है, सबको ही होना है। तो जब मोतियाबिंद का पता चल जाता है कि मोतियाबिंद है, कितना है मोतियाबिंद इस पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या आगे करना है। अगर मोतियाबिंद शुरुआती दौर पे है, शुरुआती दौर पे मोतियाबिंद जो है आपका चश्मे से उसमें आपको बेहतरी हो जाती है निगाह में और आपको बेहतर दिखने लगता है, तो कुछ समय के लिए आप चश्मा भी लगा सकते हैं, तब ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हमने कह दिया आपको कि मोतियाबिंद आपकी आंख में है, अभी जरूरत नहीं है, तो आप बेफिक्र होके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। तीसरे महीने आके आपको दोबारा से चेक कराने की जरूरत है कि मोतियाबिंद बढ़ तो नहीं रहा है। अगर मोतियाबिंद बढ़ रहा है या आप जो चश्मा लगा रहे हैं उस चश्मे से आपको फिर से धुंधलापन आ रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मोतियाबिंद अब बढ़ रहा है। वो तथ्य खत्म हो चुका है कि पहले कहा जाता था कि मोतियाबिंद पकाकर ही ऑपरेशन किया जाए। उस जमाने में मोतियाबिंद पकाया जाता था जिस जमाने में चीरा लगता था, जिस जमाने में टाका लगता था। इसलिए फेको विधि द्वारा, दूरबीन द्वारा जब हम छोटे से छेद से ऑपरेशन करा रहे हैं, तो कच्चा मोती पे ही वो ज्यादा सक्सेसफुल है, और तभी हमें करा लेना चाहिए। हमें पकने का उसका इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
0: लेंस की बात आती है, जब आप ऑपरेशन करते हैं उसके बाद लेंस डालते हैं, तो कैसे चुनाव करते हैं आपकी इस आंख में ये लेंस सूट करेगा या ये लेंस लगेगा, कैसे आप विशेषज्ञ लोग चुनाव करते हैं?
1: मोतियाबिंद में बहुत तरीके के लेंसेज होते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे हम उसको विभाजित करें तो होते हैं एक मोनोफोकल लेंसेज और मल्टीफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंसेज में ये होता है कि हम दूर का देख पाते हैं, दूर का ही सिर्फ हम देख पाते हैं, पास के लिए हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है। जब हम चीरे वाला ऑपरेशन करते थे तो कंपल्सरी होता ही था कि हमें चश्मा आए, लेकिन अब जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं रह गया है कि हमने मोतिया को निकाला और हमने लेंस को डाल दिया। एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं और उसमें ये है कि हम ऑपरेशन को इस तरीके से करने की कोशिश करी जाती है कि ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर ना आए या फिर ना मात्र आए। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये मोनोफोकल लेंसेज के साथ साथ अब मल्टीफोकल लेंसेज भी डेवलप हो गए हैं, जिसमें दूर के साथ साथ पास के लिए भी चश्मे लगाने की जरूरत नहीं होती है। आजकल लेटेस्ट साल भर पहले ही एक लेंस लॉन्च हुआ है, विश्व में लॉन्च हुआ है और इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। वो लेंस जो है दूर के साथ साथ बीच की दूरी और पास की दूरी, मतलब एक तरीके से वो आपको आंख को वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम नॉर्मल आंख से देखते हैं जब हमारी आंख में मोतियाबिंद नहीं हुआ करता। इस लेंस को ट्राई फोकल लेंस कहते हैं, जो कि हर दूरी पे आपको देखने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये ट्राई फोकल लेंस जो अमेरिका में अवेलेबल हैं, जो पूरे इंडिया के बाहर भी पूरे विश्व स्तरीय जो लेंसेज हैं, ये लेंसेज भी हमारे पास में अवेलेबल है, ताकि आपको हर तरीके से देखने की, जिस तरीके से आपका दिनचर्या है, जिस तरीके से आपका काम है, उस तरीके से आप अपना लेंस को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिर्फ दूर के लिए ही जरूरत है या दूर के साथ साथ पास की भी जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब, हम लेंस की बात करते हैं, लेंस लगाया जाता है क्योंकि हमने सुना है कि लेंस एक बार ही पड़ता है, तो क्या आप सलाह देते हैं कि ये लेंस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए?
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये सब लोगों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है जो कि आपने समझा है ये बात कि लेंस को बार बार नहीं डाला जा सकता है। तो इसलिए जो भी हम चुनाव करें वो सबसे बेहतर और बेस्ट अपनी आंख के हिसाब से चुनाव करें। अब ये जब हम आंखों की जांचें करते हैं तो आंखों की जांचों के दौरान हमें पता चलता है कि हमारी आंख की बनावट किस तरीके से है, और उस बनावट के हिसाब से हमें जो है क्या कहते हैं, अगर एस्टिगमेटिज्म है या हमारा सिलेंडर का नंबर हमारी आंख में है, तो हमारे को मोनोफोकल लेंस डलना है या हमारे को टॉरिक लेंस डलना है। कई तरीके के लेंसेज होते हैं जिससे हमें एग्जामिनेशन के दौरान या जांचों के दौरान हमें इस बात का पता चलता है कि हमारी आंख के लिए सबसे बेस्ट लेंस कौन सा है। अब जैसे किसी को शुगर है या किसी को बहुत कम उम्र में कई बार चोट की वजह से या किसी और वजह से 20 साल की उम्र पे ऑपरेशन हो रहा है, 40 साल की उम्र पे ऑपरेशन हो रहा है, या किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, पर्दे खराब है शुगर की वजह से, तो जब पर्दे सेंसिटिव होते हैं तो एक पीले रंग का लेंस अलग आता है। वो पीले रंग का लेंस अगर हमारे आंख में लगाते हैं तो उससे हमारे अल्ट्रावायलेट रेज पर्दे पे नहीं पहुंचती हैं और वो हमारा पर्दा लंबे समय के लिए प्रोटेक्टेड रहता है। तो जो सेंसिटिव पर्दे हैं, जिनकी आंखों में पर्दे में काला पानी है, समलवाई है, जिनके पर्दे में मैकुलर डिजनरेशन है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये सब लोग जो है पीले तरीके का जो लेंस होता है वो डलवा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है, लेंसेज जो है वो बहुत तरीके से है, रोशनी हर लेंस में आती है, ऐसा नहीं है कि रोशनी जो है वो लेंस में नहीं आती है, लेकिन हर लेंस की क्वालिटी अलग अलग है। हम जो है दूर का देख पाएंगे हर लेंस में, लेकिन जो बेहतर लेंस है जिनमें फिल्टर लगा हुआ है उनमें क्वालिटी और विजन, मतलब देख तो हम पाएंगे।

0: दूर का, उसमें भी जो कम अच्छे क्वालिटी के लेंसेज हैं उसमें भी हम दूर का देख पाएंगे, लेकिन जो बेहतर लेंसेज हैं उनमें रंगों में क्या अंतर है। लाल रंग आपको लाल रंग ही दिखेगा, फीका लाल नहीं दिखेगा। जो अपने क्या कहते हैं कम गुणवत्ता वाले जो लेंसेज हैं, आसमान नीला नीला सा दिखाई देता है, लेंस के बाद जो है फिर वो झिल्ली बनने लगती है, वो झिल्ली की सफाई के लिए फिर आपको अस्पताल में दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है। जो आप देख रहे हैं बढ़िया लाल बढ़िया पीला, वो आपको बढ़िया नहीं फीका फीका सा मालूम पड़ता है। जिस तरीके से बनावट है, जिस तरीके से किसी चीज की बनावट है, वो उस तरीके से ना मालूम पड़ के थोड़ी सी भिन्न मालूम पड़ती है। तो जो क्वालिटी है विजन की उसमें अंतर बहुत रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मोटा मोटा सबको दिखाई देगा हर तरीके के लेंसेज। जो अच्छी क्वालिटी के लेंसेज हैं, जो अच्छी गुणवत्ता वाले लेंसेज हैं, उसमें आपको रंगों में पहचान है, कंट्रास्ट में पहचान है, रात में जो है किसी भी बल्ब है, बल्ब के चारों तरफ जो रोशनी है वो रोशनी फटी फटी सी नहीं मालूम पड़ेगी अच्छे गुणवत्ता वाले लेंसेज में। तो ये डिफरेंस होता है। और जो और अच्छे वाले लेंसेज हैं उसमें दूर के साथ साथ आपको पास के लिए भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका पास का काम कुछ लोगों का ज्यादा रहता है, जिनका सिलाई बुनाई का काम ज्यादा है, जिनका लिखा पढ़ी का है, जो पोएट है या जो लेखक लोग हैं, पास के काम की ज्यादा जरूरत है, उनको ये एडवाइस ज्यादा रहता है कि आप जो है मल्टीफोकल लेंस या ट्राईफोकल लेंस डलवाएं, ताकि आपके पास के लिए आपको चश्मे की जरूरत ना पड़े। जो लोग हैं किसान लोग हैं, जिनको दूर का ही खेतों में ही काम है, दूर का देखने का काम है, वो मोनोफोकल लेंस डलवाएं। और फिर बाद में कौन सा लेंस डलना है, कौन सा लेंस नहीं डलना है, ये हम आंखों की कुछ जांचें करते हैं और जांचों में दौरान पता चलता है कि आपकी बनावट किस तरीके से है, और उस बनावट के हिसाब से ही आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपकी आंख के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। अब जो जांच करते हैं, ये जांच जो है आजकल एक इसके लिए भी लेटेस्ट टेक्निक आई है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप मोतियाबिंद को निकालें और लेंस को डाल दें। अब हम लेंस इस तरीके से डालते हैं या ऑपरेशन को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आंख में लेंस पड़ने के बाद चश्मे का नंबर ना आए। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमको ऑपरेशन इस तरीके से उसको क्या कहते हैं डिजाइन करने का, या इस तरीके से हम ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर ना आए। और ये सुविधा अपने पास में फोकस नेत्रालय में अवेलेबल है। कुछ लोगों की आंख की बनावट ऐसी होती है कि उन्हें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आमूमन तौर पर 95% से 97% तक क्या कहते हैं जरूरत नहीं पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो अच्छा लेंस लगा दिया उसमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे लगता है कि हम बचपन में या किशोरावस्था में हों और चश्मे की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर बजट की बात भी आती होगी क्या कुछ?
0: देखिए, लेंस जो है हर तरीके का लेंस फोकस में अवेलेबल है। फिर से मैं ये कहूंगी कि पॉकेट फ्रेंडली ना देखते हुए, है ना, हमें उस लेंस पे जाना चाहिए जो हमारी आंख के लिए बेस्ट है। फिर एग है, अगर हम नॉनवेज की बात करें, फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, ये सब चीजें हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। आजकल आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, वो आपको क्या कहते हैं आंखों के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, जिसके आंखों के ताकत की गोलियां होती हैं। इन आंखों की ताकत की गोलियों का आप साल में एक बार ही कोर्स कर सकते हैं, मतलब साल में एक रोजाना एक गोली नाश्ते के साथ खाकर क्या कहते हैं एक साल में एक बार ही एक कोर्स कर लिया, तो उससे आंखों में ताकत बनी रहती है। आंखों में ताकत बनी रहती है तो ये बदलाव जो है ये खत्म नहीं होते हैं, लेकिन डिले हो जाते हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी में मात्र 10 मिनट लगते हैं ऑपरेशन में, और ऑपरेशन के 15-20 मिनट या आधे घंटे में ही आप अपने घर वापस जा सकते हैं खुद पैदल चलकर। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए वैसे ही आप तीसरे दिन से अपने ऑफिस जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बचाव रहता है वो धूल मिट्टी धुआं पानी से रहता है, ये आपकी आंख में ना जाए अगर इस चीज का आप परहेज करते हैं, तो तीसरे दिन से आप 90% अपने सारे रूटीन के काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, क्या ये सवाल गलत है, आधा अधूरा है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन पकने पर ही करवाना चाहिए?
2: ये बिल्कुल गलत है। मोतियाबिंद को बिल्कुल भी पकने नहीं देना चाहिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम तब करते हैं जब मोतियाबिंद कच्चा होता है, क्योंकि पुराने जमाने में जब चीरा लगता था और टाके लगते थे, टाके गर्मियों में पक जाते थे, इसलिए गर्मियों में ऑपरेशन करने को मना किया जाता था। लेकिन अब दूरबीन विधि से मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, इसमें ना इंजेक्शन लगता है, ना चीरा लगता है, ना टाके लगते हैं, इसलिए दूरबीन विधि से मोतियाबिंद करना कच्चे मोतिये पे ही ज़्यादा बेहतर होता है। मोतियाबिंद को बिल्कुल भी पकने नहीं देना चाहिए। जितना पकेगा मोतियाबिंद

0: उतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा दूरबीन विधि से, और जितनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उतनी आपको नुकसान होगा, इसलिए मोतियाबिंद को पकने नहीं देना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी चेकअप कराना जरूरी है?
0: एक सक्सेसफुल मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कभी भी आंखों के चेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। और हर मरीज़ को आंख के रेगुलर चेकअप की ज़रूरत हर साल या 2 साल में होती है, वो सिर्फ और सिर्फ लेंस के लिए ही नहीं बल्कि पर्दे या काले पानी की जांच के लिए भी होती है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर के लेवल से ज़्यादा नहीं प्रभावित होती है, शुगर का लेवल भले ही कंट्रोल हो लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है, इसलिए भले ही आपको शुगर है जो कि कंट्रोल्ड है तो भी हर डायबिटीज़ के मरीज को साल में एक बार आँख का या रेटिना का चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, क्या काला पानी मोतियाबिंद सिर्फ बुजुर्गों में ही होता है?
0: ये सवाल बिल्कुल एक मिथ है, यानी कि भ्रांति है। ग्लोकोमा और मोतियाबिंद दोनों ही किसी भी उम्र में हो सकते हैं, यानी बचपन में भी हो सकते हैं, पैदाइशी भी हो सकते हैं, बचपन में भी हो सकते हैं या फिर बड़े होने पे भी हो सकते हैं। कॉर्निया की जो ब्लाइंडनेस है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार आपकी पुतली पर चोट लग जाए या पुतली किसी कारण की वजह से सफ़ेद हो जाए तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। ये बात एक मिथ है, या इसमें मतलब कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद आंखों की रोशनी वापस आ सकती है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी आंख के आगे बुनके से दौड़ते हैं, लाल लाल से दौड़ते हैं, वो क्या होते हैं?
0: आंख के सामने कभी कभी भुनके दौड़ते हैं और एकदम से बहुत सारे भुनके आ जाते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं और बहुत दौड़ते हैं इधर से उधर। इससे दर्द नहीं होता है, पर क्या ये नज़रअंदाज किए जा सकते हैं? ये एक मिथ है, यानी कि भ्रांति है। कभी भी आँख के आगे भुनके आपके तैर रहे हों जो कि बहुत सारे एकदम से आए हैं, लाल रंग के हैं, ये इनको बहुत ज़रूरी आँख की जांच कराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बारी आँखों के पर्दे हटने की वजह से या पर्दे पे खून आने की वजह से ये फ्लोटर्स जिनको कहा जाता है ये एकदम से आ जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आँखें लाल होती हैं तो कहते हैं आँख आ गई है, ये क्या होता है? क्या आँख आना भी?
0: ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, एक भ्रांति है कि लाल आँख हुई और हमने दवाई जाके दुकान से ले ली। हर लाल आँख आँख आना नहीं होती है। आँख में लाली आने के बहुत सारे कारण होते हैं। काले पानी का अटैक हो सकता है, आँख में सूजन हो सकती है, पुतली पे सूजन हो सकती है, खून उतरा हो सकता है, आँख में चोट हो सकती है या फिर आँख आ सकती है। तो हर आँख लाल होना आँख आना नहीं होता है, और इसके लिए दवाई जो है वो दुकान से जाके नहीं लेनी होती है। पहले ये समझना होता है कि लाली आँख में आई है उसका कारण क्या है और उस हिसाब से हमें दवाई लेनी होती है।
1: डॉक्टर कनुप्रिया जी, जो चश्मा लगता है आँखों की रोशनी के लिए हम लगाते हैं, क्या उसकी आदत भी बन जाती है या छूट सकता है?
0: चश्मा लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर हम चश्मा लगाते हैं तो हमारा चश्मे की आदत बन जाती है और हमेशा हम चश्मा का नंबर बढ़ता रहता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसकी वजह से बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को चश्मा नहीं लगवाते हैं और या फिर देर से लगवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हमारे आँखों को चश्मे की ज़रूरत है तो हमें फ़ौरन चश्मा लगाना चाहिए। चश्मा लगाने ना लगाने से आँखों में दर्द, आँखों में लाली, आँखों में पानी, खुजली वाली समस्या, ये सारी होने के साथ साथ हमारी आँख की रोशनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है, एम्ब्लायोपिया या लेजी आई की समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए चश्मा, जैसे ही पता चलता है कि किसी बच्चे को चश्मा लगा है उसी समय चश्मा लगाना चाहिए। चश्मा सही समय पे लगेगा तो आँखों का विकास के साथ साथ दिमाग का विकास भी बेहतर होगा, और चश्मे का नंबर लगाने से नंबर बढ़ेगा नहीं, ना ही उसकी ऐसी आदत पड़ेगी। तो इसलिए सही समय पे चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, आँखें प्यारी हों, छोटी हों, बड़ी हों, और उनमें अगर सूखापन होता है तो आप क्या कहेंगी?
0: छोटी मोटी आँखों में सूखापन आना एक नॉर्मल सी बात है और इसका हमें इलाज करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आँख में सूखापन भले ही एक छोटी सी समस्या है लेकिन मोबाइल आने की वजह से, एसी का इस्तेमाल होने की वजह से, कूलर का इस्तेमाल होने की वजह से, या बहुत तेज़ लू या गर्मी या गर्म हवा आँख में जाने की वजह से ये समस्याएँ बहुत कॉमन

0: हो गई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी आँख में सूखापन होने लगा है। ये सूखापन शुरुआती दौर में तो बहुत मामूली सा होता है, लेकिन अगर ये बढ़ता है, यानी कि मॉडरेट या सीवियर ड्राई आई, हमारी आँखों को बहुत ही और क्वालिटी ऑफ विजन और लाइफ ऑफ विजन को बहुत ही इफेक्ट कर सकता है। इसलिए कभी भी आँख में सूखेपन या छोटी से छोटी समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने आंखों के बारे में बताया, आंखों की रोशनी के बारे में बताया, मोतियाबिंद के बारे में बताया, बच्चों में चश्मा लगता है उसकी आदत छूट जाती है, ये भी आपने बताया। तो अब बात करते हैं नेत्रदान के बारे में। लोग नेत्रदान करते हैं, बड़े फक्र से करते हैं कि हमारी आंखें दूसरों के काम आएंगी और मेरी आंखें जिंदा रहेंगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी नेत्रदान के विषय में? पूरी की पूरी आंख दान की जाती है या कुछ और? जी
0: आई डोनेशन का मतलब है कि पूरी की पूरी आँख बदली जा सकती है। ये बिल्कुल एक मिथ है, यानी कि भ्रांति है। आई डोनेशन में पूरी की पूरी आँख निकाल कर पूरी की पूरी आँख नहीं रखी जाती है। ये मात्र कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि आँख में जो दो हिस्से होते हैं, यानी कि सफ़ेद हिस्सा और काला हिस्सा जो दिखाई देता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो काला हिस्सा है उसको निकाल कर उसको बदला जा सकता है। इसमें पीछे का पर्दा, लेंस, आँखों की नस, ये सब नहीं बदली जाती है। सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को ही आई डोनेशन या आई आँखों का प्रत्यारोपण कहा जाता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद रोशनी वापस एकदम नॉर्मल जैसी हो जाती है। ये भी एक भ्रांति है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में हम दूसरे की आँख से कॉर्निया को निकाल कर आपकी आँख में लगा रहे हैं, तो ऐसे में रोशनी पूरी बनकर नहीं आती है, कम रहती है। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है, समय लेकर बढ़ती है, लेकिन आँख में इतनी रोशनी ज़रूर आ जाती है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम आराम से कर सकते हैं। आँख में एक बारी अम्ब्लायोपिया या लेजी आई जिसको कहते हैं, वो अगर हो जाता है तो वो उसका इलाज संभव है और रोशनी पूरी आ सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अम्ब्लायोपिया यानी कि चश्मा ना लगाने की वजह से जो पर्दे का विकास नहीं हुआ है बचपन में, जिसको हम आम भाषा में लेजी आई या अम्ब्लायोपिया कहते हैं, इसका इलाज कुछ हद तक ही संभव है और एक समय है, यानी कि 9 से 10 साल तक का समय है, तभी संभव है। उसके बाद इलाज संभव नहीं है और रोशनी चश्मा लगाने से या किसी भी ऑपरेशन करने से वापस नहीं आ सकती है। इसलिए एम्ब्लायोपिया जैसी गंभीर बीमारी या चश्मा ना लगाने की वजह से पर्दे की कमजोरी रह जाना को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी चश्मा लगाकर इलाज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से, यानी कि बहुत ज़्यादा मोबाइल टीवी देखने से हमारा पर्दा ख़राब हो जाता है, ये आधा अधूरा सच है, पूरा सच नहीं है। जब भी हम डिजिटल डिवाइसेस देखते हैं तो उससे हमारी आंखों में आई स्ट्रेन होता है, आंखों पे जोर पड़ता है, आंखों में सूखापन आता है, चश्मे का नंबर भी होता है, लेकिन हमारे पर्दे पे यानी कि रेटिना पे डैमेज नहीं होता है डायरेक्टली। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सिर्फ हमारे खाल पे इफेक्ट करती हैं, यानी कि स्किन पे इफेक्ट करती हैं। जो सूर्य मंडल में अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे सिर्फ खाल पे ही इफेक्ट नहीं करती, इससे हमें सिर्फ टैनिंग ही नहीं होती है या रंग काला नहीं होता है, बल्कि हमारी आँखों में भी इनका असर होता है। इसीलिए 100% यूवी फिल्टर गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर काला चश्मा धूप का चश्मा नहीं है। यूवी एक्सपोजर से हमको मोतियाबिंद, आँख के सरफेस की समस्याएं यानी कि ऑकुलर सरफेस डिजीजेस जैसे कि आँख में सूखापन और ARMD यानी कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों के लिए सुरक्षित नहीं है और कड़ाके की धूप में हमें 100% यूवी फिल्टर गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद के ऑपरेशन से और काला पानी के ऑपरेशन से क्या रोशनी आ जाती है? जी
0: ये आधा अधूरी बात सही कही आपने। जो रोशनी मोतियाबिंद की वजह से कम है वो रोशनी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आ सकती है, लेकिन जो रोशनी काले पानी की वजह से ख़त्म हुई है वो रोशनी वापस नहीं आ सकती है। काले पानी का जो भी इलाज चलता है वो इस मकसद से चलता है कि जो रोशनी बची है उसको हम बचा कर रखें, जो रोशनी ख़त्म हो गई है वो रोशनी वापस नहीं आती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या मोतियाबिंद का इलाज चश्मे से हो जाता है? हर इंसान को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या ऐसा है डॉक्टर साहब?
0: मोतियाबिंद का इलाज चश्मे से हो जाता है और हर इंसान को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है।

0: ये भी सच नहीं है। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है, शुरुआती दौर जब मोतियाबिंद की होती है उस समय चश्मा लगाकर रोशनी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, उसको हम ग्रेट बर्न कैटरैक्ट कहते हैं। उस दौरान चश्मे से फ़ायदा हो जाता है, रोशनी बनकर आ जाती है, तब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है, जब वो ग्रेड 2 पहुंच जाता है, तब मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से ही होता है, किसी भी ड्रॉप या चश्मे से संभव नहीं है। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद चश्मा नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है और हमारी आँख वैसे ही हो जाती है जैसे पहले की होती थी।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो हमारे श्रोता अक्सर सोचा करते हैं कि ऐसा होता है शायद।
0: ये भी एक आधे अधूरा सच है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद इस बात पर निर्भर करता है कि हमने लेंस कौन सा चूज़ किया है, हमारी आँखों की क्या क्या रोशनी की ज़रूरत है, कि मरीज़ को दूर के साथ साथ पास का देखना है या नहीं देखना है, और उसी तरीके से हमने लेंस को चूज़ किया है या नहीं किया है, आँख में एस्टिगमाटिज्म है या नहीं है, यानी कि आँख की बनावट कैसी है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम सही लेंस का चुनाव करेंगे तो ऑपरेशन के बाद हमारी रोशनी पूरी आएगी। अगर हम कोई सा भी लेंस डलवा लेंगे बिना ये समझे कि आँख में किस लेंस की ज़रूरत है, तो फिर हमारी रोशनी पूरी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। आई डोनेशन कैन बी डन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी कि किसी भी उम्र में हम आँख को डोनेट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, क्या ये बात सही है कि किसी भी उम्र में आंखों का दान किया जा सकता है?
0: ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी उम्र में और कोई भी व्यक्ति अगर कॉर्निया उसकी सही है तो वो कभी भी डोनेट कर सकता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की आंख के बारे में क्या कहेंगे, चेकअप के बारे में क्या कहेंगे आप कि उनकी आंखें कब चेक करानी चाहिए?
0: बच्चे अगर सारा काम कर रहे हैं तो उनको आँख के चेकअप की ज़रूरत नहीं है। ये बात थोड़ी सी गलत है, आधा अधूरा सच है ये। बच्चे अगर सारा स्कूल का काम सही से कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, तिरछापन नहीं है, भेंगापन नहीं है, आंखों से पानी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी कई बारी चश्मे का नंबर और अम्ब्लायोपिया जैसी समस्याएं होती हैं जो अक्सर बच्चे बता नहीं पाते हैं। इसलिए बचपन में 5 से 6 साल की उम्र में एक रेगुलर आई एग्जामिनेशन बच्चों का होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मोतियाबिंद के बारे में, काला पानी के बारे में, चश्मे के बारे में, लेंस के बारे में, बच्चों का चेकअप कब करवाएं इसके बारे में, तरह तरह की सभी जानकारियां दी आंखों से संबंधित। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नमस्कार।
1: और अब आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है समाप्त करने के लिए रविन्द्र मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर।

साथियों, अब हम लेकर आगे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद, और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं संजय आपके साथ।

सबसे पहला गीत जो आपकी पसंद का है फिल्म है आंखें, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं। सुना जाए रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर, वीणा बंडलकर और विविधा बंडलकर।

साथी सुनना चाहा है। कड़िया मोजे उसतु भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा आरती और सुनीता देवी। मोहली पंजाब से गुरुप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और उनके परिवार के सभी लोग। सरलाही सोकनाकाह नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार, वंदना, प्रियंका और उनके बहुत सारे साथी।

मोतीनगर नई दिल्ली से सुना चाहा है अनिल गौरव मानसी कविता और अरोरा परिवार के सभी लोगों ने। ग्राम पजोनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक और चंसोलिया परिवार के सभी लोग। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला गीत फिल्म है रोटी, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। सुनना चाहें नागपुर महाराष्ट्र के कमल स्वाने, डॉक्टर हाजी अफजाल मलिक, संदीप और उनके बहुत सारे साथी। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी स्वाने और स्वाने परिवार के सभी लोग। हाडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। दूलापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मुकेश, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलबीर। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। बागपत उत्तर प्रदेश के संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश गोर्धन, घनश्याम, बाबू गौरी, हसन सिक्का। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रियाहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली बरेली से शारुन नूर अंसारी, फरियादी हुसैन अंसारी, शकील मोइन तस्लीम, डीजे प्रधान।

बैंक सेंटर चैनिटी के पास बरेली कैंट से विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश के मुकेश गौतम, सुनील अमन, बुद्धनगर खंडवा से नदीम, बैजोई से राजू। नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन मोहम्मद, जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद। उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश के भेरूलाल बाक्तरिया, धाकड़ भोला प्रवीण, रियांश और प्रतीक बाक्तरिया। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद आपके रेडियो सेट पर सुने और

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। सुनने वाले बड़े चाव से बैठे होंगे, हमें ऐसा लगता है। चूंकि बारिश का मौसम आ ही चुका है, तो ऐसे में हमारे कुछ लिसनर्स ने इसी से संबंधित, बारिश बरखा रानी से संबंधित गाना सुनना चाहा है। और वो हमारे श्रोता हैं नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, आरसी सक्सेना और अनीता सक्सेना। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। जलालपुरा सहारनपुर उत्तर प्रदेश के श्रवण कुमार, प्रजापति, शिवम, आर्यन, लविश और मुनेश देवी। रामगढ़ कैंट के महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। परमाडोगी नेपानगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल। साथ में है नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, आतिक अहमद, मोहम्मद दानिश, सिद्दीकी साहब। सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद, आइए सुनते हैं, एंजॉय।

प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं रोमांस फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और साथियों ने। सुना जाए अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र के मनोहर मगर यामिनी मगर उदयन और अर्पिता। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल गीतिका भानुप्रकाश। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजबान खान आयशा सबिया अनस और रेहान। बेडी मध्य प्रदेश के हुकुम करमरकर और सुनीता करमरकर।

गांव फरासी हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार। इसी गीत को सुनना चाहे सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम अकरम, सानिया मोहम्मद इलियास, मुसाहिद अक्सा अंसारी, आयशा और उमर अंसारी ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, मित्रगण और उनके सभी परिवारी जन। दादाबाबू रोड गेडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा और बेबी चाहत।

और अब बारी है अभिमान फिल्म के उस गीत की, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर साथियों ने। बग बुड़बा पथरिया, छत्तीसगढ़ के जो हमारे श्रोता हैं जिन्होंने इस फिल्म का गीत सुनना चाहे, वो हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम।

डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये और राधिका गजबिये, ग्राम लसूडिया पाटा नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश के गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद डागी, चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबिया खानम, जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, अशरफ खान और मंजू निम्मी, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश अमन आफरीदी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, पुगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज पंकज, प्रिंस प्रशांत कार्तिक और निर्भय गुप्ता,

हरदोई उत्तर प्रदेश के मयंक यादव और अमित यादव। नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। फाजिलका पंजाब के सुभाष कोटारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी। जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। गांधीनगर गुजरात के जी के परमार। समर्थ रेजिडेंसी अक्कलकोट सोलापुर महाराष्ट्र के गणेश लोडे, आम्रपाल और आरव। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लव, राधे और उनके बहुत सारे साथी।

धनबाद झारखंड के रामचंद्र गुप्ता और शोभा गुप्ता। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी। करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। साथ में ही है अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन साहब। सनावत से शेख मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। स्मृता रेडियो ग्रुप से

जो कि है भाटापारा छत्तीसगढ़ के, सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश पायल, मनीष रेहान, वैदेही हंसका, साथ में है आकाश अकिता, खंडवा मध्य प्रदेश के अब्दुल गफार डावर जी, मुरादाबाद से अजीत कसाना साहब, माया देवी, ऋतिक आदित्य, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार, रिंकी शेखावत, बीड शहर महाराष्ट्र के नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय श्री मेहत्रे, अंजलि और बाला साहेब करवा।

बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष और डुग्गू। उगती बदायूं से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, साद सिद्दीकी, समद और सादिक सिद्दीकी। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र के लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। आसलगांव बाजार बुलढाणा महाराष्ट्र के राजू माठे, श्री गजानन सालोकर और साथ में है देवेंद्र भटकर प्रकाश डांडगे। गांव खोकराबाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति। जय जैनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र के रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, साथ में है प्रतेश और पूरा संगही परिवार। मेरठ से दिग्दर्शन, साथ में है कविता। इस गीत को सुनना चाहे त्रिलोकी पाल, एनएल शर्मा, ओमकार गंगवार, सनी गोस्वामी।

लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ के उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, लाडो, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, सिक्का, कोयल, दुग्गू, भाभीक और सिक्का परिवार के सभी लोग, सिराजपुरा सुपौल बिहार से मोहम्मद वकील अहमद, नाजमी बेगम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कासिफ कमर, मोहम्मद कामरान अहमद, मोहम्मद शाहबाज अहमद, नाज प्रवीण, नाजिश रूही, खुशबू, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद जैद, गांव टोरवाल नवाशहर पंजाब के गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाणी थांदी, कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद, किरण दृष्टि और मानवी मौत, मोताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर, नलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र के पीएस नियावकर, निर्मला विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से ही नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुर्रेकर, राजमता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र के नरेंद्र, ज्योति, आकांक्षा और आकाश, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसार, रवीना, आफिया, जावेद, सुराज अख्तर, जैस्मीन, शकीला, धनवंती नगर जबलपुर मध्य प्रदेश के अशोक सिंह, सुनीता, अंकिता, ऋतु, कृषभ और गुड़िया, बेदा सिंह।

लीजिए अब सुनिए मल्हार फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। सुना जाए लेबाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और रानी मानिकपुरी। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजान कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती विनायक, मोहिनी मोहित सिंह और कोको रानी। सदा बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा। सागर मध्य प्रदेश के चंद्रेश गौहर, वंदना, मयंक और तन्वी गौहर। साथ में है जयपाल यादव। छत्तीसगढ़ भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू। चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावत खरगोन मध्य प्रदेश के कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नव उदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह ध्रुवी और प्रदुम्न सिंह चौहान। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली के बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, कनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति, शिवांश और प्रथम सिंह। ग्राम पंचायत बाकरगंज फरीदपुर पानी की टंकी के पास से मास्टर सुनील बाबू, शिवम, अभय मीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या गौतम और उनके सभी मित्रगण। ग्राम देगांव तहसील पूना महाराष्ट्र के सदाशिव थोरात, कविता थोरात, अश्रिया बंटी थोरात। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया। बेड़ी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के नानाजी लाम से मीना, तेजस, जय, हर्षिता। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ के रामजी साहू और उनके बहुत सारे परिवारी जैन। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्नाबाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। मधुबनी बिहार के नवीन सिंह, ज्योति सिंह। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के विनोद कुमार, नवीन, तेजांश, अनुराग, साकेत। नंगलखेड़ा फागबड़ा पंजाब के बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश, राहुल। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी। खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन, अंकुश। मदरसागेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से इशाद अहमद, कामरान, अरमान। साथ में है नवेद अजरा तबस्सुम। रायपुर अनेई बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। गंज डुंडवाड़ा से शमशुल कमर राई, शाहीन फातिमा, अदनान, अनु और फैजान खान। मारा रा दरवाजा एटा से नबी हसन, शहनाज, नवेद हसन।

सुहेल अनाम यशफ और रसीद वारसी। तो अब साथियों भेज रहे हैं कार्यक्रम का वो गीत जो प्रोग्राम को पहुंचाएगा अपनी मंजिल।

0: पहला कदम।
1: सर जी, चलते चलते पूछ ही लेते हैं आपसे कि हमारी प्रस्तुति में आपको क्या अच्छा लगा, कौन सी बात आपको दिल को छू गई,
2: प्यार की दुनिया में ये
1: कहां आपको लगा कि हम और भी बेहतर हो सकते थे, और अगली बार आप क्या सुनना चाहेंगे। आपकी एक सच्ची राय
0: तेरी दो
1: हमारी सैकड़ों लाइक्स से ज्यादा बेहतर होती हैं।
0: इन्हीं में खो गया दिल।
1: बराल कार्यक्रम से अपने दोस्त संजय को दें इजाजत।
0: इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढ कहां।
2: चांद घटता हो घटे अपनी मुहब्बत ना हो कम, वो मुहब्बत ना हो कम।

साथियों, अभी हम आपको सुनवा रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम सबरंग। सबरंग की पहली प्रस्तुति भेज रहे हैं आपको जगजीत सिंह के स्वर में

0: ये भजन हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर के स्वर में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल, आइए सुनते हैं।

0: साथियों, इसके साथ ही हमारा आज का सब रंग यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: और इन्होंने हमें मेल लिखा है, महेंद्र देपन जी ने, गांव रूण, जिला नागौर, राजस्थान से। इन्होंने लिखा है, जैसे सुबह की किसी मीठी दुआ से मन को सुकून मिलता है। मैम, आपकी आवाज सुनकर हमारा पूरा दिन खिल उठता है, क्या बात है। महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ के लिए। वैसे अच्छी ही बात है, आपको भी शुक्रिया हमारी तारीफ के लिए। आपने हमारी तारीफ करी, हमें भी खुशी मिल गई। नहीं, खैर, इन्होंने लिखा है, आज मैं अपना संदेश देना चाहता हूं कि आजकल हम देखते हैं कि बाइक या फोर व्हीलर चलाते समय होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। सड़क पर हुई जरा सी लापरवाही या जल्दबाजी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। ऐसी किसी भी दुर्घटना से सिर्फ एक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचती, बल्कि उसके पीछे पूरा परिवार है। जीवन भर की मुसीबत और दुखों का पहाड़ उसके लिए खड़ा हो जाता है। इन्होंने लिखा है, सभी श्रोता भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, अपनी गति पर नियंत्रण रखें, सुरक्षित चलें। याद रखें, घर पर आपका परिवार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, उन्हें कभी भी इस तरीके के दुख में न डालें। महेंद्र जी, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। वाकई में दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी भी हुई है और साथ में कई सारी चीजें हैं, यातायात नियमों का ध्यान रखना है, अपनों के बारे में सोचना है। ये बहुत अच्छा संदेश था। अगली जो मेल हमारे पास है वो मेल है मोनू सेठ जी की। मोनू सेठ जी ने लिखा है, बारिश की छोटी छोटी बूंदें ही मिलकर अंत में बहती हुई नदियां बन जाती है।

ठीक उसी तरह रोज किए गए छोटे लंबे काम समय में बड़े बदलाव लाते हैं। ये विचार बिल्कुल सत्य और व्यावहारिक है। जीवन की हर बड़ी उपलब्धि वास्तव में छोटे छोटे कदमों का ही एक संकलन होती है। जब हम हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाते हैं तो समय के साथ वो विशाल दूरी में बदल जाता है। धीमे धीमे बढ़ने से और आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन बारिश की बूंद की तरह, क्योंकि जल्दबाजी कभी कभी बहुत नुकसान कर जाती है। मोनू सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके संदेश के लिए। और वारिस अली खान जी ने लिखा है हमें प्यार भरा सलाम, और साथ में इन्होंने लिखा है हमें संजय नगर ऐशबाग से आपने हमें मेल किया है, और सुपरहिट सॉन्ग्स में खूबसूरत नगमे बजाए, ऐसा इन्होंने लिखा है। शुक्रिया लिखा है, आपको भी शुक्रिया, आपको पसंद आए।

और साथ ही अगली बात इन्होंने लिखी है कि अर्ज है ज़रूर ऑन एयर करें। इन्होंने लिखा है, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बनो किसी बेसहारे का, तेरे मदद के वास्ते फरिश्ते उतर आएंगे। इन्होंने संदेश लिखा है कि कभी ज़िंदगी के धागे टूट जाएं तो दोस्तों के पास जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी होते हैं, मुफ्त में रफू कर देते हैं। आपने ऐशबाग लखनऊ से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश का। और मुनेश कुमार राज जी का मेल हमारे पास है और आपने लिखा है, ओके, गांव भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। ओके, इन्होंने निवेदन लिखा है कि एफएम रेडियो सेवा नहीं चल रही थी और जल्दी से ऐप नहीं बज रहा है, उसकी व्यवस्था की जाए। तो बिल्कुल आपकी ये जो शिकायत है इस पर काम करने का प्रयास किया जाएगा। और इन्होंने मेल लिखा है हमें भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से। आपके संदेश हमारे पास हैं और ढेर सारे संदेश आते रह रहे हैं हमारे पास, और हम तो आपके संदेशों को जो है एक के बाद एक शामिल करते जा रहे हैं। और आपसे भी आशा है कि आप अपने खूबसूरत संदेश इसी तरीके से हम तक पहुंचाते रहेंगे। और बस ट्यून इन करके रखिए, ये गाना हमारी तरफ से और आपके संदेशों को जल्दी इसी गाने के बाद शामिल करते हैं।

11:41 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे। और अगली जो मेल हमारे पास है वो है गुलफ्सा सिद्दीकी की, और इन्होंने हमें मेल किया है। कहाँ से आपने मेल किया है भाई? जी, आपने हमें संडीला से मेल किया है। इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, और साथ में लिखा है संदेश ये है कि पान मसाला खाते हैं वो लोग, प्लीज़ प्लीज़ ना खाएं क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है ये। गुलफ्सा जी, आपने बात तो सही लिखी है। आपके संदेश के साथ, आपका संदेश तो इतना ही है।

साथ में आपके संदेश के साथ हम अपनी बात और ऐड करें। खाते तो हैं, उसके ऊपर से पूरे शहर को पानदान पीकदान बना देते हैं। मतलब पूरे शहर में जहां मर्जी वहां पीक करते हैं। आप बताइए, मतलब सरकार है, हमारे कर्मचारी हैं, पूरे शहर को स्वच्छ करने में, हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको साफ सुथरा बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं, और आप पान खाकर यूं ही कहीं पीक कर देते हैं। भाई बहुत ही गलत बात है ये तो। हमें तो बहुत बुरा लगता है। और गुलफ्सा जी के संदेश के साथ, गुलफ्सा जी आपने बोला है पान खाना वैसे भी गलत बात है, पान मसाला ये सारी चीजें खाना वैसे भी गलत बात है, लेकिन इस तरीके से दूसरी जगहों को, खासकर सार्वजनिक जो भी क्षेत्र होते हैं, जो पब्लिक प्लेस होते हैं हमारे, हम देखते हैं कि इतनी साफ सुथरी हमारे शहर में मेट्रो दौड़ती है, मेट्रो की इतनी अच्छी इमारतों पर भी, उसकी जो भी जहां पर हम जाते हैं उसकी सीढ़ियों में, उसकी दीवारों पर भी गंदगी दिख रही है। क्यों भाई क्यों? बड़ी मुश्किल से तो हमें मिली है, उसको भी आप गंदा कर दे रहे हैं। और वैसे भी सरकार इतने अच्छे पेंटिंग्स बनाती है दीवारों के पीछे, करवाती तो है काम। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली मेल जो है इंद्रपाल मिश्रा जी का, उन्होंने हमें मेल किया है महोली सीतापुर से। इन्होंने लिखा है, सभी किसान भाइयों के लिए संदेश है कि अपने खेतों की मंदबंदी कर लें। मंदबंदी मीड़बंदी होगा? अच्छा, हमें आइडिया नहीं, ये हो सकता है आपके यहाँ कहते होंगे, लेकिन मीड़बंदी होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने लिखा है, अपने खेतों की मीड़बंदी कर लें ताकि खेत से पानी बाहर ना जाए और जल संरक्षण होता रहे। ये भी बात सही है। इंद्रपाल मिश्रा जी, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और जो अगली मेल हमारे पास है वो रोशनी रावत जी की है, और रोशनी जी ने हमें लिखा है, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बिंदास, कमाल लग रहा है, बहुत शुक्रिया, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? इन्होंने लिखा है, वेबसाइट पर एफएम सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, फिर भी इन्होंने हमें मेल किया है और लिखा है, नाम हमारा रोशनी रावत है, बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव की हैं, लेकिन चंडीगढ़ में रहती हैं और वहीं से प्रोग्राम सुन रही हैं। इन्होंने संदेश लिखा है कि पहले बात सुने सामने वाले की, फिर अपनी बात कहें। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो दूसरे वाले की, यानी सामने वाले की जो बात कह रहा होता है, उसकी बात पूरी नहीं होने देते और बीच में काट काट करके, टोक टोक करके अपनी बात रखते हैं। ये भी बात आपने सही लिखी है। तो पहले कोशिश यही करनी चाहिए, वैसे भी ये हमारे व्यवहार में शामिल होना चाहिए, अगर कोई सामने वाला कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को हमें पूरी होने देना चाहिए। आपके ढेर सारे मेल्स आते रह रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और आपके संदेश कॉल के जरिए भी आ रहे हैं, और बस यही है कि खूबसूरत सा संदेश जो हमें मिले हैं, इतने खूबसूरत, उसके बाद हमारी भी ड्यूटी है, वो ड्यूटी ये है कि आपके रेडियो सेट तक एक बढ़िया सा गाना पहुंचाया जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम है, संदेश तो आपके रहेंगे लेकिन गीत हमारे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: ग्यारह बजकर के 52 मिनट हो गए हैं और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे चलता चला जा रहा है और एक कॉल हमारे साथ, कॉल पे कोई लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है?

देखिए कुछ खराबी है टेक्निकल और कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है बार बार। तो बस इन्हीं बातों के साथ मेल्स हमने सारे आपके शामिल कर लिए हैं और इन्हीं सारी बातों के साथ संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम से हमें तो अनुमति दीजिए क्योंकि हम जाएंगे और हमारे बाद कोई दूसरी खूबसूरत आवाज़ आपके साथ जुड़ेगी। और बस इन्हीं सारी बातों के साथ कि अपना ख्याल रखिए, पर्यावरण दिवस मनाया है, पेड़ पौधे आपने लगाए हैं, बहुत सारे संदेश इससे रेलिवेंट भी आए थे कि हम एक दिन दिखावे के लिए फोटो खिंचाने के लिए लगाते हैं, उसके बाद हम उस पर अमल नहीं करते हैं, चलते फिरते हम देखते हैं कि हमारा खुद का लगाया हुआ पौधा कहीं सूखा जा रहा है, कहीं गाय भैंस ने किसी ने खा लिया जानवर ने, तो उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, जिम्मेदारी भी लीजिए और साथ में ही अपने शहर को अपने इलाके को स्वच्छ रखने में अपना योगदान तो दीजिए ही। जैसे अगर आप पान मसाला जो भी खाते हैं, वैसे तो खाना नहीं चाहिए आपको, लेकिन अगर खाते हैं तो गंदगी ना फैलाएं, उससे देखिए खूबसूरती खराब होती है अपने शहर की और वो आपका और हमारा ही शहर, हमारा ही इलाका, हमारी जमीन तो है। मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, अपनों के साथ रहिए। बस ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आखिरी देते हुए हम आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं

0: आयोजित की जाएंगी। जिला स्तर के विजेता राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। राज्य स्तर के विजेता 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले की जांच और तेज हो गई है। धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने एसआईटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब एक घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एसआईटी ने उनके आरोपों और उपलब्ध तथ्यों पर विस्तार से जानकारी ली। संतोष दुबे ने बताया कि एसआईटी ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं जिन्हें वो आज दोपहर सीओ सिटी कार्यालय के माध्यम से एसआईटी को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि राम मंदिर से जुड़े किसी भी मामले में न्याय योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में ही मिलेगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जौनपुर जिले के 10 जगहों पर उन्नति कैफे का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में 19,000 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। इनसे जुड़ी 2,00,000 से अधिक महिलाएं खुद का कारोबार कर रही हैं। उपायुक्त स्वरोजगार जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में अभी तक एक उन्नति कैफे विकास भवन में बनाया गया है, 10 और जगहों पर कैफे का निर्माण कराया जाएगा। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर को आज भारत वापस लाया जाएगा। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज स्थानीय समय अनुसार शाम 6 बजे हो ची मिन्ह शहर से रवाना होगी और मुंबई हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे पहुंचेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच भारतीय समयानुसार रात 12:30 पर खेला जाएगा। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्ले ऑफ खेलेंगी, जबकि सेमीफाइनल जीतने वाली टीमें 20 जुलाई को न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम रेनबो इस घंटे तरन्नुम के साथ।
1: बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: और दोस्तों 12:03 हो चुके हैं, तरन्नुम है हाजिर लेकर प्रोग्राम शत्रुपा। बहुत सारी बातें हैं जो वुमेन्स हेल्थ से जुड़ी हुई हैं और कैसे महिला को अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला अगर स्वस्थ रहेगी तो फिर उसके साथ उसके आसपास का माहौल, उसकी फैमिली और साथ ही साथ जो सोसाइटी है वो भी हेल्दी रहेगी। फिलहाल सुनते रहिए रेनबो।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो
4: फिर मानो।

और 12:16 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पर, और वो टॉपिक इसलिए खास है क्योंकि माहौल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। और जब मौसम बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सेहत से जुड़ी होती हैं, और जो काफ़ी पॉजिटिव भी होती हैं और काफ़ी नेगेटिव भी होती हैं। अब देखिए, अगर ध्यान की बात की जाए, सेहत की बात की जाए, और किसी भी चीज़ की शुरुआत घर में अगर होती है तो फिर वो शुरू होती है नारी से, महिला से, एक औरत से। और कहते हैं ना कि जब औरत हेल्दी होती है, यानी घर की जो मेन महिला सदस्य होती है जो पूरी फैमिली को देखती है, अगर उसकी सेहत अच्छी होती है तभी वो लोगों को अच्छे से सारी चीज़ों को सर्व कर पाती है, अच्छा भोजन पकाती है, अच्छा खाना पकाती है, अच्छा वो मशवरा देती है, अच्छी राय देती है। और ख़ासकर जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो उनकी मम्मियाँ होती हैं वो एक गाइड की तरह होती हैं, एक टीचर की तरह होती हैं, और एक रोल मॉडल भी कह सकते हैं कि वो होती हैं। लेकिन जब उन्हीं की हेल्थ सही नहीं होगी, जब उनकी सेहत सही नहीं होगी, तो फिर आप बताइए कि कैसे फैमिली आगे बढ़ेगी, कैसे बच्चे जो हैं वो इंस्पायर होंगे, कैसे घर के बुजुर्ग जो हैं वो एक सुकून में होंगे कि हाँ, घर की ये जो महिला है, जो मेंबर है, ये एकदम हेल्दी हैं।

देखिए, सरकार जो है संचारी रोग नियंत्रण अभियान, यानी ये और ये वुमेन्स हेल्थ, ये दोनों एक दूसरे से काफी मैच करते हैं, अटैच करते हैं, क्योंकि जब से जुलाई मंथ शुरू हुआ है तब से ये अभियान और साथ ही दस्तक अभियान संचालित हो रहा है और ये 31 जुलाई तक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि बरसात का मौसम है, लोगों को जागरूक करना है, मच्छर हैं और गंदगी से फैलने वाली कई बीमारियां हैं जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, टाइफॉइड है, इन सब के खतरे बढ़ जाते हैं। तो लगातार सरकार की कोशिश ये रहती है कि कभी कोई ऐसी बीमारी, कभी कोई ऐसे मौसम में चेंजेस आते हैं तो जितने भी नागरिक हैं उनको जागरूक किया जाए। स्पेशली जो महिलाएं रूरल एरिया में रहती हैं, गाँव में रहती हैं, अगर उन तक नहीं जानकारी, उनको नहीं पता है, तो इसलिए ये अभियान चलाए जाते हैं ताकि सारी चीजें उनको पता चल जाए। इसी को देखते हुए पूरे देश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद है कि लोगों को अवेयर किया जाए और बीमारी से बचाव के लिए प्रेरित किया जाए। तो इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में, शत्रुपा में, टॉपिक ये लिया गया कि भाई कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रही हैं, कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। तो जाहिर से बात है कि जब महिला हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी और इन सारी चीजों से बची रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि फैमिली भी खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी और एक हेल्दी फैमिली रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस प्रोग्राम में हम शेयर करने वाले हैं, लेकिन एक ट्रैक है जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, बहुत ही सोचने वाला ट्रैक है, बहुत ही सूदिंग सा नंबर है, पहुंचा दें आप तक।

और 12:24 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं अपने आप को हेल्दी रख सकती हैं, कैसे महिलाएं इस मौसम में अपना ख्याल रख सकती हैं। अब देखिए, मौसम बदल रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा जो काम होता है वो किचन में ही होता है, और किचन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लगातार एसी चला के काम करें, या फिर पसीना ना आए, या फिर मान लीजिए आपको थकान अगर हो रही है और आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है और अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि लोग कहते हैं कि भाई आज बहुत थकान हुई, आज ऐसा लग रहा है कि जिस्म बहुत टूट रहा है और आप देखती हैं कि हल्का फीवर है, तो आप क्या करती हैं? अक्सर लोग ये करते हैं कि कोई भी ऐसी एक टैबलेट लेते हैं, उसको खा लेते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये थकान से बुखार हो रहा है इसलिए हमारा जो ये टैबलेट खा ली इससे ठीक हो जाएगा, फिर अपने काम में हम लोग लग जाते हैं। लेकिन वो बुखार कभी कभी बहुत दिन तक चलता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, या लगातार सर में दर्द है, लगातार आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको वॉमिट फील हो रहा है, उल्टी सी जैसे लग रही है आपको, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उठने का दिल ही नहीं कर रहा, आपको नहीं पता कि आपका बीपी है, आपको नहीं पता कि आपका बीपी लो है, आपको नहीं पता कि बुखार का लेवल कितना है, आपको ये भी नहीं पता है कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ बुरी हो रही हैं, ऐसे में एक टैबलेट भला क्या काम करेगी बताइए आप। ऐसे में बहुत सारे बुखार हैं जो चल रहे हैं, मेनिनजाइटिस की अगर हम बात करें तो वो इस मौसम में बहुत होता है, इसके अलावा इंसेफ्लाइटिस जो है वो भी बहुत तेजी से, दिमागी बुखार जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में होती हैं, बड़ों में भी होती हैं, और बहुत ही गंभीर स्थिति होती है ये, इसको अवॉइड करना, इसको इग्नोर करना बहुत बहुत बुरा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि बहुत तेज बुखार है, बहुत भयंकर सिर दर्द है, गर्दन में आपको अकड़न महसूस हो रही है, रोशनी आपको बहुत बुरी लग रही है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कभी कभी क्या होता है कि दौरे पड़ना भी शुरू हो जाते हैं, ऐसे में लोग झाड़ फूँक के चक्कर में लग जाते हैं कि भाई झाड़ फूँक है, कुछ ऐसा हो गया कि कहीं कोई नागिन में आ गई होंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो गई तो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें सिर्फ भ्रम पैदा करती हैं। अगर आपको तेज बुखार है, अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फौरन आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जो एक्चुअल में डॉक्टर हो, ना कि कोई झोला छाप बैठा हो और आप उसके पास गई, आपने बताया कि सर में तेज दर्द है, बुखार है, ये है, वो है, कितने दिन से आ रहा है, 8-10 दिन से आ रहा है, तो आप उसको कोई और टैबलेट दे देगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है दोस्तों कि जो भी कोई हम टैबलेट लेते हैं तो कितने एमजी की हमें ये पता होना चाहिए, कौन से टैबलेट लिए हमने ये पता होना चाहिए, कितनी देर में हमने खाई ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग घर में खुद से ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर पूछते हैं कि आपने कौन से टैबलेट लिए, आपने क्या लिया, तो आप नहीं बता पाते कि उसकी क्या डोज थी, उसकी पोटेंसी क्या थी, क्या था वो आप नहीं बता पाते, फिर डॉक्टर अपनी दवाएं देते हैं और उसमें क्या होता है कि ओवरडोज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खुद डॉक्टर बनने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, अपनी सेहत को देखिए, सुबह का अच्छा सा नाश्ता कीजिए।

ये दोपहर का अच्छा सा खाना खाइए, और ज़रूरी नहीं कि आप खूब सारी रोटियां ही खा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं जिनको आप खा के अपनी सेहत को संभाल सकती हैं, संवार सकती हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है अपने आप पे ध्यान देना। और 12:27 हो गए हैं, तो एक और ट्रैक है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं जो महिलाओं के प्रति जो सेहत को लेके जो बातें हैं वो ऐसे ही जारी रहेंगी। सुनते रहिए रेनबो।

आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और 12:37 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ और हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सेहत को कैसे ध्यान में रखा जाए, कैसे वो अपनी सेहत की देखभाल करें और कैसे वो एक हेल्दी लाइफ को जिए। और जैसे होता है ना कि कहते हैं लोग कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर हम

से ही अपनी सेहत को लेके अवेयर हो जाएं, जागरूक रहें, या जो मौसम बदलता है उसमें लापरवाही ना बरतें, या थोड़ी सी भी जो तबीयत हमारी ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि थकान हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हम बीमार हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अंदर से बहुत ही टूटे हुए हैं, तो क्यों ना हम उसको पहले ही से जाके जाके अपनी देखभाल करवा लें, डॉक्टर को चेकअप करा लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर महिला को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टाइम टाइम पर, वक्त वक्त पर ANC चेकअप करवाना, TT वैक्सीन है, डॉक्टर की जो दी हुई दवाएं हैं उनको प्रॉपर लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अनीमिया, अनीमिया बहुत ज़्यादा होता है महिलाओं में। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई हमें हीमोग्लोबिन की कमी है, वो दवाएं देते हैं, टॉनिक देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं। टॉनिक लेकर आए, लाके रख दिया, जब मूड हुआ पी लिया, जब मूड हुआ हमने कोई भी ऐसी A to Z टैबलेट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें सप्लीमेंट्स भी होते हैं, डॉक्टर अगर आपको बता रहे हैं तो आप उसको टाइम से लीजिए। अगर आपको टॉनिक डॉक्टर ने लिखा है तो उसको टाइमली लीजिए, उसको ऐसा मत कीजिए कि आपने एक दिन खाया, एक दिन पिया, आपको लगा आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए। जितना भी पूरा कोर्स है उसे आप कीजिए। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको आप अपना कर हेल्दी रह सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो अभियान चल रहा है इस दौरान आशा है, ANM है और आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं। तो जब घर में आपके कोई हेल्थ वर्कर आए, कोई आंगनबाड़ी या कोई ऐसे कार्यकर्ता आए, तो उसकी बात वो जो बता रही है उसे बहुत ध्यान से सुनिए, और जितने भी वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, जितने भी वो निर्देश दे रही हैं, उनको प्लीज प्लीज फॉलो कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ चेकअप करवाती रहें, साथ ही साथ आपकी जो बेटियां हैं उनको बचपन से ही पर्सनल हाइजीन के बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में सिखाते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्दी हैबिट्स जो है वो बचपन से ही शुरू होती है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को रखेंगी तो घर में जो छोटी बेटियां हैं वो जब आपको देखेंगी तो वो सारी चीज़ें भी फॉलो करेंगी। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि माहौल बदल रहा है, देखिए बारिश हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऊपर रखी रह जाती हैं, छत पर रखी जाती रह जाती है, कुछ चीजें हैं जिसमें पानी भर जाता है, ऐसे में क्या होगा कि मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो डेंगू का खतरा है, मलेरिया का खतरा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम अगर आप सारी चीजों को दें, और थोड़ा सा टाइम अगर आप अपनी हेल्थ को भी दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्वस्थ ना रहें। थोड़ा सा खाने का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सफाई का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा घर का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। ये थोड़ा थोड़ा बन के ही बहुत कुछ बन जाता है, और जब बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमार पड़ जाएं। और रेनबो आपके साथ लगातार लगातार काम करता रहता है, कभी आपको हेल्थ को लेकर अवेयर करता है, कभी आपकी पढ़ाई को लेकर अवेयर करता है, कभी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर अवेयर करता है। तो बस एक यही चैनल है, कि यही माध्यम है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हासिल कर सकती हैं। 12:40 प्रोग्राम शत्रुपा तरन्नुम में आपके साथ, सुनते रहिए रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

और 12:49 हो चुके हैं दोस्तों। प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और आज हम बात कर रहे हैं संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है, दस्तक अभियान चल रहा है और इन अभियान के बीच में कैसे महिला अपनी सेहत की देखभाल कर सकती है, कैसे वो अवेयर हो सकती है, जागरूक हो सकती है आजकल के बदलते हुए मौसम में अपनी सेहत को लेकर। और दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं थोड़ी सी लापरवाह होती हैं, मेरे ख्याल से तो थोड़ा नहीं बल्कि कहना चाहिए कि पूरी लापरवाह होती हैं वो अपनी सेहत को लेकर स्पेशली, लेकिन ये भूल जाती हैं वो कि अगर वो एक माँ है, अगर वो एक किसी की भी केयर टेकर है, अगर वो किसी की भी बुजुर्ग की देखभाल करते हैं तो उनको सेहतमंद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल के मौसम में यानी बारिश के मौसम में महिलाओं को सबसे जो खास बीमारी कही जाती है वो हो जाती है यूरिनरी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, अनीमिया, वायरल का खतरा, ये बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि रोज साफ सफाई का ध्यान रखें, कॉटन के कपड़े पहने, आयरन और प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं, बुखार या शरीर के में दर्द है तो बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, जरूरत पड़ने पर फौरन डॉक्टर के पास जाएं, हेल्थ सेंटर से कॉन्टैक्ट करें, खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको इस मौसम में अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आराम से हो जाती हैं और बहुत इजी भी होती हैं, सिर्फ अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि वो एक साथ नहीं बल्कि दो जिंदगियों को एक साथ जी रही होती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो आने वाला जो बच्चा है उसकी देखभाल करें क्योंकि वो उसकी देखभाल तभी कर सकती हैं जो वो अपनी देखभाल करेंगी। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अपना के अपनी लाइफ में आत्मसात करके जिंदगी को खुशहाल जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम पैसे में हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने किसी भी चीज को इग्नोर किया, अनदेखा किया, तो वही छोटी सी चीज जो बहुत ही कम पैसे में हो जाती है उसमें इतना पैसा लगने लगता है, इतना पैसा लग जाता है कि लोग अपनी चीजों को भूलने लगते हैं, चीजों को खोने लगते हैं, घर, यहां तक कि लोगों के घर तक बिक जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही से। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, घर परिवार स्वस्थ रहे, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे हम लोग शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो दोस्तों रह जाती हैं आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन आज का ये जो एक घंटा है ये सिर्फ आप ये सोच के, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, ये सिर्फ ये सोच के आप अपनी जिंदगी में उतारिए कि अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो फिर लाइफ में आपके जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी लोग हैं वो हेल्दी रह सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि एक हेल्दी वुमेन ही एक हेल्दी फैमिली और हेल्दी सोसाइटी की फाउंडेशन होती है, नींव होती है। तो बस इसी एक कोट के साथ, इसी लाइन के साथ 12:52 हो चुके हैं, तरन्नुम को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है होठों पे तेरी बात और आज आपसे हम ये सवाल करने जा रहे हैं

अच्छे इंसान की क्या पहचान होती है, आपकी नजर में अच्छे इंसान की क्या पहचान है? आप हमें मेल कर सकते हैं firmakashwanilakhnow@gmail.com। सुनते रहिए रेनबो।

0: नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के पास तक गए और उनकी परेशानियों और समस्याओं को धैर्य से सुना। मुख्यमंत्री ने संबंधित
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम अनुरोध गीत। आज के कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके साथी संजय का नमस्कार। पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म है कालगर। अनुरोध है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना योगेश, मैंडी सौरभ, साइना और निवान शर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। छावनी अशरफ खां होली चौक मंदिर के सामने से राम प्रसाद शर्मा, फजरुद्दीन, वंदना, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसाबा बदायूं दातागंज से सोमेंद्र, पुष्पेंद्र, आनंद, सरोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरत श्री यादव। साथियों, अब आपको भेज रहे हैं आपके अनुरोध पर किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

अगला गाना है चाचा भतीजा फिल्म से, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज से। सुनने का अनुरोध है पीर बहोड़ा बरेली से आजाद का दिलशाद मुस्तकीम तबस्सुम। खुर्जा उत्तर

देश के तिलक राज अरोड़ा और उनके परिवार के सभी लोग आंवलागंज बरेली से मेहताब हुसैन खान, गजाला खान, आरिफ हुसैन खान, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाह

अगला गीत है पत्थर के सनम फिल्म से, इसका टाइटल सॉन्ग। मोहम्मद रफी साथियों की आवाजें हैं, सुनने का अनुरोध महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारनी सूरज ज्योति और रियांश ठाकुर। इंद्रा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, डब्लू वली उल्लाह। राजनाथ गांव से याकूब यूसुफ इमरान इरफान। जेलोट रायगढ़ से रेशमा सोनम और आदिबा। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोट के नंदा हनुमान। निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज बरेली से नसीम अहमद अंसारी, मेरा जहां मुस्कान भी रेहान, अलशिफा मन्नत। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। भेज रहे हैं आप सबके अनुरोध पर आपके ही रेडियो सेट पर वो गीत जिसको सुनने का अनुरोध आपने किया था, पत्थर के सनम फिल्म से मोहम्मद रफी साथियों की आवाजें सुनिए।

हम आपको सुनवा रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम अनुरोध गीत। हमें उम्मीद है, आशा है कि आपको प्रोग्राम अच्छा ही लग रहा होगा। अगला गीत भी है आप सबके अनुरोध पर ही, फिल्म छैला बाबू, किशोर कुमार साथियों की आवाजें। आजर नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत के बिमल वर्मा। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय राधिका, अनिष्का तन्मय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। भेज रहे हैं आप सबके अनुरोध पर आपके ही रेडियो सेट पर वो गाना जिसे लिया गया है छैला बाबू फिल्म से।

FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं

बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, airbareli@cbs.gmail.com।

और साथियों अब हम आप लोग के बीच में भेज रहे हैं वो गाना जिसे लिया गया है फिल्म मोहरा से। गाने के बोल हैं ना कजरे की धार, पंकज उदास और साथियों की आवाजें हैं। सुना जाए रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से बंटू भाई आदित्य कुमार होरीलाल सत्येंद्र उर्फ मिंटू भाई। प्रमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा राजू भाई माया वर्मा। साथ में है शोभा राहुल ज्योति पायल प्रियांश और ऋषि वर्मा। बरेली जंक्शन से गरीब भाई नासिर भाई बिक्की भारद्वाज। पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य सुंदर देवी प्रकाश रिंकी कपिल वेदराम कैलाश सुनील खुशबू ऐरोही और स्वाति मौर्य। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर दीपक और जावेंद्र कुमार वर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित और हैप्पी रॉय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति और नवनीत रॉय। लीजिए सुनिए ना कजरे की धार फिल्म मोरा से ये गाना।

गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और साथियों ने। फिल्म है चरस। सुना जाए शीतल रेडियो श्रोता संघ बेरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश के डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा हादिया, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्ताबा खान और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ककराला बदायूं के मसरूर खान, सरफराज, विकास, गंभीर, प्रवीण, अनिल सागर, भरत यादव, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि। गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला, मिर्जा नसरीन, अरवाज शहबाज, सूफिया, पप्पू अफसाना महजबी,

गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलबिंदा जयते गौ मीका बेरा सुनिए और एंजॉय करिए फिल्म चरस का ये गीत।

अब अगला गाना, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं अब गाने से। फिल्म है इज्जत, मोहम्मद रफी साथियों की आवाजें हैं। सुना जाए दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई जमशेदपुर से देवेंद्र, राकेश, निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी। फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद, बीपी रंजू, अशोक, सुशील, बीके, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन, गुंजन, राम, कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, राकेश, विनोद, पाली, डीसी और अरुण। साथी हैं नेहा, एकता, शम्मी, सुनील, बीके पुरी और आरएस पुरी। परिमेल कासगंज से आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ, नबील, एम असलम सैफी। भूर सुदा छत्तीसगढ़ से भगवानी, संतोषी सेन, चंद्र प्रकाश, नेहा, गजेंद्र और चिराग सेन। लीजिए सुनिए और एंजॉय करिए।

आज का अंतिम गीत आप सबके अनुरोध पर। फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, किशोर कुमार साथियों की आवाजें हैं। सुना जाए दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता, शिल्पा और आकाश कुमार, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज और साहिल, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल, रोहिणी सेक्टर 17 से रामेश्वर दास, पल्लवी आर डी चंद्रा, न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित, अनीता और राजीव, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, सावले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल।

दोस्तों, आज का प्रोग्राम अनुरोध गीत आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको, और आप कुछ भी इस प्रोग्राम के संबंध में कहना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम आपका पत्र मेला में ईमेल या पत्रों के माध्यम से कह भी सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं ही हम लोगों का उत्साह बढ़ाती हैं। बहरहाल अगले कार्यक्रम तक के लिए जी हाँ, फिर किसी दिन मिलेंगे, लेकिन स्टूडियो में आ गए हैं हरीश कुमार और इंतजार कर रहे हैं 2 बजे का। बस बजने ही वाले, तब तक ये गाना एंजॉय करिए।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत कार्यक्रम संजय मठ के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अपराह्न के 2 बजे लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम रस रंग। बात है आपको ये गीत इसे गाया है साधना सरगम ने, ये

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: शुरू में इस वक्त आप सुन रहे हैं रसरंग कार्यक्रम। सुनवाते हैं आपको ये राजस्थानी फोक।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं रसरंग कार्यक्रम का, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। अभी आपने सुने राजस्थानी और पंजाबी लोक फोक सॉन्ग, और आप सुन में आते हैं आपको ये भजन स्वर है अनुज जलोटा का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब आपको जोड़ रहे हैं विविध भारती प्रसारण से कार्यक्रम दिन लेकर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। डी एन मधोक ने इस गीत को रचा है। सी रामचंद्र का संगीत।

0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद अजीज की, आनंद बख्शी की रचना है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: चाहे

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राज कवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात या

0: कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
1: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे ही, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
1: मैं नहीं, हमारे श्रोता जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए।
0: जी,
1: तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी।
0: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
1: पत्ता गोभी,
0: तो पत्ता गोभी की भी थी,
1: लौकी का पराठा भी बनता
0: है, लौकी का भी होता है,
1: प्याज का पराठा
0: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
1: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का। तो फिलहाल एक गाना सुन लें हम।
0: चलिए।

0: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना
2: दो बहनें दो साल बाद एक

0: आपने सुना?
1: दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
2: इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
1: राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
0: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
2: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
0: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
2: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी, और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुवत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी, शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी, और जू ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
1: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
0: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना फिर चली जाना, मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
1: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली,
2: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ अभी नहीं।
0: बहन क्या रात भर भी न ठहरोगी?
2: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
0: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
2: अब खुद कहला दूंगी। हाँ
0: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं, एक शहर में रहते हैं फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
2: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती, कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
1: इतने में राम दुलारी के शौहर

0: और मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
1: कैसे हो गुरु सेवक? आज यहां ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
0: गुरु सेवक हंसकर बोला,
2: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत। कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
1: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
2: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए।
1: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूं।
3: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
0: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। रामदुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
1: नहीं नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
0: आखिर रामदुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
2: दीदी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है, 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
1: हाँ, रामदुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो। देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई।
2: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूं। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। आप ही बताइए, ईमान खो के पैसे मिले तो क्या?
1: सही कह रहा,
2: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूं, और आंखें किसकी बचाऊं? सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। हां उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
1: अच्छा,
2: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 ही महीने में 250 कर दिया।
1: अच्छा,
2: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
1: अच्छा एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
2: हाँ वही, मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
1: अच्छा,
0: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया, और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए।
1: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।
0: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी।

0: ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वहीं रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
0: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ ना आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा,
1: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ, आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
0: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
2: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
1: तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी? महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्यौत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी, तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
0: यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?
0: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहां मिलते हैं? वह तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मादूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
3: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
3: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी, इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
3: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी,
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
3: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओं, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
3: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का

0: संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद, और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं समाज के विकास में विज्ञान की भूमिका के विषय में। विज्ञान ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक

0: आपका नाम?
1: जी मीनाक्षी देवी।
0: मीनाक्षी जी, आप अपने बारे में हमारी बहनों को बताइए, क्या करती
2: हैं? कंगारू के कितने पैर होते हैं?
3: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
2: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
3: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में
4: फसल बह गई।
5: कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
6: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, हा हा हा, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
7: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
6: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
5: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
6: अरे काट काट काट, अरे मेरा भी क्या देख रहा, काट।
8: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
5: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
9: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
5: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
10: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
7: और पैसे कमाने हैं।
5: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
6: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
11: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
5: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
12: अरे अरे हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
13: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
6: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल
13: बह गई।
12: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
13: सारा
12: सामान
13: जल्दी
12: से ऊपर ले जाना होगा।
13: चलो जल्दी ऊपर,
12: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
13: चलो चलो,
12: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
13: ध्यान से संभल कर।
5: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
14: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
3: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं। मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
1: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे
4: क्या हुआ?
1: कोई घबराने वाली बात नहीं है रे। वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ,
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी फट तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पल फाड़ गए।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ, चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
3: राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: वहाँ में देखो तो, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना है।

0: मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा रहेगा।
1: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
2: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
0: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा। हाँ, ठीक है,
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
0: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
2: हाँ,
0: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा।
2: हाँ,
0: अरे कोई है? हाँ, अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ, क्या बात,
0: जल्दी बाहर। शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
0: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
3: बिल्कुल
0: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
2: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
0: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो।
1: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
5: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
6: बाद में काट
1: लेंगे। सभी ने गौरा देवी

0: और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
1: वाह भैया, गौरा ने तो भी
2: बहुत कमाल का काम कर दिया। अरे
1: ऐसी ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे
2: क्या
1: बात भाई, कमाल कर जीतती रहे मिट्टी जीतती रहे।
3: तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
4: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को
4: कुसुमलता,
5: जगबंधु,
4: चेतना
5: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शाम के 4 बज चुके हैं, हम लेकर हाजिर हो गए कार्यक्रम को, और देखते हैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले कौन जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, और कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
7: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं। सर
6: ठाकुर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है। आपके बहुत सारे पत्र मिलते रहते हैं, और आज इस कार्यक्रम में हमारी और आपकी जो बातचीत है उसका विषय है, क्या स्मार्टफोन व्यक्ति को स्मार्ट बनाता है, ये हमारा आज का विषय है। इस पर क्या विचार आपके हैं?
7: स्मार्टफोन से ये बहुत फायदे हैं, इसे ये सदुपयोग किया जाए।
6: जी,
7: जैसे हमें अपना बैलेंस देखना है कि स्मार्टफोन से हम देख रहे हैं घर बैठे कि हमारा बैलेंस इतना बैंक में है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने।
7: हमें ट्रेन का पता चल जाएगा, ट्रेन किस टाइम पर किस स्टेशन पर किस समय आएगी।
6: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
7: हमें यही पता चल जाए, हमें कोई हिसाब निकालना है तो स्मार्टफोन से हम हिसाब निकाल देंगे।
6: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
7: हमें कहीं मार्ग पूछना है, स्मार्टफोन से सादा बिल्कुल सीधा दिखाई देता कि ये रास्ता इधर को गया, ये रास्ता यहाँ गया, ये चौराहा यहाँ पर है।
6: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सही बता रहे हैं आप। और कुछ कहेंगे इसके बारे में?
7: इससे बहुत फायदे हैं स्मार्टफोन से, और हमें जो भी देखना है, हमें कोई तीर्थ स्थान देखना है तो घर बैठे देख सकते हैं।
6: तो खेती बाड़ी आप करते हैं, उसमें कोई लाभ ले पाते हैं इस फोन का, स्मार्टफोन का?
7: जी हाँ, लाभ लेते हैं इसका।
6: जैसे कभी कभार जो आप खेतों में होता है खरपतवार, तो पूछते होंगे दवा कौन से लगाएं, इस तरह से ना, या कौन सी फसल का क्या दाम चल रहा है, ये भी जान पाते हैं आप, है ना?
7: जी हाँ, इसको भी जान पाते फसल हमारी किस तरह से हम फोटो आ जाता हमारे।
6: जी तो ये बताइए कि आज कार्यक्रम में फोन लगा है, गाने की बारी है, कौन सा की सुनवा दें आपको?
7: गाना सुनवा दिए फिल्म विश्वास का, गांधी की दीवार में थोड़ी प्यार भरा।
6: ठीक है, हम भेज रहे हैं ये गीत, सुनिए, एंजॉय।

0: कार्यक्रम में अब हमारे साथ कौन साथी कहाँ से जुड़ चुके हैं? कार्यक्रम में स्वागत है, कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: जी कार्यक्रम में बहुत आपका स्वागत है, और हमारी जो आज की बात का विषय है उसके बारे में क्या कहेंगे आप श्रोताओं से?
1: हाँ जी सर जी, जो स्मार्ट फोन आए हैं, जैसे पहले पुराने दौर में कीपैड फोन चलते थे, उसका दौर कुछ अलग था। फिर जैसे जैसे आधुनिक युग आया है, आधुनिक युग के अनुसार इंटरनेट का उपयोग भी अब ज्यादा होने लगा है, उसके अनुसार फिर ये स्मार्टफोन भी आ गए हैं।
0: जी
1: और स्मार्टफोन के फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं।
0: जी बताएं।
1: और फायदा तो ये है सर, जैसे आज अपन यूपीआई चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, ये सब जो चीजें चलाते हैं ये सब इंटरनेट के माध्यम से चलती है, तो ये तो थोड़ा सरल हो गया कि पैसों का जो लेन देन है, आदान प्रदान है, एक सुविधाजनक हो गया है। और हमारे पॉकेट में रहते हैं पैसे, तो हम पहले डर रहता था पॉकेट में, जब नगद राशि हम लेके चले थे तो
0: जी
1: नगद राशि में हमें नुकसान भी रहता था, कहीं पॉकेट कटिंग हो जाती थी, कहीं पैसे अपने कोई लूटपाट कर लेता था। स्मार्टफोन में जब ये यूपीआई आया है, इससे ये फायदा हो गया है कि जेब पे कोई हाथ नहीं मार सकता है, और
0: ये तो
1: इससे
0: कह
1: हम
0: रहे हैं।
1: यूपीआई पेमेंट कहीं पर भी, किसी भी देश के किसी भी कोने में, विदेश तक हम पैसा भेज सकते हैं एक टच के अनुसार।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और कुछ कहेंगे इसके बारे में, नुकसान क्या हो सकते हैं इसके?
1: अच्छा, नुकसान सर जी ये है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का उपयोग बहुत से ज्यादा गए, उसमें बिना काम के वीडियो जो अपलोड हो जाते हैं उनको देखते हैं, उसमें समय बर्बाद करते हैं अपना। और बच्चे भी हैं जो गेम्स चलाते हैं मोबाइल के अंदर, जो ये गेम चलते हैं ना, उसमें बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है बच्चों का। फायदा और नुकसान दोनों चीजों को अगर तालमेल मिलाकर हम देखेंगे तो उसका सदुपयोग ही करना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल
1: जैसे कि बच्चे आजकल गूगल पे अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ ऐसे नोट्स रहते हैं जो उनको बुक्स में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, वो उनको गूगल पे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं, ये बच्चों के लिए फायदेमंद हो गया है।
0: जी बहुत धन्यवाद आपका। अब गीत की बारी है, तो कहिए गीत कौन सा हो जाए आज इस कार्यक्रम में आपके
1: गीत
0: लिए?
1: सर जी, आपकी पसंद से कोई अच्छा सा बारिश का गीत सुना दीजिए, क्योंकि बारिश का हम काफी इंतजार कर रहे हैं, भारत देश के अंदर कहीं कहीं पे बारिश अभी ज्यादा नहीं हुई है।
0: ठीक है, तो हम ये बारिश का गीत आपके लिए भेज रहे हैं, एंजॉय कीजिए।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में देखते हैं आप कौन से साथी से जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं, हमारे कौन से दोस्त बोल रहे हैं?
1: मैं सुल्तान रजा बात कर रहा हूँ। नमस्कार मौर्य सर, कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं।
1: सब्जी मंडी बरेली से।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी
1: सर, आज का विषय भी बहुत अच्छा है कि स्मार्टफोन बाकी में हमारा स्मार्ट है क्या।
0: जी तो क्या विचार है आपके?
1: जी सर, इसमें स्मार्टफोन में जो है हमें बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं, जैसे कि मौसम की है वो भी मिली जाती है SMS के जरिए, या हम कहीं जाते हैं तो रेलवे के जरिए इसमें कह पाता है।
0: जी
1: तो ये हमें बहुत सुविधा रहती है कि पहले हम वहाँ जाके पूछते थे अधिकारियों से कि कौन सी ट्रेन किस पे आ रही है या किस प्लेटफॉर्म पे है, अब तो सारा कुछ फोन के अंदर ही है।
0: जी
1: तो ये वाकई में हमारे लिए एक बहुत अच्छा साधन है,
0: यानी कि हम लोग स्मार्ट बन गए हैं, है ना, स्मार्टफोन ने हमें स्मार्ट बना दिया है।
1: और हम कहीं की जानकारी चाहिए तो हम सीधे मैप पे गए, वहाँ सर्च किया और आगे पढ़ते चले गए।
0: जी
1: तो ये हमारा स्मार्टफोन वाकई में बहुत जरूरी है, और स्मार्ट भी इसलिए कहा जाता है इसको। लेकिन सर इसमें एक खूबी भी बहुत है।
0: जी
1: स्मार्ट के साथ सब बहुत सारी चीजें ये खा गया हमारे हिसाब की बचपन की। जैसे की घड़ी है, रेडियो है।
0: जी
1: जी
0: तो सुल्तान भाई, कार्यक्रम में अब गीत कौन सा हो जाए आपके लिए आज?
1: आज एक गीत मम्मी ने रिक्वेस्ट किया है कि आप ये गीत सुना दीजिएगा।
0: जी
1: गाने के बोले हैं, दरवाजा खुला छोड़ जाए नींद के मारे।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत, एंजॉय कीजिए।

गई, चुनरी खिसक गई, पांव पड़ते हैं उधर, ध्यान है तेरा किधर, किसी ने तुझको छुआ, कुछ न कुछ गोली हुआ, बोलिए क्या।

0: का कुछ ना कुछ कराई।
1: कार्यक्रम आपकी बात आकाश वाणी के साथ में देखते हैं। अब हमारे कौन से साथी जुड़ चुके हैं, स्वागत है कार्यक्रम में, कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे साथी?
2: हेलो नमस्कार सर जी, राजेंद्र गंगवार कस्बा सोढ़िया तहसील नवाबगंज सिटी परेजी से बात कर रहे हैं सर जी।
1: जी बहुत स्वागत है आपका गंगवार साहब, कैसे परिवार में आपके हाल चाल है सबके?
2: सब कुशल मंगल है सर जी, आकाशवाणी परिवार में सब कैसे लोग हैं,
1: सब
2: आपके परिवार में कैसे हैं?
1: सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं। और जो हमारा विषय है उसके बारे में क्या विचार है आपके?
2: सर जी वैसे तो माना जाए तो स्मार्टफोन स्मार्ट ही बनाता है, अगर आप प्रक्रिया सही अपनाते हो, जैसे अगर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के जरिए अपनाते हो तो अच्छा स्मार्ट ही बनाएगा फोन, अगर इसको गलत से इस्तेमाल करोगे तो गलत ही बनाएगा सर जी।
1: जी बिल्कुल,
2: हाँ जी,
1: मतलब जो स्मार्टफोन है उसने वास्तव में हम लोगों को स्मार्ट कर दिया है ना, स्मार्ट बना दिया है।
2: हाँ जी स्मार्ट तो बना ही दिया, कहीं अगर हमने जाना हो तो लोकेशन डाल दी, या कहीं किसी कंप्यूटर का हिसाब लेना हो तो मोबाइल में सब कुछ है, टार्च है तो सब भी मोबाइल में ही सिस्टम है, इसीलिए स्मार्टफोन ही स्मार्ट है सर।
1: मतलब हमारे लिए फायदेमंद ही है ना।
2: हाँ जी,
1: तो कार्यक्रम में अब गीत की बारी है तो कहिए कौन सा गीत सुनवा दे आपको?
2: हाँ जी, तो मोबाइल की बात चलिए तो एक सॉन्ग है
1: जी,
2: मोबाइल पे एक सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा है गोविंदा का सॉन्ग,
1: व्हाट इज मोबाइल नंबर, हाँ ये ठीक है मुझे पता है, ठीक है।
2: हाँ जी यही का सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
1: ठीक है तो धन्यवाद आपका हम फोन करने के लिए, भेज रहे हैं आपकी
2: दोस्तों का नाम शामिल शेयर करना चाहते हैं
1: इस कार्यक्रम में, आई थिंक नाम का नहीं होगा है ना, नाम तो आप शामिल हो जाते कार्यक्रम में सुबह पसंद में है ना, आप ही रखिए कार्यक्रम में नाम अकेले है ना, ठीक है ना।
3: हेलो 9821026212 BPL चेक, अरे 9820026235 मैक्स टच चेक, यार जिस लड़की

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब देखते हैं हमारे कौन से साथी हमसे जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है कार्यक्रम में, आपका कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी सर नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी कार्यक्रम में स्वागत है, और हमारी जो आपकी जो बातचीत का विषय है, क्या विचार है आपके इस विषय पर?
1: जी बताना चाहेंगे, जब स्मार्टफोन चले हैं ना मार्केट में, समाज में,
0: जी जी,
1: तो इससे मतलब काफी लोगों को मतलब एक दूसरे से जानकारी मिल रही है, सोशल मीडिया का प्रचार हो रहा है, किसी भी अगर कोई भी खबर होती है ना तो तुरंत मतलब सभी लोगों तक अपडेट मिल जाती है इस जानकारी के लिए। तो स्मार्टफोन हर तरह से मतलब आगे समाज में आ चुका है, नेटवर्क इसका बढ़ चुका है, तो हर एक आदमी के पास में स्मार्टफोन है और सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको भी स्मार्टफोन चलाना आ गया है, और वो भी मतलब आसानी से स्मार्टफोन चला रहे हैं।
0: जी बहुत अच्छी है, आपने अपने विचार व्यक्त किए इस विषय पर। अब गीत की बारी है, कहिए इस कार्यक्रम में गीत कौन सा भेज दें आप तक?
1: जी फिल्म का नाम है दम लगा के हंसिया, और गाने के बोले तुमसे मिला दिल में उठा दर्द करारा।
0: ठीक है, तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर एक गीत, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: वेलकम।

0: कार्यक्रम में स्वागत है। देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कौन से श्रोता बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: जी तुकाराम जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। और इस कार्यक्रम में हमारी जो बातचीत का आज का विषय है वो है, क्या स्मार्टफोन व्यक्ति को स्मार्ट बना रहा है? तो क्या विचार है इस विषय पर आपके?
1: स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत अच्छे काम के लिए करना चाहिए। पहले रिंग का फोन था
0: जी,
1: रिंग के फोन के बाद दूसरा फोन टच वाला फोन आ गया, वो बटन वाला। अब फिर स्मार्टफोन आ गए ना
0: जी,
1: वो बहुत जल्दी से जल्दी फोन लगते हैं और पूरे दुनिया भर की जानकारी फोन पर मिलती है ना।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत अच्छी जानकारी मिलती है।
0: तो मतलब कि जो स्मार्टफोन वास्तव में हम लोगों को स्मार्ट बना रहे हैं ना
1: जी।
0: तो आज गीत कौन सा हो जाए इस कार्यक्रम में आपके लिए?
1: कारवा
0: कारवा
1: जितेंद्र।
0: ठीक है, बोल क्या है गाने के?
1: गोरिया कहा तेरा जैसे।
0: ठीक है, तो तुकाराम जी हम भेज रहे हैं आपकी पसंद पर गीत। एंजॉय।

तो अब बारी है कार्यक्रम में आप सभी के कमेंट्स की, और ये कमेंट हमें मिला है इस कार्यक्रम के लिए। साथी हमारे लिख रहे हैं गंगा सिंह रावत जी, हमें लिख रहे हैं रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से। आप लिखते हैं कि बिल्कुल स्मार्ट जो है, बिल्कुल स्मार्ट नहीं बनाता, उल्टा ये हमारे युवाओं में, नौजवान पीढ़ी में मोबाइल की लत को बढ़ा रहा है। हिंदी में एक कहावत है, जहाँ काम आवे सुई वहाँ का करे तलवार, यानी कम महंगे मोबाइल से भी स्मार्ट काम करा जा सकता है। मोबाइल से ज़्यादा मोबाइल चलाने वाले का हुनर जो है वो मान रखता है। इस समय 90% लोग स्मार्टफोन सिर्फ स्टेटस सिंबल के

रखते हैं, इसलिए मेरी सलाह है जब तक अत्यंत आवश्यकता ना हो स्मार्टफोन को ना लें और आम फोन से ही काम चलाएं। अंत में हमें टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाना है तो गुलाम बनना नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपके, अपने विचार आपने हमें दिए। और गीत सुनवाते हैं आपके पसंद का।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

श्रोताओं, कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और इसमें आप कमेंट्स हम शामिल कर रहे हैं। आप हैं साथी हमारे कस्बा सीकर से लिख रहे हैं शाहरुख खान साहब, और हाशिम खान अरहम बाबू और किशवाणू लिख रहे हैं कि एक स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने के बजाय एक छोटे कंप्यूटर तक काम करता है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट, ये मिनी कंप्यूटर इंटरनेट, ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया जैसी सुविधा देता है। सेंसर्स इसमें GPS और एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर्स होते हैं जो लोकेशन ट्रैक करने, दिशा बताने और आपकी हरकत को समझने में हेल्प करते हैं। धन्यवाद आपका। और आप हैं साथी हमारे, हम लिख रहे हैं ग्राम डहरपुर खुर्द बदायूं से मुजम्मिल हुसैन साहब लिख रहे हैं, तहसील की दादागंज लिख रहे हैं कि स्मार्टफोन की दुनिया में खोकर हमने अपनी याददाश्त और सोचने की जो क्षमता है वो कम कर दिया है। बिल्कुल सही है। जब से कैलकुलेटर आया है हम पहाड़े और साधारण जोड़ घटाव तक भूल गए हैं, और मोबाइल की लत ने हमें असल ज़िंदगी में अपने से दूर कर दिया है। और आज हम स्मार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन क्या सच में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ मोबाइल के गुलाम बन गए हैं? बहुत ही शानदार आपने लिखा है, और बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि हम अपना जो ये अपनी याददाश्त है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। धन्यवाद आपका मुजम्मिल भाई। और आप साथी हमारे हैं साधु शहर राजस्थान से लिख रहे हैं राम कुमार रेवाड़ जी, साथ में हैं चंद कला रेवाड़ जी। आप लिख रहे हैं कि स्मार्टफोन अगर हम सही से उसे इस्तेमाल करें तो हमारे जीवन में एक अच्छी क्रांति लाता है, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल आसानी से घर बैठे ही हम कर सकते हैं। संचार, शिक्षा, बैंकिंग जैसे काम बिल्कुल आसानी से हो जाता है। और आजकल तो किसान भाइयों के लिए भी किसानों से संबंधित सारी जानकारी मोबाइल से प्राप्त की जा सकती है। स्मार्टफोन के जरिए पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से पल भर में वीडियो कॉल के द्वारा जुड़कर हर तरह की जानकारी मिल जाती है। और डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और बिल भुगतान में भी लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। गैस सिलेंडर के लेने के लिए एक समय था लाइन लगती थी, लेकिन जब घर बैठे ही ऑनलाइन बुकिंग और ऑनलाइन पहुंच हो जाती है तो स्मार्टफोन के जरिए हम आज जो है आपके साथ ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। आकाशवाणी के साथ ही हमारी पारिवारिक दोस्ती हो गई है, और ये स्मार्टफोन का ही कमाल है। धन्यवाद आपका। और लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से मानसिक तनाव, नींद में कमी, आंखों पर भी बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है, और स्क्रीन की लत जैसी समस्याएं भी होती हैं। अगर हम स्मार्टफोन को सही उपयोग करें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, अगर हम इसका दुरुपयोग करें तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखें और अपना ध्यान रखें। बहुत अच्छी आपने ये बात लिखी, बहुत अच्छी आपने ये जानकारी लिखी, धन्यवाद आपका। और ये साथी हमें लिख रहे हैं बिष्टु मस्कीन जी, रितिका मस्कीन, वाणी मस्कीन, और अब जी लिख रहे हैं कि लिख कहाँ से रहे हैं, तो भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र लिख रहे हैं कि भाई स्मार्टफोन अपने आप किसी को स्मार्ट नहीं बनाता, ये केवल एक उपकरण है, टूल है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। यदि स्मार्टफोन का उपयोग पढ़ाई या नई चीज़ें खोज सीखने, प्राप्त करने में लगाएं तो कौशल विकसित करने और सही संवाद के लिए किया जाता है, जो एक व्यक्ति को अत्यधिक ज्ञानवान और सक्षम बना सकता है। लेकिन यदि इसका उपयोग केवल घंटों तक मनोरंजन बिना उद्देश्य के सोशल मीडिया का या समय जो है उसको बर्बाद करने में लगाएं तो ये बिल्कुल भी उत्पादकता को कम भी कर सकता है। तो भाई ध्यान रखें, अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। आप लिख रहे हैं कि प्रवीण चौहान साहब लिख रहे हैं कि मोबाइल अब सिर्फ कॉल तक सीमित नहीं रह गया है, इंटरनेट, कैमरा, रेडियो, मैप, इंटरनेट जैसी कई आधुनिक सुविधाएं एक छोटे से स्मार्टफोन में मिल जाती हैं। स्मार्टफोन से हम घर बैठे स्मार्ट तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन पेमेंट, वीडियो कॉलिंग, AI का उपयोग आसानी से कर पा रहे हैं। दुनिया भर की जानकारियाँ आसानी से मिल रही हैं। हमें सिर्फ फालतू की रील देखकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप हैं साथी हमारे लिख रहे हैं साहिल खान, सराया खान, रसाया खान पर से लिख रहे हैं, जिला पीलीभीत से लिख रहे हैं कि सिर्फ स्मार्टफोन होने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। बिल्कुल ठीक है। आपने स्मार्टफोन का एक उपकरण है, अगर इसका उपयोग पढ़ाई, नई चीज़ें सीखने या जानकारी हासिल करने में अच्छे काम में लिया जाए तो ये हमारे लिए अधिक ज्ञानवान और कुशल बन सकता है। लेकिन यदि इसका उपयोग घंटों सोशल मीडिया या गेम या बेवजह समय बिताने में करें तो ये ही हमारे लिए बर्बादी बन सकता है। तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

ये साथी लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं साथी हमारे लाल मोहन अंसारी साहब, ग्राम करेली पानी मिस्त्री बरेली से। साथ में लाली मिस्त्री साहब लिख रहे हैं कि स्मार्टफोन आपको स्मार्ट बनाता है। स्मार्टफोन हमको बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं बनाता, बल्कि ये हमारा नुकसान करता है। कई बार स्मार्टफोन के चक्कर में व्यक्ति बहुत बहुत नुकसान भी उठाते हैं। कई बार लोग गाड़ी चलाते समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, और फोन को फोन ही की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद आपका।

और कार्यक्रम में ये आखिरी कमेंट है ग्राम गोबीखरिया तहसील भांडेर जिला दतिया से एमपी से राहुल पाल अंजना पाल लक्ष्य बबलू हरी मोहन जो तिलाब लिख रहे हैं कि शिक्षा और तकनीकी सुविधा देकर निश्चित रूप से स्मार्ट तो बना रहा है ये फ़ोन, परंतु वहीं इसका अत्यधिक उपयोग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुँचा रहा है। एक तरफ हम इंटरनेट की मदद से कोई भी जानकारी तुरंत प्राप्त कर पा रहे हैं, वहीं बैंकिंग बिल भुगतान और शॉपिंग जैसे काम घर बैठे बहुत ईजीली कर रहे हैं, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग से दूर बैठे अपने परिजनों से आसानी से जुड़ पा रहे हैं। परंतु वहीं रील और सोशल मीडिया से ज़्यादा अधिक समय बिताने में असल जो ज़िंदगी है उसमें उत्पादकता कम कर रहे हैं। अधिक स्क्रीन टाइम से आँखों पर दबाव, नींद ना आना, गर्दन में दर्द जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, और लोग वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा और असल दुनिया में कम जीने लगे हैं, जिससे सामाजिक रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। धन्यवाद आपका हमें कमेंट करने के लिए। फिलहाल सुनवाते हैं आप पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 5:05 कार्यक्रम में आपको भजन संध्या, कार्यक्रम संसार में आज शाम 5:30 पर चर्चा का विषय रहेगा तनाव से रहें दूर। साथ ही वार्ता सुनाएंगे आपको समाज के विकास में विज्ञान की भूमिका, वार्ताकार होंगी सीमा। इसके अलावा भी टिप्स और इनसे मिले भी सेगमेंट आप तक पहुंचाएंगे। ये वर्ण कार्यक्रम में आज शाम 6 से नेहा सिंह लेकर आएंगी धूम धड़ाका। आज शाम 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम जगत में चर्चा का विषय रहेगा बच्चों का टीकाकरण। साथ ही सुनवाएंगे आपको भेंटवार्ता, विषय रहेगा सदाबहार खेती कर आमदनी बढ़ाएं। इस विषय पर श्री भगत सिंह से जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार। अक्षयवट कार्यक्रम में आज शाम 7 सुनवाएंगे भेंटवार्ता, विषय रहेगा मेहमान होंगी चंद किरण जी, इनसे बातचीत करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत लेकर हाजिर होंगे आज शाम 7:31 पर। कल सुबह 8:15 पर कार्यक्रम लेकर आएंगी नमस्ते बरेली निधि त्रिपाठी, इसमें सुनवाएंगे आपको बरेली की बातें, स्थानीय खबरें, साथ ही गीत संगीत भी आप सुन सकते हैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से। लोकगीतों का आनंद ले पाएंगे आप आज कल सुबह 8:45 पर। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी की कार्यक्रम आपकी पसंद कल सुबह 10 से सुन सकते हैं आप। सब रंग कार्यक्रम कल सुबह 11 से हम आप तक पहुंचाएंगे। झुमका गिरारे, जी हाँ, ये कार्यक्रम कल सुबह आपकी कल पूर्वाह्न 11:15 पर आप सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी नीतू त्रिपाठी। अनुरोध गीत कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए कल अपराह्न 1 से। रसरंग कार्यक्रम कल अपराह्न 2 से हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा कल शाम 3:30 पर। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का प्रसारण समय कल शाम 4 से। भजन संध्या कल शाम 5:05 पर आप तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम संसार में कल शाम 5:30 पर चर्चा का विषय रहेगा रिश्तों में भरोसा कायम रखें। सुनवाएंगे आपको वार्ता, विषय रहेगा डिजिटल युग में महिलाओं में उच्च शिक्षा, चुनौतियां और अवसर। वार्ताकार होंगी अमिता। प्रोग्राम युवाणी में कल शाम 6 नेहा सिंह लेकर आएंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। किसान वाणी कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर आज की बात होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हेलो किसान में कल बातचीत का विषय रहेगा धान की फसल प्रबंधन। इसके अलावा बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, आज का सवाल, नसीहत और लोकगीत भी आप सुन सकते हैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से। कल शाम 7 सुनवाएंगे कार्यक्रम आपको ग्राम जगत में चर्चा का विषय रहेगा स्वच्छ पानी पिए। वार्ता भी इसी कार्यक्रम में सुनवाएंगे, विषय रहेगा वृक्ष धरा के आभूषण। वार्ताकार होंगी रेणु। साथ ही लोकगीत भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सुनवाएंगे। कल शाम 7:31 सुनवाएंगे कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। मेहमान होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। श्रोताओं, ये जानकारी थी हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से 100.4 FM पर। समय हुआ है

0: बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान।
1: एक फिर सुनवाते हैं आपको, ये स्वर है अनुज तिरोटा का।

श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन मेडिकल लाइन में बुधवार दिनांक 15 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम है उसका विषय है महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग करेंगे हम इसकी कल मंगलवार दिनांक 14 जुलाई शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या सिन्हा मौजूद रहेंगी। जी हाँ, विवरण एक बार फिर से लीजिए। विषय रहेगा महिलाओं में मच्छरदानी की रसौली, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे हम कल यानी कि मंगलवार दिनांक 14 जुलाई शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर है हमारा 0581251720। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या में भजन, तो सुनवाते हैं आपको ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या में भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया और अब स्टूडियो में आ चुकी हैं प्रियंका श्रीवास्तव, वो कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है नारी संसार। तो सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रोग्राम नारी संसार सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका, ओनली ऑन 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। सखियों, बारिश का मौसम चल रहा है। जब से बारिश शुरू हुई है तब से गर्मी से काफ़ी राहत मिली है, मौसम अच्छा हो गया है। जब बारिश होती है तब गर्मी से राहत तो मिलती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, वायरल फ्लू, टाइफाइड, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस। ये बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं बारिश के मौसम में। सखियों, ये बीमारियां हमें ना हों इसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। जैसे कि आप जब भी सोएं तो मच्छरदानी का यूज़ करें, मच्छरों से बचाव बहुत ज़रूरी है, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और हमारे घर के आसपास पानी ना जमा हो पाए, और हमारे घर में जो कूलर है उसका पानी आप रोज़ाना चेंज करें। पानी उबाल कर पिएं, बाहर का खाना और खुली हुई चीज़ें खाने से बचें। कोशिश करें घर का ही बना हुआ खाना खाएं। जब भी बारिश में नहाएं या भीग जाएं तो बाद में ताज़े पानी से, साबुन से आप ज़रूर नहाएं, और गीले कपड़े ना पहनें, इससे फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब भी धूप निकले तो कपड़ों को धूप में अवश्य सुखाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी युक्त फल आदि खाते रहें। अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च आदि डालकर चाय पिएं, इससे हमें सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या नहीं होगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कोई भी समस्या होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और बारिश का मौसम एंजॉय करें।

0: सखियों, हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। हमारा आज का सवाल है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? आप अपना सही जवाब हमें कमेंट्स कीजिए, हमें इंतजार है। अब आपको सुनवाते हैं वार्ता, समाज के विकास में विज्ञान की भूमिका। वार्ताकार हैं श्रीमती सीमा।
1: बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं समाज के विकास में विज्ञान की भूमिका के विषय में। विज्ञान ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक युग निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम रामायण व महाभारत के युग की बात करें तो पुष्पक विमान की परिकल्पना या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तथा हनुमान चालीसा की ये चौपाई युग सहज जोजन पर भानु में तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आखिर ये भी तो विज्ञान का ही परिमाण है। और यदि हम आज के युग की बात करें तो जागने से लेकर सोने तक हम विज्ञान की उपस्थिति का ही अनुभव करते हैं। बिजली, पंखे, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, मोबाइल फोन, मिक्सी, इसके अतिरिक्त आधुनिक खेती, संचार, चिकित्सा विज्ञान और लगभग हर क्षेत्र में मनुष्य ने विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा व उपयोग किया है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो मनुष्य एक आदि मानव की तरह रहता था। वो नहीं जानता था कि आग कैसे जलाएं, खाना कैसे बनाएं, कपड़े कैसे पहनें, घर झोपड़ी कैसे बनाएं, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है। इसकी समझ हमें कहाँ से आई? बहनों, विज्ञान के उपयोग से ही उन्होंने एक महान सभ्यता को विकसित किया है, जिससे एक सभ्य समाज का विकास। विज्ञान ने एक सुई से लेकर रॉकेट बनाने तक से हमारी जिंदगी को बेहतर ही बेहतर बनाया है। विज्ञान ने मानव जीवन में क्रांति ला दी है। अब तो बटन दबाते ही काम हो जाता है, दबाओ बटन काम हो जाए पूरा। वह विज्ञान है जिसने समय बचाया, विद्युत बनाकर किया स्वप्न पूरा, निशा को भी इसने दिवा है बनाया, विकसित किए उद्योग धंधे वह विज्ञान है जिसने पोषण कराया। देवों की हस्ती कहाँ सो गई, अब दुनिया में छाई अब इसकी ही माया है। बहनों, विज्ञान के चमत्कार हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं। बिजली, पंखे, एसी, कूलर, गीजर, हीटर, मिक्सर आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाना तथा बिजली से चलने वाली गाड़ियां व मोबाइल फोन, इन सभी के उपयोग से हम विज्ञान का अनुभव दैनिक जीवन में करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें अद्भुत दवाएं व लाइलाज बीमारियों के टीके जैसे डायरिया, टीवी, कैंसर, निमोनिया, खसरा, चेचक आदि तथा मानव के किसी भी अंग की कान, गला, गुर्दा, पेट, पैर, इस सब की सर्जरी व प्रत्यारोपण अब आसानी से विज्ञान के द्वारा संभव हो सका है। अब किसी बीमारी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ईसीजी, एमआरआई, एक्सरे आदि भी विज्ञान का ही तो चमत्कार है। यदि हम बात करें सफर की तो बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि ने हमारी मीलों लंबी यात्रा को मिनटों व घंटों तक सीमित कर दिया है। सफर के मामले में बहनों, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम भारतीयों को एक अद्भुत ट्रेन, बुलेट ट्रेन का तोहफा भी तो दिया है, जिसने हजारों किलोमीटर की यात्रा अब मिनटों में कर दी है। कोई उत्सव हो या अपनों से मिलने का बहाना, हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारे अपनों के पास, चाहे वो हमसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम उड़कर उनके पास पहुंच सकते हैं। और तो और, हम तो अब चांद तक भी पहुंच चुके हैं। आसान हुआ हर एक काम अपना, वह विज्ञान है जिसने सब कुछ रचाया। मानव के मस्तिष्क की है ये उपज, छोड़ पैदल हमें उड़ना है सिखाया।

बहनों, संचार के क्षेत्र में हम अब पीछे नहीं हैं। अब चिट्ठी और टेलीग्राम के युग से आगे बढ़कर विज्ञान ने हमें मोबाइल फोन, इंटरनेट, स्मार्टफोन दिया है, जिससे हम देश के किसी भी हिस्से में रह रहे अपने रिश्तेदारों से किसी भी समय बातचीत कर सकते हैं, उनका हालचाल पता कर सकते हैं। विज्ञान ने लोगों के बीच की दूरियों को भी तो कम कर दिया है, क्यों मानती है ना आप भी इस बात को? यदि मनोरंजन की बात करें तो इसका सबसे पहला साधन बहनों यही हमारा रेडियो ही तो है, जिस पर आप सब आकाशवाणी के इतने सुंदर कार्यक्रम, घर अंगना, सखी सहेली, नए पुराने गीत, खबरें, कहानियाँ आदि सब सुनती हैं, जिससे आपका मनोरंजन होता है। क्यों है ना मजेदार हमारा विज्ञान? इसके अतिरिक्त मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट का प्रयोग भी मनोरंजन के साधनों के लिए हम सब करते ही हैं। अब शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में भी विज्ञान के द्वारा मुद्रण, टाइपिंग, बाइंडिंग कितनी आसान हो गई है। बच्चों को अब स्कूल, कॉलेज में बोर्ड के अतिरिक्त प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। रंगीन चित्र व वीडियो के माध्यम से बच्चे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीखते हैं। भारी वाहन, मशीनरी, आधुनिक उपकरण ने उद्योगों में भी क्रांति ला दी है और अब हम रोजगार घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। घर बैठे ऑनलाइन सामान बेचकर हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और हमें कुछ खरीदना हो तो भी हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। ऑनलाइन खरीदारी कर हम अपनी पसंद का सामान घर बैठे ही खरीद सकते हैं। विज्ञान ने सब कुछ कितना आसान बना दिया है ना बहनों? अब यदि हम कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान किसानों का वास्तविक मित्र साबित हुआ है। कई नवाचार व खोजें तथा नए उपकरण, मशीनों ने उच्च गुणवत्ता वाली फसल उगाने व कटाई में भी किसानों की मदद की है। जैविक खेती आधुनिक खेती का कितना सुंदर उदाहरण है। अच्छी किस्म की खाद जैसे यूरिया, उसमें नीम की परत चढ़ाकर विज्ञान ने उसकी गुणवत्ता तो बढ़ाई है, साथ में इसकी कालाबाजारी भी रोकी है। अब विज्ञान के नए नए आविष्कार से अच्छी गुणवत्ता के बीज, नई मशीनें आदि ने खेती का भविष्य बहुत ही उज्जवल कर दिया है। बहनों, आपको पता है समाज में विज्ञान के महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में बनाया जाता है। विज्ञान एक ऐसा वरदान है जिसने मानव जीवन को पूरी तरह बदलकर रख दिया है, असंभव से असंभव काम को संभव बना दिया है। समस्याओं के समाधान का हर हल तुम पा जाओगे यदि विज्ञान की विशाल ताकत को तुम समझ जाओगे। परंतु कहते हैं ना बहनों कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इन आविष्कारों के लाभ तथा हानि दोनों ही हैं। जैसे एक तरफ परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने के काम आती है, वहीं दूसरी तरफ परमाणु हथियारों का प्रयोग के लिए विनाशकारी है। अथवा मानव को अपनी आवश्यकता अनुसार व सुविधा अनुसार सीमित मात्रा में ही इनका लाभ उठाना चाहिए, न कि इनका दुरुपयोग कर इनके आविष्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहिए।

0: सखियो शुरू करते हैं अपना सेगमेंट इनसे मिलिए। आइए मिलते हैं श्रीमती मीनाक्षी जी से जो एक आशा वर्कर हैं।
1: जी देवी,
2: मीनाक्षी जी आप अपने बारे में हमारी बहनों को बताइए, क्या करती हैं?
1: आशा वर्कर हूँ मैं।
2: तमाम श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी, टीकाकरण कितना जरूरी
1: है? भविष्य में उन्हें कोई ऐसी दिक्कत ना हो, आगे जाके कोई परेशानी ना हो, टीकाकरण इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को समय से टीके लगवाएं।
2: पास पड़ोस के स्वास्थ्य केंद्र पर जब भी टीकाकरण हो तो हमारी बहनें अपना और अपने बच्चों का टीकाकरण समय से करवाएं।
1: समय से कराएं, गर्भवती महिलाएं भी अपना समय से टीकाकरण करवाएं
2: जी।
1: आगे जाके बच्चे के लिए है कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, बच्चा विकलांग पैदा ना हो या किसी चीज से भी कोई विकलांग ना हो।
2: पहले हमारी जो बहनें थीं आशा बहन जी, वो घर जाके पिलाती थी।
1: जी जी जी।
2: तो अब घर जाके नहीं पिलाती हैं, तो वो क्या जो प्रॉब्लम थी हमारे देश में वो खत्म हो चुकी है क्या, पोलियो वाली?
1: जी, जो पहले कितने पोलियो और अब तो पोलियो मुक्त ही हो चुका है, लेकिन जो मान लो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके टीका लग रहा है तो टीके के साथ पोलियो की ड्रॉप जरूर दी जाती है।
2: अच्छा अच्छा। मीनाक्षी जी आपका क्या वर्क रहता है?
1: जी, आशा वर्क का तो यही है कि जिससे टीकाकरण होता है, टीकाकरण पे जाना, बच्चों को कोई भी बच्चा छूटे ना, उसको टीके लगवाना समय से।
2: अच्छा।
1: और जो गर्भवती महिलाएं हैं डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहती हैं तो उनको हम लेके जाना, उनकी डिलीवरी वहां कराना।
2: तो आप उनके साथ में जाती हैं?
1: जी, साथ में जाती हूँ उनके।
2: अच्छा अच्छा।
1: उनकी जांच वगैरह करवाना समय से।
2: अच्छा काम है आपका जो आप इतना सपोर्ट करती हैं हमारी बहनों को, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो इतनी जागरूक नहीं होती हैं, अकेले जाना उन्हें थोड़ा कठिन हो जाता है, तो आप साथ में जाती होंगी तो उनका काम भी थोड़ा आसान हो जाता होगा। मतलब किस तरह से आप लेके जाती हैं, एम्बुलेंस से लेके जाती हैं, क्या सुविधाएं हैं?
1: दिक्कत हो रही है तो एम्बुलेंस भी बुला लेते हैं जल्दी में जैसे, और अगर जांचें कराने जा रहे हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि एम्बुलेंस में नहीं जाना चाहती हैं, तो हम उनको रिक्शे से भी ले जाते हैं क्योंकि हमारे वहाँ से डिस्ट्रिक्ट ज्यादा दूर नहीं है।
2: अच्छा, तो एम्बुलेंस का क्या नंबर है जो हम जो बहने हैं जो जाती हैं इमरजेंसी में, तो किस नंबर पे?
1: 102।
2: 102। अच्छा, तो आप उनके साथ जाती हैं, बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत हेल्प करवाती हैं। हमारी जो बहनें हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी टीकाकरण के बारे में?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मान लो अगर कोई गर्भवती है उसको भी समय से ही टीके लगवाने चाहिए। अच्छा। और जो बच्चे हैं, तो कुछ माएं ऐसी होती हैं कि बच्चों को दर्द होता है टीका लगवाने से, बच्चे परेशान करते हैं तो वो नहीं लगवाती हैं टीके।
2: फीवर आ जाता है, इससे भी थोड़ा
1: फीवर आ जाता है, लेकिन फीवर आता है उसको बच्चे को जहाँ टीका लगा है तो जो थाई में टीका लगता है वो दर्द भी करता है, मानते हैं हम, लेकिन उसको सिकाई करनी चाहिए ठंडे पानी से, बर्फ से या ठंडे पानी मौसम के अनुसार। मान लो ठंडा मौसम है तो ठंडे पानी से भी कर अच्छा, सकते हैं, अच्छा। ज्यादा गर्म है तो बर्फ की लेके डेली उसको भी कर सकते हैं।
2: हमारी बहनें बच्चों के बुखार से ना डरें, बुखार आना तो वैसे ठीक माना जाता है,
1: लेकिन नहीं समझ पाती है कुछ, ये सोचती है बच्चा परेशान कर रहा है, उसको बुखार आ रहा है, दवाई भी देते हैं साथ में
2: बुखार की।
1: जी
2: अच्छा, वो मतलब एक दो दिन की परेशानी के लिए वो

0: भविष्य की परेशानी पैदा ना हो, इसलिए हमारी बहनें जागरूक हों और समय से अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं। तो मीनाक्षी जी, आप एक हाउसवाइफ भी हैं, साथ ही साथ अपना ये वर्क भी करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं घर के काम और बाहर के काम में, किस तरह से तालमेल बिठाती हैं?
1: जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी होती है, अगर मान लो उसे पता हमें ये काम करना है, हम ये जॉब कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से अपना काम करते हैं, काम होता है
0: जी जी,
1: और बाहर का भी है, रोजाना का ही है हमारा काम, तो ऐसा नहीं कि हम कभी गए कभी नहीं गए।
0: अच्छा।
1: लेकिन उस हिसाब से काम अपना मेंटेन कर लेते। टीकाकरण होता है तो हम लोग 9:30 बजे निकल जाते हैं, 10 बजे तक पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और वैसे मान लो किसी मरीज को लेके जा रहे हैं तो वो भी वही टाइम है, 10:30 बजे तक पहुंच जाए हॉस्पिटल में।
0: अच्छा, फिर उधर से क्या टाइमिंग रहती है आपकी, जो आप घर आती होंगी, घर के काम भी देखती
1: होंगी? घर आते घर तो कभी कभी 3 बज जाते हैं, कभी कभी 1-2 बजे भी आ जाते हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ तो आने का कोई टाइम नहीं क्योंकि अस्पतालों में भीड़ होती है। वही है,
0: और कब कितना समय लगे ये भी कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत मेहनती हैं आप, जो आप घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर का भी काम देख रही हैं, और हमारी जो ग्रामीण बहनें हैं उन्हें इतना जागरूक कर रही हैं, उन्हें समझा रही हैं, ये बहुत अच्छा है। मीनाक्षी जी, आप इतनी व्यस्त रहती हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारी सखियों सहेलियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों, आज के समय में व्यक्ति की जीवन शैली बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई है। हर इंसान बड़ा ही बिजी और स्ट्रेस में जी रहा है। लाइफ में भाग दौड़ है, इंसान खुश रहना भूलता ही जा रहा है। सखियों, अगर हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें तो हम काफ़ी हद तक तनाव से बच सकते हैं। जैसे कि आप जब भी घबराहट या तनाव महसूस करें तो आप कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठें और गहरी सांस लें। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम, ध्यान आदि को शामिल कीजिए और सोने से कुछ घंटे पहले फ़ोन या टीवी बंद कर दें ताकि दिमाग को आराम मिले। पर्याप्त नींद लें। जब भी आप फ्री हों तो अपनी रुचि को समय दें। अपने आपको जो पसंद है वो आप कार्य कर सकते हैं। अपनी किचन में जब भी काम करें तो आप अपनी पसंद का संगीत सुन सकते हैं, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका काम कब खत्म हो गया। और आप अपने घर

में गार्डनिंग भी कर सकते हैं, अपनी पसंद के फूल पौधे लगा सकते हैं, जिससे हमारा घर तो सुंदर लगेगा ही, साथ ही साथ हमारा मन भी खुश रहेगा। और हमारे घर में जब फूल पत्तियां, ये फूल पौधे होते हैं, तो ये देखकर हमारा मन भी काफ़ी खुश रहता है। इससे हम तनाव से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं।

सखियो, हमने आज आपसे पूछा था सवाल, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? इसका सही जवाब है, पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए देश का पहला आधुनिक स्कूल खोला था। उन्हें भारतीय नारीवाद की अग्रदूत और समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। सही जवाब दिया है हमारे इन श्रोताओं ने, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, विष्णु टेलर, रितिका बाणी और आरव मिस्किन सोलापुर महाराष्ट्र से, और हीरामणि वर्मा, लाल मोहम्मद अंसारी और प्रवीण चौहान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम का समय यहीं तक। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए अनुमति। सखियों नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नरसंसा प्रियंका श्रीवास्तव के साथ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से और शाम को 6 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी नेहा सिंह के साथ।
2: हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम है आप सभी का प्रोग्राम युवाणी में आपकी रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह के साथ। तो कैसे हैं आप सब? वेल, मौसम तो काफ़ी बदल रहा है, एकदम से बादल आ जाते हैं।

फिर वर्षा होते ही ठंडा मौसम और भी सुहावना हो जाता है, जो हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। बट प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू होती है, जब थोड़ी ही देर में धूप, उमस और ये चिपचिप वाली गर्मी ना हम सबको परेशान कर देती है। ऐसे में हमारा ना कुछ काम करने का मन करता है, और स्पेशली खाना बनाना किचन में तो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। एंड यही बदलता मौसम भी हमें बीमार बनाता है बहुत जल्दी। फीवर होना, कोल्ड, कफ, ये सब चीज़ें हमें बहुत इजीली हो जाती हैं इस वेदर में। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हमारे ही हाथ में है। और बस इस मौसम में सबसे ज़रूरी है ना, जब भी हम अगर कभी बारिश में भीग जाते हैं, पहली चीज़ तो हम बारिश में भीगना बिल्कुल अवॉइड करें। स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं जो बारिश में नहाने की ज़िद करते रहते हैं, तो उनको मना करें और बारिश में भीगने से बिल्कुल बचें। और अगर आप गलती से भीग भी जाते हैं, तो घर पर आकर सादे पानी से ज़रूर नहाएं, जिससे कि आप किसी भी तरह के जर्म्स एंड इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। इसके साथ ही बिल्कुल चिल्ड पानी फ्रिज का बिल्कुल ना पिएं, ये हमारे गले को ख़राब करता है और साथ ही हमारी आंतों के लिए भी अच्छा नहीं होता, और यही खांसी जुकाम का भी मेन कारण बनता है। इस वेदर में इन्फेक्शंस के चांसेस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए स्ट्रीट फूड हुआ या कोई भी फास्ट फूड, सड़क के किनारे का कटा फल, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, इनको अवॉइड करें, क्योंकि बाहर के अनहाइजीनिक फूड से स्टमक इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ें हमें बीमार बनाती हैं। और साथ ही पॉल्यूटेड वाटर, इससे टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा फिल्टर वाटर पिएं, और अगर फिल्टर अवेलेबल नहीं है घर पर, तो पानी को उबाल कर ही पिएं। और इसके साथ साथ अपने खाने का बेहद ध्यान रखें, विटामिन सी एंड प्रोटीन से रिच डाइट लें, जिससे जो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी और हम जल्दी बीमार भी नहीं होंगे। और इन सब के साथ साथ फिज़िकल मूवमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। हम खाने पीने का तो ध्यान रख लेते हैं, बट अपनी फिज़िकल एक्टिविटी उसका नहीं रखते। आजकल हम सबका जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज़्यादा सिटिंग वाला हो गया है, कि जो हमारा चलना फिरना है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। इसलिए ओबेसिटी होना या पेट में दर्द, गैस की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें लोगों में ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसलिए डेली खाने के बाद टहलना या थोड़ी एक्सरसाइज करना या योगा करना, ये सब चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में अपनाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बढ़ेगी और आप हेल्दी भी रहेंगे और साथ ही फिट भी। वेल फ्रेंड्स, प्रोग्राम में बातें और भी होंगी, बट धूम धड़ाका म्यूजिकल सेगमेंट में इस गाने

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, मौसम है, वो कितना ज़्यादा पहले से बदल गया है। गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ने लगी है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जो ठंड का मौसम है वो भी कम होता जा रहा है। ये सब हो रहा है हमारे पूरे ही जो अर्थ है उसके जो पर्यावरण में बदलाव आने के कारण, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि डे बाय डे पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, ओजोन एमिशन हो रहा है और साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो फैक्ट्री से गंदा धुआं निकलता है वो सीधे आसमान में जाता है और जो उसके हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हमारी रिवर्स को पल्यूट करते हैं, जिसके कारण जो पीने का साफ पानी है वो भी कम हो रहा है और जो हमारी सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका भी हम सब लोग कितना ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं और ये सब चीज़ें हमारे लिए ही ख़तरनाक हैं और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी। इसलिए इन सब चीज़ों का लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी फ्यूचर देना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो वृक्षारोपण करें। वृक्ष हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाने से लेकर मेडिसिनल यूज़ तक इनसे हमें ना जाने कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ ही गर्मियों में हमें छाया देते हैं और हवाओं में और बारिश के मौसम में जो हवाएं चलती हैं

ये उसमें मौसम को और भी ज़्यादा सुहावना बना देते हैं। वृक्षों के लाभ अगर गिने जाएं तो जितना भी हम उनको काउंट करें ना, वो कम ही होंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो वृक्षारोपण करें, और वृक्षारोपण करें खुद तो, बट जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हैं, हमारे चिल्ड्रन हैं, उनको भी इसके फ़ायदों के बारे में बताएं, उनमें भी ये हैबिट्स डालें। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अगर हम अभी से

जो जल संरक्षण है। पृथ्वी पर सभी के जीवन के अस्तित्व के लिए पानी आवश्यक है। हम खाने के बिना तो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम सब आज के समय में वाटर कंजर्वेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वैसे तो 70% पार्ट ऑफ अर्थ पानी से घिरा हुआ है, जिस कारण पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में है जो कि खारा है एंड पीने योग्य केवल 1% वाटर है। ऑन एन एवरेज पर डे एक इंसान को अप्रॉक्स 250 से 400 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है अपने दिन भर के काम से लेकर खाने पीने तक। एंड हम में से मोस्टली लोग इसी पानी को यूं ही बहा देते हैं, वेस्ट करते हैं। हमें तो जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत है ही, साथ ही जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए भी ये असेंशियल है। अब से काफ़ी सदी पहले मनुष्य को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जल पर्याप्त था, बट जैसे जैसे आबादी बढ़ी पानी की मांग भी बढ़ गई, जिससे आज 25% लोगों के पास फ्रेश वाटर पहुंचा ही नहीं। जहाँ काफ़ी लोगों को पानी इजीली मिल जाता है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी लेने कुएं तक जाना पड़ता है या गवर्नमेंट वाटर टैंक के आने पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वर्षा होने का इंतज़ार करना पड़ता है समर्स में। पानी की कमी के कारण काफ़ी हैं, जैसे कि पहला, हमारे घरों और उद्योगों में पानी का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। दूसरा, फैक्ट्रीज से निकला वेस्ट डायरेक्ट नदियों में जाता है जो फ्रेश वाटर को पल्यूट करता है और कृषि पर भी प्रभाव डालता है। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ध्यान से करें और जल संरक्षण के तरीकों अपनाएं, जैसे कि बर्तन धोते टाइम, ब्रश शेविंग करते टाइम वाटर टैप तभी खोलें जब ज़रूरी हो, ना कि पूरा टाइम चलने दें। नल से पानी टपक रहा हो तो उसे ज़रूर ठीक करवाएं। नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी यूज़ करें। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर का यूज़ कम से कम और तभी करें जब उसमें पूरा लोड हो। बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसे आप बाद में पेड़ पौधों, कार वॉश, साफ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। कपड़े धोने के बाद बचा हुआ पानी घर में सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर फिल्टर से पानी जो निकलता है उसको कलेक्ट कर आप अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन के तरीके तो अनेक हैं, बस उन्हें अपनाना ज़रूरी है और लोगों में जागरूकता लाना भी। एंड ये सब चीज़ें आप अपने घर के मेंबर्स, स्पेशली बच्चों को ज़रूर समझाएं। आजकल बच्चे खेलने के लिए वाटर टब, मिनी पूल्स घर में ले आते हैं, जिसमें ना जाने कितना पानी डालकर वो बस कुछ देर खेलने के लिए उसको वेस्ट कर देते हैं। एंड ये वो डेली बेसिस पर करते हैं। दूसरों को समझाने से पहले अपने घर में शुरुआत करें, खुद तो वाटर सेव करें, साथ ही अपने बच्चों को भी इसके फायदे के बारे में सिखाएं। जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और इसका भंडार भी सीमित है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। सो सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स।

जल है तो कल है, ये लाइन हमने न जाने कितनी बार पढ़ी और सुनी है, बट क्या इस लाइन की इम्पोर्टेंस को हमने कभी समझा और अपनाया? शायद नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आज हम जानेंगे आज के समय में सबसे ज़रूरी विषय के बारे में।

श्रोताओं, आज का हमारा सवाल था कि सोयूज 11 अंतरिक्ष यान का संबंध किस देश से है। तो इस ये जो सोयूज 11 अंतरिक्ष यान है, इसका संबंध सोवियत यूनियन यानी कि रूस से है। ये सोवियत यूनियन अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक ऐतिहासिक मानव युक्त मिशन था, जिसे जून 1971 में लॉन्च किया गया था। और इस अंतरिक्ष यान ने दुनिया के पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग भी की थी। और हमारे आज का जो सवाल है, उसका आंसर हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू सोशल मीडिया पेज पर बिल्कुल ही सही दिया है, जो कि है राम कुमार रेवार, दिनेश वर्मा, विजय सुरालकर, निसार सलमानी, सोमदत्त नाभा, MD यसीन अंजन, नंद कुमार व अन्य कई सारे लिसनर्स ने। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कमेंट्स करते रहें और हमसे जुड़े रहें। और कार्यक्रम के अंत में धूम धड़ाका म्यूजिकल सेगमेंट में सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, युववाणी का जो समय है वो बस यहीं तक सीमित है। अपनी रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह को दें अनुमति, कल फिर से मैं हाजिर रहूंगी आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी नेहा सिंह के साथ, और अब स्टूडियो में आ चुके हैं भाई कृष्णवीर सिंह। तो सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।
1: कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सब साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सबको आपके अपने भैया कृष्णवीर सिंह की राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज को कार्यक्रम लेकर ग्राम जगत हम आपके बीच उपस्थित हैं और बहुत सी बातचीत भी आपसे करनी है। आपको एक अच्छे से लोक भजन भी सुनवाने हैं और साथ ही साथ जानकारी भी पहुँचाने हैं। तो थोड़ी सी बातचीत पहले जा करेंगे कि बच्चों के टीकाकरण के संबंध में। तो बहुत आवश्यक है क्योंकि जन्म के उपरांत ही शुरुआत हो जाती है कि बालक को कौन कौन से टीका लगने हैं। तो बहुत से ऐसे टीका हैं जो लगने हैं, और लगना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर समय पर टीका लग जाएंगे तो निश्चित जमानो कि जो बालक है वो स्वस्थ रहेगा। और टीका लगन को मुख्य उद्देश्य यही है कि

0: बालक के शरीर में उन बीमारियों के होने को रोकूँ जिनसे वाकई दिक्कत हो सकेगी। तो कुछ की अगर हम बात करें तो जन्म के समय BCG और दूसरा टीका है ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV और हेपेटाइटिस बी को टीका भी लगत है। और इनके बाद 6 सप्ताह पे अगर हम बात करें तो OPV की पहली खुराक और PCV की पहली खुराक और रोटा वायरस, ऐसे ही करके जो टीका हैं वो 1 महीने के अंतर पे लगा चले जाते हैं। तो बहुत आवश्यक यह है कि समय रहते और जब टीकाकरण को कैंप लग रहा है जहाँ भी लगने हैं बालक की टीका वहाँ जाके बाकी टीका लगवाने हैं, अपनी जिम्मेदारी समझने हैं। क्योंकि जब सरकार बहुत प्रयासरत है हर बालक को टीका लगे जो सुनिश्चित कर देगी और वहाँ में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और जो आशा बहुएँ हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है थेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन से बालक को जन्म कौन से परिवार में हुआ है। अच्छा, अब तो हर बालक को जन्म के समय ही या फिर जन्म से पहले ही वाके कार्ड बन जाएंगे टीकाकरण कार्ड, तो वहाँ में सब दर्ज रहते हैं कि कौन टीका कब लगने हैं। तो बिल्कुल आप सही समय पहुँच के बालक की टीका लगवाएं ताकि वो ऐसी बीमारियां हैं जो बाकी लाइक घातक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं, इनमें काली खांसी है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हो जाती हैं वो जब ही ना होंगी जब बाकी टीका पहले से लगे हुए होंगे। तो आप जब बात को जरूर ध्यान रखोगे ऐसी हम आशा करते हैं। और अब आप तक पहुँचा रहे हैं एक भेंटवार्ता। भेंटवार्ता को विषय है सतावर की खेती और उससे होने वाली आमदनी, और जानकारी दे रहे हैं श्री भगत सिंह जी और इनसे बातचीत करी है डॉक्टर रविंद्र कुमार ने।
1: किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं भगत सिंह जी जो कि ग्राम पस्तौर फतेहगंज पश्चिमी वरेली से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हमारी बातचीत का विषय है सतावर की खेती कर आमदनी बढ़ाएं। तो भगत सिंह जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद और भगत किसान भाइयों को मेरा राम राम।
1: भगत सिंह जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सतावर की जो खेती है वो आप कब से कर रहे हैं?
2: जी सतावर की खेती हम लगभग 10 साल से कर रहे हैं।
1: अच्छा, इस समय आपकी आयु क्या होगी?
2: इस समय आयु हमारी 45 वर्ष।
1: और आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
2: जी पढ़ाई लिखाई हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
1: अच्छा जी, तो कैसे आपके मन में आया कि आप सतावर की खेती करें?
2: एक्चुअली क्या हुआ, शुरू में हमने सर्विस नौकरी की
1: जी,
2: लेकिन नौकरी में भागदौड़ ज्यादा थी तो हम अपनी खेती पे आ गए। हमने अपना खेती का काम चालू कर दिया। तो हमारे घर पे खेती होती थी वही धान गन्ना गेहूँ, उसमें आमदनी तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती है जैसे अब समय के अनुसार होनी चाहिए। तब हमने अलग करने का कुछ विचार किया। तो हमारे परिचित थे एक CA साहब, वो खेती करते थे सतावर की
1: जी,
2: और स्ट्रॉबेरी भी करते थे वो, लेकिन हमने सतावर करना चालू किया
1: जी।
2: उन्होंने हमें बताया कि कैसा क्या करना, फिर हमने सतावर खेती की। ये हमें बहुत ही अच्छी लगी, बेस्ट
1: खेती
2: किसानों के लिए
1: जी। मतलब आपने नौकरी भी की और नौकरी में ये पाया कि भागदौड़ बहुत है और जब मेरे पास अपनी कृषि भूमि है तो मैं अपनी खेती में ही क्यों ना कुछ करूं जिससे मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊं, 4 लोगों को रोजगार भी।
2: जी जी, 4 लोगों को रोजगार मिलता है, फिर दूसरे किसान भाई हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं हमारे गाँव के आस पास के वो देखते भी है
1: जी जी
2: कैसे करके कैसे डेवलपमेंट हो रहा है।
1: बिल्कुल। अब अगर बात करें औषधीय फसल के रूप में सतावर की खेती की जाती है, तो जैसे कोई किसान साथी सतावर की खेती करना चाहे तो कहाँ से और कैसे शुरुआत कर सकता है?
2: देखिए सतावर की खेती औषधीय होती है और इसके साथ में हम दूसरी फसल भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी फसल है
1: जी।
2: और इसको हम जो अभी समय चल रहा है ये बहुत अच्छा है लगाने को, इसी समय हम अधिकतर लगाते हैं, 90% किसान हम इसी समय सतावर लगाते हैं
1: जी जी।
2: अब हमारा खेत तैयार है, बारिश हो चुकी है, जैसी बतर आएगी जिसे हम लोग बतर बोलते हैं, कुछ यूट बोलते हैं, खेत जोत के और गन्ने के उससे कुड़ी रेजिस करवा के और उसपे सतावर हम रख देते हैं
1: जी जी।
2: इस समय इसका बहुत अच्छा मौसम है लगाने का और इसी समय लगाते हैं। लेकिन इस समय अगर कोई नया किसान लगाना चाहता है जो आप हमारी वार्ता सुन के, तो उसको पौध खरीदनी पड़ेगी क्योंकि अब पौध तैयार नहीं हो पाएगी। वो करना चाहेगा पौध जो है अप्रैल में पड़ती है वो अब तैयार है
1: जी। हाँ। जी, तो इसकी पौध तैयार करने के लिए बीज की क्या व्यवस्था रहती है, कहाँ से आप मंगाते हैं
2: बीज? हम किसान भाइयों के पास होता है और हमारे व्यापारी भाई हैं, जैसे कई गांव में अग्रास है, अग्रास हमारे पास में है, वहाँ बहुत सारी होती है, बहुत समय से होती है, वहाँ व्यापारी भाई हैं जो खरीदते हैं, अच्छे रेट देते हैं। ये भी नहीं है कि रेट ना दें सही, वहाँ बीज सब मिल जाता है, फिर वो एक दूसरे किसान जुड़ जाते हैं, सबको बीज अवेलेबल हो जाता है, यानी खूब मिलता है बीज की कोई कठिनाई नहीं आती।
1: बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया

0: कि अगर कोई नया किसान खेती करना चाहता है तो पौध उसको खरीदनी पड़ेगी, तो क्या कुछ लोग इस तरह से व्यावसायिक रूप से भी पौध तैयार करते हैं बेचने के
1: जी
0: लिए?
1: जी बहुत सही आप पूछ रहे हैं। ये व्यवसाय करते हैं, हम लोग करते हैं ये व्यवसाय,
0: जी
1: पौध एक्स्ट्रा डालते हैं।
0: हाँ
1: हाँ, बेचने के उद्देश्य ही डालते हैं।
0: जी
1: जैसे हर कोई नर्सरी नहीं कर सकता है, उसमें अलग अलग बहुत तरह की दवाइयाँ लगती हैं, सब कुछ लगता है। नया नया किसान नर्सरी तैयार नहीं कर पाता है, उसको दिक्कतें आती हैं, तो वो हम लोगों से खरीद सकते हैं और मुनासिब रेट मिलती है, बहुत सारे लोग डालते हैं।
0: अब बात करें खेत की तैयारी की, तो इसके लिए क्या विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है खेत की?
1: हाँ, खेत के लिए ये औषधीय फसल है, इसमें हम उर्वरक कम से कम डालें, खेत हम इस समय तक तैयार कर लें देसी खाद डाल के। बरसात बारिश चालू होने से पहले हम देसी खाद डाल के खेत तैयार कर लें, बारिश होने के बाद उसमें फिर जुताई एक और करके और हम लगा देंगे।
0: हाँ, तो
1: देसी खाद का हम विशेष ध्यान रखें,
0: देसी खाद का विशेष ध्यान
1: रखें, देसी खाद,
0: क्योंकि औषधीय फसल है, कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरक उसको खराब ना कर दें
1: जी,
0: या
1: जी,
0: उसकी गुणवत्ता को
1: जी, जी, जी,
0: इफेक्ट ना करें, इसलिए देसी खाद ही डालनी चाहिए
1: जी।
0: अब बात करें कि जैसे ये फसल कितने समय में तैयार हो जाती है और क्या क्या देखभाल करनी पड़ती है?
1: अगर हम सही करके किसान भाई ध्यान दें तो ये फसल हम 18 महीने में तैयार कर लेंगे
0: जी।
1: 18 महीने का मतलब है 1.5 साल। हम 1.5 साल, जैसे हमने अभी रखी जुलाई में, तो 1.5 साल बाद वो आ जाएगा लगभग फरवरी का महीना, और ये फरवरी लास्ट फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक खुदाई इसकी होती है, बनती है तैयार की
0: जी।
1: हाँ, जब धूप चालू होती है तब बनता है, लेकिन ये बनता है उसी 2 महीने में 2-3 महीने में। हाँ, इसके बाद नहीं बनेगा ये, जब खेत में से निकाल के, तो हम अगर सही करके मेहनत कर लें, उसकी नराई गुड़ाई सही करें, हाँ उसकी देखभाल सही अच्छे से करें, तो हम 1.5 साल में इसको निकाल लेंगे खेत में से।
0: बिल्कुल, सहफसली खेती भी इसके साथ हम कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सहायक फसलें हैं जो आप सतावर की खेती के साथ कर सकते हैं?
1: हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी। इसके साथ हम शिमला मिर्च, अपनी पतली वाली मिर्च जो मिर्च करके खाते हैं, ये मिर्च कर सकते हैं। अचार वाली मिर्च करते हैं, जैसे हम लोग किसान भाई अचारू मिर्च बोलते हैं, ये खूब कर सकते हैं, हम करते ही है अधिकतर किसान ये करते हैं। फिर इसके साथ हम प्याज कर सकते हैं, लहसुन भी लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसके साथ कर सकते हैं
0: जी, जी।
1: और हम अधिकतर किसान ये करते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा लागत आ जाती है उससे बेच के।
0: देखिए भगत सिंह जी, वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर हम वैज्ञानिक तरीकों से खेती करेंगे तभी अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे, और जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं जिस तरह से गेहूं के बाद धान, धान के बाद गेहूं, गन्ना, और अगर कुछ लोग हट के खेती करें तो निश्चित ही उनकी तरक्की होगी। इसी क्रम में कि अगर कोई व्यक्ति सतावर की खेती करता है तो मुझे लगता है कि सहफसली खेती करके वो पूरी फसल की लागत भी निकाल सकता है
1: जी। जो मैंने अभी फसलें बताई थी ये पूरी लागत निकालती है, सतावर हमारा पूरा बच जाता है, लागत वो निकाल देती है सहफसली, और इससे हमारा मुनाफा बढ़ता है
0: जी।
1: और लोग देखते हैं, किसान
0: हाँ।
1: जो सतावर कर रहे हैं उनको देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ क्या किया, कुछ लोग उसको देख के कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम ढर्रे वाली खेती करेंगे तो उससे मुनाफा नहीं होगा। देखिए आप गेहूं का क्या रेट है,
0: बिल्कुल
1: धान का क्या रेट है, लागत कितनी आती है, सब कुछ आती है, और इसका रेट हमारा आयुर्वेदिक की दवा में जाता है, इस समय इसका रेट 800 रुपए किलो है, यानी आप मान सकते हैं 80,000 रुपए क्विंटल, और इससे ऊपरी हो रहा है।
0: बिल्कुल, क्योंकि औषधीय फसल है और औषधियों की आवश्यकता तो निकट भविष्य में ज्यादा ही लोगों को है, और आने वाला समय, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का इतना प्रयोग हो रहा है, लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी तरह औषधियों की आवश्यकता है, तो ऐसा भी है कि इनके रेट कम होने की तो कोई गुंजाइश ज्यादा नहीं है। तो अब आपने खेती की प्रेरित होकर, तो ऐसे ही अब आपके क्षेत्र में और भी लोग खेती कर रहे हैं सतावर की?
1: जी, हमारे गांव में, मैंने अपने गांव में ही देखा है, कई किसान ये करने लगे, चालू कर दिया उन्हें सतावरी खेती करके
0: जी।
1: और जो आपने कहा है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, देखिए आयुर्वेद की दवाई में ये बहुत इस्तेमाल होती है
0: जी।
1: हाँ, बहुत इस्तेमाल होती है और अच्छी फसल है। और इसको एक बात इसमें और बताऊं, जो हमारे इस समय पशु हैं जंगल में घूम रहे हैं, जिनसे विशेष करके बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनसे इसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसके पौधे में जो है झाड़ी नुमा है कांटे होते हैं, कोई भी पशु नहीं जाता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, तो उससे हमारा नुकसान बच जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जो आवारा पशुओं की समस्या है किसान साथियों को वो भी खत्म हो जाती है, और दूसरी बात ये है कि जो नुकसान वो करते हैं तो वो खेत में जाने से बचते हैं, क्योंकि जब कांटे उनको लगेंगे तो वो नहीं जाएंगे निश्चित ही। अब बात करते हैं, जब 1.5 वर्ष हो जाता है, जब फसल तैयार हो जाती है, तो कैसे पता करते हैं कि फसल तैयार हो गई?
1: इसका जो है जड़ होती है मिट्टी में,
0: हाँ
1: गुच्छे होते हैं
0: जी,
1: घर की उंगली मोटी वाली होती है उससे।

0: मोटी होते हैं गुस्से,
1: हाँ
0: जैसे मूसली बोल देते हैं कोई लोग, कुछ गिल्ली बोल देते हैं, तो
1: हाँ
0: वो हमें देखनी है, वो हमें उसकी खुदाई करनी पड़ती है,
1: जी
0: उसकी खुदाई हो जाती है, उसको हम खोद के, मैं बनाने का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ,
1: जी जी
0: उसको खोद के हम लाए निकाल के खेत में से, उसकी हमने छटनी कर दी, उसमें तना ऊपर होता है तना नीचे होता है,
1: जी
0: उसको हमने काट दिया अपने और बीज का रहने दिया, वो हमने अच्छे से धुला पानी से, और हमने उसको अपने बर्तन में जिसे हम भगोना बोलते हैं उसमें पानी से वो उसको उबाल लिया,
1: जी
0: जैसे हम
1: जी
0: लोग आलू को उबालते हैं
1: आलू को उबालते
0: ऐसे
1: हैं।
0: हमने उबाल लिया, जब हमने देखा कि ये उबल गया उसको निकाला, उसका छिकल छील लिया हमने, छिकल छील के उसको धूप में डाल दिए, उसको सुखा दिए, आपका सतावत तैयार हो गया सूख के, वो आपका बिक्री के लिए तैयार है, और इसको जब आपको बेचना आए, जैसे आपने बना लिया ये प्रोसेस करके, अब फिर आपको आई बिक्री की दिक्कत, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी घर के क्षेत्र में, कहीं भी नहीं आएगी दिक्कत, क्यों, क्योंकि घर के हमारे गांव के पास में गांव यही शहर के पास ही में है, अग्रास गांव पड़ता है, यहाँ बहुत सारे व्यापारी, मंडी कह सकते हैं आप,
1: बिल्कुल।
0: हाँ बहुत सारे व्यापारी हैं जो अच्छे रेट देते हैं, मैं लखनऊ भी ले गया हूँ, दिल्ली भी ले गया हूँ, मैं लखनऊ भी इसकी मंडी है, कानपुर ले जा सकते हो आप, दिल्ली है इसकी खाड़ी वावड़ी मंडी,
1: जी।
0: हाँ आप वहां ले जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
1: तो मतलब ये है कि इस फसल को पहले जैसे अगर किसान भाई सोचते थे कहाँ बेचेंगे कैसे क्या करेंगे, लेकिन आज का जो समय है उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, कहीं भी किसी मंडी में आप जाके बेच सकते हैं।
0: किसी मंडी में आप बेच सकते हैं, आपके पास सतावर है तो आपके घर व्यापारी आते हैं, व्यापारी घर घर आ रहे हैं, रेट आपको लगा रहे हैं, आप बिल्कुल कोई दिक्कत किसी प्रकार, जैसे धान गेहूं की दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार इसकी दिक्कत, और इसका व्यापारी तो और अच्छा है,
1: जी।
0: जी इसका व्यापारी अच्छा है, अगर किसान भाइयों को बनाते समय अगर दिक्कत आती है तो वो हेल्प कर, कोई दिक्कत
1: मदद भी
0: नहीं,
1: कर
0: मदद
1: देते हैं,
0: करते, खूब मदद
1: तो
0: करते हैं,
1: मतलब ये है कि इसके विपणन में कोई समस्या नहीं
0: कोई
1: है,
0: समस्या नहीं,
1: बस ये है कि हमें इच्छा शक्ति रखनी है
0: बस इच्छा
1: और
0: शक्ति
1: खेती को
0: रखनी, हाँ
1: बदलना है।
0: खेती को बदलना है, इच्छा शक्ति रखनी है, हमें थोड़ी मेहनत करनी है,
1: जी
0: हमें ये नहीं करना है खेत में हम बोआए और हम आराम से बैठ गए, नहीं,
1: बिल्कुल
0: हमको जब हम ड्यूटी करेंगे नौकरी करेंगे तो 8 घंटे देंगे,
1: दो।
0: जब आप खेत पे समय दोगे तो सतावर में आप ज्यादा मुनाफा कमाओगे,
1: बिल्कुल। अंत में क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से आज के कार्यक्रम के माध्यम से?
0: हम यही कहना चाहेंगे किसान भाई अगर ज्यादा नहीं कर पाए तो स्टार्टिंग में कम से कम 2-4 बीघा सतावर करके देखें और
1: जी
0: उसमें सह फसल लगाएं और उसको समय दें, समय
1: जी
0: देने के बाद आप देखें कि हमने कितना क्या किया, कितना इससे हमने मुनाफा कमाया, हमने धान गन्ना गेहूं में कितना मुनाफा कमाया, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें करें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ सतावर से अच्छा आपको कुछ नहीं लगेगा।
1: बिल्कुल। तो भगत सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपने सतावर की खेती कर लाभ कमाए, इस विषय पर हमारे किसान साथियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, राम राम।
2: साथियों, अभी आपने सुनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, सतावर की खेती कर आमदनी बढ़ाएं, जानकारी आपको दे रहे हैं श्री भगत सिंह जी और आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। तो साथियों, औषधीय फसल है सतावर और इसकी खेती करके आप अधिक आमदनी कर सकते हो, तो बस अगर आप परंपरागत खेती कर चला रहे हो जिनमें मुख्य रूप से धान गेहूं गन्ना की खेती है, तो इन्हें कितनी अच्छी ढंग से बताई कि जे भी ऐसी ही खेती करते, लेकिन अब जब उनके मन में आई कुछ अलग हट के खेती करी जाए, तब से फिर वो सतावर की खेती कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। शुरू में बातचीत के दौरान हमने आपसे वायदा करूँ कि आपको सुनवाएंगे एक लोक भजन, तो अब आपको सुनवा रहे हैं लोक भजन स्वामी राम स्वरूप शर्मा के स्वर में।

0: तो साथियों अभी आपने सुनो जो मधुर लोक भजन, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, हो जय स्वर दो हो स्वामी राम स्वरूप शर्मा ने। और साथियों अब है कार्यक्रम में एक क्षेत्र संकृत भेंट वार्ता। वृक्षारोपण और नए रोपित पौधों की देखभाल, कृषक है श्री जितेंद्र सिंह और इनसे बातचीत करी है हमने, तो आओ सुनवा में जो बातचीत।
1: आज हमारे साथ हैं बातचीत के लिए एक किसान साथी। हमने देखा कि ये अपने खेतों के आसपास पौधे लगा रहे हैं, तो मन हुआ इनसे बातचीत करने का और जानने का कि कौन कौन से पौधे इस बार इन्होंने लगाए हैं और किस तरह से वृक्षारोपण का कार्य ये कर रहे हैं। तो बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सब आपका। क्या नाम है आपका?
2: जितेंद्र सिंह।
1: कौन सा गांव है आपका?
2: ग्राम मनौना।
1: आज हमने देखा कि आप पौधारोपण का काम कर रहे हैं और आज 13 जुलाई है, तो ये बताइए कि कौन कौन से पौधे आपने इस बार अपने खेत के आसपास लगाए हैं?
2: यूकेलिप्टस के लगाए हैं।
1: यूकेलिप्टस के पौधे लगाए हैं, किस तरह से लगाए हैं? मेड़ों के आसपास लगाए हैं या पूरे खेत में लगाए हैं?
2: पूरे खेत में लगाए हैं, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से, लेन से लेन की दूरी 1 मीटर और पेड़ से पेड़ की दूरी 1 मीटर।
1: तो इस तरह से आपने पेड़ लगाए हैं। अच्छा, हमने देखा कि और भी बहुत से पौधे आपके खेत के आसपास लगे हैं जिनमें फलदार पेड़ भी हैं, और फलदार पेड़ों के अलावा कुछ आपने फूलों के पेड़ भी लगाए हैं, यानी अच्छा वातावरण है आपके यहाँ का। तो ये जो घर है और खेत है, तो कितनी भूमि है यहाँ पर आपकी?
2: मेरी 25 बीघा जमीन।
1: 25 बीघा भूमि है यहीं पर है। ये जो फलदार पौधे हैं, एक नींबू का पेड़ भी दिख रहा है, और कौन कौन से पेड़ हैं आपके यहाँ पर?
2: आम के पेड़ हैं और नींबू का पेड़ है और मेरे यहाँ अनार का भी है।
1: ये जो फलदार पौधे आपने लगाए हैं, तो इन्हें कहाँ से लाए थे खरीद कर? नर्सरी से? कहाँ की नर्सरी से?
2: ये तो हमने यहीं से लिया था, बरेली से।
1: तो किस तरह के पौधे अच्छा उत्पादन देते हैं जो फलदार होते हैं, इस बारे में बताइए।
2: जो अच्छी किस्म के लिए हो गए तो अच्छा ही रहे। अनार के लिया वो हमने औला से ही ले।
1: तो नींबू पर तो नींबू दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इन और पौधों की जो बात करी है हमने, इन पे फल आने लगे हैं अभी नहीं?
2: हाँ, अभी आने लगे। हाँ, हल्के आए हैं, छोटे छोटे आए हैं।
1: अच्छा, कई बार किसान साथी ये करते हैं कि उन्हें लगा कि उन्होंने कोई फल खाया, अनार खाया या फिर नींबू, उसके बाद जो बीज निकले और वो ही वो देते हैं, पेड़ तैयार करते हैं और उसको लगा देते हैं। कई बार शिकायत उनको रहती है कि साहब पेड़ तो अच्छा है लेकिन फल नहीं आ रहे हैं,
2: उसका बीज अच्छा नहीं होता है। अच्छा। इसलिए हम तो नर्सरी से ही लाते हैं हमेशा।
1: तो मुख्य रूप से यही कहना है कि नर्सरी से पौधे ला करके लगाने चाहिए ताकि उन पर जल्दी फल आ सके। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जो पौधे लगाए हैं आपने यूकेलिप्टस के, और क्या इसी बार लगाए हैं या पहले भी आपने हर साल लगाते हैं?
2: नहीं, हमने पिछली बार भी लगाए थे, वो लगाए थे पॉपुलर के।
1: अच्छा, तो देखिए सरकार का विशेष ध्यान इस ओर है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे हर साल लगाए जाएं, और जो बीता कल है, कल रविवार था, तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य 35 करोड़ पौधे लगाने का सरकार ने पूरा किया है। तो आपने भी इसमें योगदान किया क्योंकि आपने भी वृक्षारोपण किया है। तो आप जो पौधे लाए थे यूकेलिप्टस के, वो कहाँ से लाए थे?
2: ये हम देवचरा नर्सरी से लाए थे।
1: तो जो एक पौधा मिला आपको, वो कितने रुपए का मिला?
2: वो 10 रुपए का।
1: तो एक तो एक सामान्य पौधा होता है जो हमें नर्सरी से मिलता है, कुछ कम पैसे का मिलता है, लेकिन आप जो लेकर के आए हैं, इसकी क्या खासियत है इस पौधे की?
2: इसकी खासियत ये है कि ये 40 मीटर तक ऐसे चला जाएगा सीधा, ये हाईब्रिड में है।
1: तो अब हमारे जो अधिकांश साथी हैं वो इसी तरह के पौधे लगाना पसंद कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा मुनाफा हो। और जो पॉपुलर आपने पिछले वर्ष लगाई थी, उसके बारे में बताइए कि क्या स्थिति में है वो?
2: वो सही है, इसमें बढ़िया स्थिति में है।
1: बिल्कुल, किसान साथियों को ऐसे पौधे लगाने से फायदा ये होता है कि जब उन्हें इकट्ठी रकम की आवश्यकता होती है तो

0: वो उन्हें मिल जाती है। और अब बात ये बताइए कि जो पौधे हम लगाते हैं इनसे हट करके, जिनमें नीम के पौधे हैं और या फिर बकायन है, बकैना, जामुन के पेड़ हैं, तो ये इस तरह के पौधे हैं जो लगाते हैं हम लोग और इनका फायदा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है ना? क्योंकि जामुन का पौधा बहुवर्षीय पौधा है ना, आते भी फल काफी समय में है लेकिन चलता भी बहुत समय तक रहता है। तो इस तरह के पौधों के बारे में क्या कहना चाहिए, इस तरह के पौधे लगाना कितना जरूरी है आजकल?
1: इनको लगाना आजकल बहुत ही जरूरी है, अपने लिए भी और अगली पीढ़ी के लिए भी। पिछले पीढ़ी ने जो लगाया उसमें हम भी खा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी खाएगी।
0: ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग भी ऐसे पौधों को
1: पौधों को
0: लगाएं।
1: लगाना, हाँ बिल्कुल लगाना।
0: अच्छा, जो छायादार मुख्य वृक्ष हैं इनमें कौन कौन से पेड़ आपने लगाए हैं, छायादार पेड़ों की बात करें तो?
1: छायादार पेड़ तो अभी बकायना है हमारे पास, नीम लगाने की सोच रहे हैं
0: हाँ
1: और मेरे पास बकायन खड़ी है
0: हाँ
1: और अन्य पेड़ भी हैं।
0: अच्छा, एक पेड़ और हमने देखा है कि आपके घर के सामने ये गुलमोहर का पेड़
1: जी
0: है,
1: गुलमोहर
0: तो इसके बारे में बताइए कितना अच्छा पौधा होता है ये?
1: ये तो बहुत ही अच्छा पौधा होता है
0: हाँ,
1: और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आते हैं।
0: गर्मी के मौसम में
1: गर्मी के
0: फूल
1: मौसम
0: देता
1: के लिए तो
0: है
1: बहुत ही बेहतर
0: ना,
1: है जी।
0: और पूरा पेड़ लाल
1: लाल होता
0: रंग
1: है
0: के फूलों से भर जाता है, लग जाता है, एक अलग ही सुंदरता देखने को
1: जी
0: मिलती
1: सर,
0: है। हुँ?
1: जी सर।
0: अच्छा, पेड़ों के बीच रहना कितना अच्छा है ये बताइए।
1: पेड़ों के बीच रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और शुद्ध हवा मिलती है।
0: अच्छा, जो ग्रामीण जीवन है वो इसीलिए बेहतर है क्योंकि हमारे इन क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों की भरमार होती है और जो शुद्ध हवा मिलती है तो कहीं ना कहीं जो लगातार प्रदूषण है उसमें कमी आती है।
1: सही हवा मिलती है और व्यक्ति खुश रहता है। लोग दोपहर के टाइम में पेड़ के नीचे भी लेटते हैं और वहीं सो जाते हैं।
0: अच्छा, आपने देखा होगा कि पहले पीपल के पेड़ गांव में खूब होते थे, बरगद के भी पेड़ दो एक जरूर होते थे गांव में, लेकिन अब इस तरह के पेड़ कम देखने को मिलते हैं।
1: वो इसलिए नहीं है सर क्योंकि अब जगह की कमी है, जगह की कमी हो गई आदमी पे और कुछ आंधी उंधी में पुराने पेड़ उखड़ गए।
0: ये बात सही है। अच्छा, एक चीज और देखने में आई है कि सड़क के किनारे या वैसे जो जामुन के पेड़ लगे होते थे, या जामुन की भी दो तीन प्रजातियां हैं, तो वो भी पेड़ अब पुराने होने के बाद गिरने लगे हैं
1: जी
0: हवा के
1: सर, जी
0: चलते,
1: सर।
0: तो आवश्यकता ये है कि अब नए पौधे उनकी जगह पर
1: लगाए जाए,
0: लगाए।
1: हाँ नए पौधे लगाए।
0: अच्छा, बहुत जरूरी है कि हम केवल पौधे लगा दें, जिस समय चल रहा है और लोग पेड़ लगा देंगे, तो क्या बहुत आवश्यक है, जैसे आप तो हर साल पेड़ लगाते हैं, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होती है पेड़ लगाने के बाद?
1: पेड़ लगाने के बाद उसकी देखरेख बहुत जरूरी है, निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है, उसमें कीटनाशक भी डालना बहुत जरूरी है और उसकी घास खरपतवार निकालना भी बहुत जरूरी है, वो हम समय समय पर करते हैं।
0: कहने का तात्पर्य ये है कि पौधा हम लगाते हैं वो तभी अच्छा पेड़ बन पाएगा जब उसकी देखभाल
1: करेंगे,
0: अच्छे से होगी।
1: समय समय पर DAP कंपोस्ट खाद ये भी डालते हैं। हाँ पानी भी लगाना बहुत जरूरी है, पानी लगाते हैं, देखरेख करते हैं।
0: तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे, और आप थोड़े बहुत पौधे हर साल लगाते हैं, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अगर हर साल अच्छी संख्या में पौधे लगाए जाएंगे तो हमारा पर्यावरण एकदम स्वच्छ शुद्ध बना रहेगा, और जब शुद्ध रहेगा तो चित्त भी प्रसन्न रहता है जो आसपास लोग रहते हैं उनका। आपसे बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
0: साथियों, अभी आपने सुनी जो भेंटवार्ता वृक्षारोपण और नए रोपित पौधों की देखभाल कृषक से जितेंद्र कुमार सिंह से बातचीत करी हमने, तो बिल्कुल आपको भी पौधा लगाने हैं। और अब आज के ग्राम कार्यक्रम ग्राम जगत बिल्कुल समय नहीं, कोई और बातचीत आपसे करें। देवोन्मत्ति आप हमको, आप सब जने राम राम।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम अक्षय पट, सुनवा रहे हैं इसमें भेंटवार्ता, मेहमान हैं चंद्रकरण और उनसे बातचीत कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव।
3: दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हैं। आपका नाम है चंद्रकिरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद जी।
3: तो हम अपने सुनने वालों को बता दें, चंद्रकिरण जी बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ हैं और उसके अलावा क्या क्या करती हैं वो उनकी जुबानी ही सुनिए। मैडम कुछ बताइए अपने बारे में।
4: हाँ जी, वैसे हम एक ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं।
3: अच्छा,
4: कैंसर
3: कैंसर
4: कैंसर अवेयरनेस
3: कैंसर
4: है
3: के चैरिटेबल।
4: हाँ जी,
3: क्या
4: चैरिटेबल
3: बात
4: है।
3: है, बहुत ही नोबल कॉज के लिए आप काम कर
4: हाँ
3: रही हैं
4: जी,
3: आप लोग।
4: तो उसके कैंप लगते हैं
3: अच्छा,
4: पूरनपुर,
3: हाँ,
4: शाहजहानपुर, पीलीभीत, तो मैं
3: अच्छा,
4: अपने हस्बैंड के साथ उनका सहयोग
3: सहयोग
4: उनके साथ।
3: करते हैं।
4: हाँ जी, हाँ जी।
3: तो एक मैसेज इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप दे दीजिए आम लोगों के लिए कि कैंसर से कैसे बच के रहना है, क्या क्या काम नहीं करना है।
4: कैंसर से वैसे तो यही कहते हैं कि खान पान का, बाहर का,

0: नहीं खाना करके, और ये गुटखा तंबाकू हमारा तो
1: बहुत ही
0: ये उसी
1: खतरनाक है।
0: में बहुत खतरनाक
1: हाँ,
0: है
1: शुरू में इजीली
0: ना।
1: आदमी को लत लग
0: हाँ
1: जाती
0: जी,
1: है।
0: जैसे वैसे लेडीज के लिए अगर छोटी मोटी कोई भी उनको अपने शरीर में कोई गांठ दिखती है, कुछ दिखता है कोई भी ऐसा उनको, तो उसको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
1: वो नीम हकीम वाला हिसाब
0: नहीं नहीं
1: ना
0: नहीं नहीं
1: करें,
0: नहीं नहीं
1: तुरंत
0: बिल्कुल
1: प्रॉपर डॉक्टर के
0: प्रॉपर।
1: पास
0: हाँ
1: जाएं
0: जी, हाँ
1: और
0: जी,
1: किसी भी चीज़ के प्रति गंभीरता
0: हाँ
1: से
0: जी,
1: लें
0: हाँ जी,
1: उसको,
0: बिल्कुल।
1: उसको मजाक ना लें कि
0: नहीं
1: हाँ भाई
0: नहीं
1: ये
0: नहीं
1: तो ऐसे ही हो
0: छोटी सी गांठ
1: जाएगी।
0: है जैसे कैसे ये है
1: हाँ
0: ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो मेरे हिसाब से तो तुरंत ही।
1: तुरंत ही कराना चाहिए। और मान लीजिए किसी को डिटेक्ट हो गया,
0: हाँ
1: पता
0: जी,
1: चल गया कि
0: हाँ
1: नहीं आपको
0: जी,
1: तो, इनको तो कैंसर है,
0: हाँ जी,
1: तो क्या करना चाहिए शुरुआत में?
0: तो शुरुआत में तो ये पहले आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको सलाह देगा जैसे जैसे वो कहता है
1: बिल्कुल फॉलो
0: बिल्कुल
1: करें।
0: फॉलो। मेरे को तो मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसी लाइन पे आए, LIC से रिटायर होने के बाद वो फिर कैंसर से जुड़ गए, तो हमारे कैंप, तो डॉक्टर चितलंगे जी के साथ हमारा कैंप लगता है,
1: अच्छा।
0: तो सब जगह जाते हैं। पर हमारे हमें ये रहता है कि अभी हमारी ननद, हमारे घर पे ये ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो कनाडा में थी,
1: अच्छा।
0: कनाडा में गई, तो हमारी पंपलेट छपते हैं, पंपलेंट होते
1: हाँ
0: हैं बने
1: बिल्कुल,
0: होते हैं कि कैंसर
1: हाँ
0: के
1: बिल्कुल,
0: लेडीज के लिए कि
1: हाँ
0: कैसे अगर
1: प्रचार के
0: पहले
1: लिए, हम
0: विचार के लिए
1: बिल्कुल,
0: भी ये सब
1: हाँ
0: करना
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: अब वो इन्होंने, हमने व्हाट्सएप पे अपना वो पंपलेट जो है
1: अच्छा,
0: शेयर करा उनके साथ,
1: हाँ हाँ
0: अब
1: हाँ
0: उन्होंने पढ़ा तो वो, उनको थोड़ा सा अपना ब्रेस्ट में, मतलब उनको वो एक्टिविटी लगी कि भी ये चीज़ है ना, उन्होंने तुरंत टिकट कराई यहाँ आई,
1: अच्छा।
0: यहाँ आने के बाद फिर उनका सारा ट्रीटमेंट जैसे हुआ, फिर उनको विधानता में, दिल्ली में मेदांता में ले गए
1: डिटेक्ट हो गया था।
0: तुरंत। और आप ये देखिए, मतलब वहां से जब उनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया, अब उनको कैंसर नाम की कोई चीज नहीं है,
1: क्या बात है, ये तो बहुत
0: डायग्नोज हो गया तुरंत ही, मतलब उन्होंने एकदम देर नहीं लगाई, वहीं
1: देर
0: से
1: नहीं
0: टिकट
1: लगाई।
0: कराई तुरंत चले आए। तो मतलब ये लगता है कि भी इसको जो है ऐसे नहीं लेना चाहिए, ये मतलब बहुत अपने शरीर का सब चीज का कोई
1: बिल्कुल,
0: भी गांठ जो।
1: ये
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: ईश्वर का
0: हाँ
1: की
0: जी,
1: कृपा रही कि समय
0: हाँ
1: रहते
0: समय
1: ही
0: रहते ही
1: हो
0: ये
1: गया
0: सब हो
1: काम।
0: गया। हाँ जी,
1: बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये आपने तमाम श्रोताओं को एक कहानी भी बता दी, इसके माध्यम से
0: हाँ जी,
1: बहुत ही जागरूक रहने वाली बात है ये
0: हाँ
1: कैंसर
0: जी,
1: के प्रति जो इस समय है,
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: आप लोग इस नोबेल कॉज से जुड़े हैं। इसके अलावा कुछ बताइए अपने बारे में, बींग ए हाउस वाइफ।
0: हाउस वाइफ का ये है ना, मेरा तो घर एक ट्रस्टी बना हुआ है, समझ लीजिए
1: अच्छा
0: फ्री।
1: अच्छा
0: हाँ जी, मेरी लाइफ में, क्योंकि पहले पहले हस्बैंड LIC में ही थे,
1: अच्छा।
0: तो वो उनकी पूरा टीम वर्क होता था
1: हाँ, टीम वर्क भी था और
0: और
1: पब्लिक रिलेशंस भी
0: से
1: है,
0: जुड़े
1: हर
0: हुए थे।
1: रोज किसी
0: हाँ
1: न
0: जी,
1: किसी मिल रहे
0: सब
1: हैं,
0: कैसे,
1: तो
0: हमारा
1: घर पे
0: घर
1: भी
0: जो
1: आना
0: है
1: जाना लगा रहता है।
0: बहुत, और मैं खुद ही बनाती हूँ,
1: अच्छा
0: खुद
1: अच्छा
0: ही सबको, मतलब मेरे को एक शौक समझ लीजिए, जब
1: हाँ
0: मैं किसी को खा ले आके बहुत सेटिस्फाई होती हूँ कि मैं।
1: अच्छा,
0: और उसके
1: क्या
0: बाद
1: बात।
0: अब क्या है, अभी इससे जुड़े हैं, अब जैसे कोई हॉस्पिटल में आया है, पूरनपुर का आया, फार्मो वाले आए हैं, उनको रहने की कोई समस्या, हमारे नीचे हमने 2 रूम इसीलिए बनाए हुए हैं वैसे ही लोक
1: अच्छा।
0: सेवा के लिए, तो उनको खाना पीना सब प्रॉपर, हस्बैंड वाइफ ही हैं, बेटे की शादी हो चुकी है, बेटा
1: अच्छा
0: ऑस्ट्रेलिया में है,
1: अच्छा
0: तो हम
1: अच्छा
0: इसी काम में
1: लगे हुए
0: लगे
1: हैं।
0: हुए हैं
1: क्या बनाना
0: कि
1: अच्छा
0: हमें,
1: लगता है आपको?
0: हमें कुकिंग का बहुत शौक है,
1: फिर
0: जो
1: भी कुकिंग
0: भी
1: में क्या बेहतरीन?
0: कुकिंग में बेहतरी, मेरे जैसे साग, मक्की की रोटी,
1: अच्छा
0: राजमा,
1: अच्छा तो
0: छोले।
1: आप लोग पंजाबी हैं क्या?
0: हाँ जी, हाँ
1: पंजाब
0: जी,
1: से जुड़े हुए हैं,
0: पंजाब से जुड़े हुए।
1: क्या बात है।
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: बरेली में कब से हैं आप लोग?
0: बरेली से मेरे हस्बैंड का जब यहाँ ही जॉब हुआ,
1: यहाँ जो
0: यहीं का
1: जॉब की
0: रहता है।
1: शुरुआत
0: हाँ,
1: हुई।
0: फिर हमने सोचा था यहाँ से चले जाएंगे, मतलब क्योंकि हमारे सारा पंजाब में है और राजस्थान में है, गंगानगर में है परिवार वगैरह,
1: लेकिन आप लोग जा नहीं
0: फिर
1: पाए।
0: जाने, फिर कैंसर से, इससे ट्रस्ट से जुड़ने से फिर ये हुआ कि ये नहीं
1: और बरेली
0: पता
1: की,
0: नहीं।
1: बरेली की आबो हवा ने भी रोक के रखा
0: हाँ,
1: है।
0: आबो हवा भी, लेकिन ये लगा कि ये काम पता नहीं भगवान ने हमें
1: इसी के लिए चुना
0: इसीलिए
1: है,
0: चुना
1: क्या
0: है,
1: पता।
0: तो क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बहुत ज़्यादा
1: बहुत
0: इस
1: ज्यादा
0: काम
1: दिल
0: में,
1: से जुड़े
0: हाँ
1: हुए
0: जी, दिल
1: हैं।
0: से जुड़े हुए हैं,
1: जी जी
0: उनका सैटरडे को भी कैंप, संडे को फिर गांव गांव में कैंप, फिर हम उनके साथ जाना, सहयोग देना
1: तो
0: पूरी।
1: और पंजाब में आप कहाँ से?
0: पंजाब में हम प्रॉपर जलंधर।
1: जलंधर से
0: हाँ
1: हैं,
0: जी,
1: तो वहाँ पे गांव है अपना, सब
0: हमारा घर
1: सब
0: है
1: अच्छा है
0: पूरा।
1: वहाँ पे
0: हाँ
1: लोग?
0: जी, हाँ जी,
1: क्या बात है।
0: हाँ,
1: तो लेकिन आपको याद नहीं आती, जाते हैं आप
0: नहीं
1: लोग?
0: हम जाते हैं, वो लोग भी आते हैं हमारे पास।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा
0: जी, हाँ जी,
1: साल भर में
0: हाँ,
1: एक दो
0: चक्कर,
1: बार कम से
0: हाँ,
1: कम,
0: शादी ब्याह वगैरह सब में जाना।
1: मतलब
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: जी, हाँ
1: जड़ों
0: जी,
1: से जुड़े हुए
0: जड़े
1: हैं, वो
0: से, हाँ जी।
1: छूटा नहीं है।
0: लेकिन बरेली का भी ये लगा कि नहीं, अब जो ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत लोग। हाँ जी, और कुछ ऐसे भी आया, मेरे हस्बैंड ने तो पूरा वो भी बनाई हुई, एक डायरी भी बनी हुई कि जिनको कैंसर 14 14 15 15 साल से चल रहा है, ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है,

0: ट्रस्ट की वजह से थोड़ा पैसा भी कम लगता है, तो वो इलाज प्रॉपर उनका चलता है,
1: प्रॉपर
0: तो वो
1: चलता
0: आते
1: है,
0: हैं।
1: चलिए
0: हाँ
1: बढ़िया।
0: जी, पहले फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे को कैंप लगता है ट्रस्ट में।
1: अच्छा।
0: बाकी गांव में अलाहदपुर हमने एक अडॉप्ट किया हुआ है गांव, वहाँ जाते हैं
1: अच्छा,
0: डॉक्टर
1: क्या
0: लेके। हाँ जी
1: बात है।
0: हाँ,
1: तो डॉक्टरों का सहयोग मिलता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो मतलब
0: बिल्कुल
1: निःशुल्क
0: बिल्कुल
1: रहते
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: निःशुल्क
1: क्या बात है।
0: निःशुल्क।
1: तो और इसके लिए जैसे घर पे और फिर ये बाहर, और फिर बच्चे, बेटी की शादी हो गई,
0: बेटी
1: जब
0: है,
1: बच्चे छोटे रहे होंगे
0: हाँ जी
1: बेटी,
0: हाँ जी, नहीं तब
1: तब।
0: तब से ही, क्योंकि शुरू से ही
1: हाँ।
0: जब हम पेरेंट्स के घर से भी आए थे, तो मतलब अब हम माँ को करते हुए देखा था
1: अच्छा
0: सब,
1: अच्छा
0: क्योंकि हमारा वहाँ भी ज्वाइंट परिवार था। मम्मी को अपने को देखा कि वो करते थे, फिर यहाँ आए, यहाँ भी मदर फादर इन लॉ मेरे साथ ही रहते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: तो वो लोग
0: तो
1: भी सोशल सर्विस में
0: हाँ
1: थे।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, हमारे सभी सभी का सहयोग होने के कारण फिर
1: हाँ
0: हमें
1: हाँ
0: कभी लगा नहीं कि भाई नहीं, अभी भी हमारे घर में भंडारा ही चलता है।
1: अच्छा।
0: अगर कोई भी चार लोग भी आ जाए तो मेरे को सोचना नहीं पड़ता किचन में जाने का, कि मतलब मेरे को क्या बनाना है,
1: क्या
0: क्या करना
1: बनाना है।
0: है। हाँ
1: तो जैसे परिवार की बात की, हमारा जो प्रोग्राम है अक्षय वट,
0: हाँ जी
1: अक्षय वट जो नाम हम लोगों ने रखा है कि एक बरगद के पेड़ जो
0: हाँ
1: होते
0: जी हाँ
1: हैं
0: जी हाँ जी,
1: बहुत बड़ा सा होता है, उसकी छाया में
0: छाया,
1: सभी पौधे पनपते हैं,
0: हाँ जी
1: तो वैसा ही कुछ आपकी भी भूमिका है परिवार में।
0: हाँ, वो तो बहुत
1: हाँ,
0: जरूरी भी है,
1: बहुत ज़रूरी
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी है। बगैर भूमिका के ना हस्बैंड आगे बढ़ सकते हैं ना हम, दोनों का सहयोग होना,
1: नहीं,
0: फिर
1: बच्चों की बात कर रहे
0: बच्चों के,
1: हैं।
0: हाँ बच्चों, मेरे बेटी बिटिया ने MBA करा हुआ है,
1: अच्छा।
0: वो अमर उजाला में थी, फिर अब बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, तो बच्चों को
1: तो बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, वो बहुत कम आ पाते होंगे
0: हाँ जी,
1: वीडियो कॉल पे
0: लेकिन वीडियो
1: बात।
0: कॉल, हाँ जी, उसको भी
1: अच्छा।
0: पता है कि मम्मी पापा जिस काम से जुड़े हुए हैं, तो वो
1: हाँ,
0: मतलब बच्चों का भी हमें बहुत सहयोग है, मतलब
1: अच्छा,
0: वो बहुत लाइक करते, बहुत पसंद करते
1: लेकिन
0: हैं।
1: वो भी चाहते होंगे कि आप लोग भी पहुंच जाएं
0: हाँ नहीं
1: ऑस्ट्रेलिया,
0: नहीं जाएंगे,
1: घर के
0: लेकिन हम
1: पास
0: वहाँ नहीं रुकेंगे,
1: रुकेंगे नहीं,
0: क्योंकि हमारा
1: सब
0: बहुत,
1: काम इधर है और एक काम भी
0: हाँ,
1: आपने
0: और
1: शुरू
0: आप
1: किया
0: ये
1: हुआ
0: देखिए,
1: है।
0: हम निस्वार्थ भावों के काम करते हैं, मतलब हमें ये नहीं है आज हमें पता चल जाए कोई फार्म से आया हुआ है उसको खाने की कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा, मैं टिफिन पैक करके, मैं और मेरे हस्बैंड प्रॉपर वहां पर, नहीं रुकने का वहां इंतजाम है तो हम घर ले आते हैं, नीचे का पोर्शन है, आप बैठो, दूसरे दिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला, कोई बात नहीं।
1: सही बात है। और लेकिन बेटे से फिर कब बात होती है, बात नहीं मतलब कब मिलना, कब होता होगा?
0: नहीं, बेटे से, बेटा आ जाता है अब,
1: साल
0: हम
1: में एक बार आ जाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ अब
1: अच्छा
0: हम
1: अच्छा
0: जनवरी में जाएंगे।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: आप लोग
0: जी
1: भी जाते हैं फिर कभी, वो
0: हाँ,
1: है,
0: फिर
1: चले
0: अब
1: आते
0: ऐसा
1: हैं।
0: ही होता है।
1: चलिए, मतलब सब कुछ आप मैनेज कर रहे
0: हाँ जी हाँ
1: हैं,
0: जी, सब कुछ,
1: मैनेज कर रहे
0: हाँ
1: हैं। और
0: जी,
1: बेटी यहीं पे है,
0: बेटी दिल्ली में है,
1: दिल्ली में।
0: हाँ
1: चलिए,
0: जी
1: एक ये है कि बेटी यहाँ पे
0: हाँ
1: है।
0: जी हाँ जी हाँ
1: चलिए,
0: जी
1: अब कुछ, अब एक तरह से फ्लैशबैक में जाते
0: हाँ
1: हैं
0: जी
1: कि जब बच्चे छोटे हों रहे हों, है ना, उस समय आप क्या कुछ अनुभव बताइए।
0: जब बच्चे छोटे थे, वैसे मैं एक
1: हाँ
0: बात ना, मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं आया कि
1: हाँ
0: मेरे को कोई, पता नहीं भगवान ने मतलब नेचर ऐसा बनाया, मेरे को नहीं समझ आते कि सुबह वही रूटीन, उठना जल्दी, पूरा मैनेज करना, है ना। प्रियंका मेरी बिटिया मेरी जो थी वो डे बोर्डिंग में थी सुबह
1: अच्छा।
0: का, उसका उस समय खाना नहीं वहाँ चलता था, डे बोर्डिंग में खाना नहीं चलता, बरेली में अल्मा मातिर था, तो डे बोर्डिंग उन्होंने कर दिया था, तो खाना उसका सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का उसका स्नैक्स वगैरह, मैं खुद घर, कभी बाजार का हमने
1: नहीं
0: कभी भी, हमारे घर में
1: नहीं
0: कभी
1: खिलाया,
0: कोल्ड ड्रिंक,
1: क्या
0: पेप्सी
1: बात है,
0: कभी नहीं आया,
1: क्या
0: मैंने
1: बात
0: घर
1: है।
0: पे ही सब कुछ, नींबू पानी मेरे घर का होता अपना, स्कैच जो बनाती हूँ, वो छोटेपन पे बच्चों को, उनको
1: क्या
0: पता है
1: बात
0: कि
1: है,
0: मम्मी ने किचन में
1: बहुत ही अच्छा
0: मैनेज
1: ये
0: करा
1: सब।
0: हुआ है,
1: हाँ हाँ
0: नींबू
1: हाँ
0: पानी भी मेरे घर का ही बनेगा, स्कैश भी, रूह अफ़ज़ा भी, मतलब मैं घर पे ही ये सब चीज ड्रिंक तैयार करती हूँ। अभी भी मेरी किचन में नहीं भी है
1: तो
0: हम लोग, लेकिन जो बाहर से आते हैं
1: हाँ
0: उनके
1: हाँ
0: लिए,
1: उनके लिए स्क्वैश
0: हाँ
1: वगैरह
0: जी हाँ
1: खुद ही,
0: जी हाँ बिल्कुल
1: क्या
0: बिल्कुल
1: बात है,
0: बिल्कुल,
1: बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आज के समय में हर कोई बस बाजार की चीजों
0: नहीं
1: का
0: नहीं
1: आदि हो
0: हमारे घर
1: चुका
0: में
1: है।
0: कभी बच्चों जब छोटे थे तब भी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं आई थी, अभी भी
1: मटके
0: मटके का पानी चलता है फ्रिज
1: का
0: के,
1: पानी,
0: हाँ
1: अच्छा,
0: जी
1: फ्रिज के
0: फ्रिज
1: मतलब,
0: है, बोतल
1: फ्रिज,
0: रखी हुई है कि
1: हाँ
0: किसी को
1: हाँ
0: इमरजेंसी, लेकिन मटका,
1: मटका आप लोग मटके
0: हाँ
1: पीते
0: जी
1: हैं, अगर मान लीजिए कोई आ गया
0: हाँ,
1: तो।
0: मेरी बेटी ने वही आदत अपने बच्चे के लिए डाली हुई
1: क्या
0: है
1: बात है, बहुत ही
0: जिंदगी में, हाँ
1: खूबसूरत
0: जी
1: ये सब विचार हैं और ये
0: हाँ
1: मतलब जीवन शैली है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम श्रोता भी इसको अपनाएंगे।
0: हाँ जी नहीं
1: और
0: वैसे एक बात बताएं, अगर लेडीज चाहे, मतलब मेरे हिसाब से वो बहुत कुछ कर सकती है, हाउस वाइफ होके भी, अगर हम अपने हस्बैंड का सहयोग करते हैं, हस्बैंड आगे निकलते हैं है ना, उनको भी उसमें मतलब हम लोगों का दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के साथ भी सबके साथ। अब वो तो उनका फील्ड वर्क था लेकिन बच्चों

0: मैनेज करना, फिर घर में जो भी आना, ज्वाइंट परिवार होता था, सबको ही ऐसा नहीं लगा मैं, है ना, बहुत
1: बिल्कुल।
0: इजीली।
1: बाकी अब जैसे हम लोग रेडियो चलाते हैं, रेडियो से जुड़े हैं हम लोग, आकाशवाणी है, तो बचपन में कभी आपने
0: हाँ
1: आकाशवाणी
0: जी
1: सुन?
0: बिल्कुल, उस समय
1: अच्छा
0: तो चलता ही यही था,
1: हाँ,
0: एफएम निकाल लिया, बैंक
1: अच्छा
0: एफएम चलाना, फिर वो ट्रांजिस्टर उसका सिग्नल ऊंचा कर देना,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ वही,
0: बीबीसी नंदन सुनो, ये करो, न्यूज सुनो, यही होता था।
1: यही होता था।
0: टीवी तो बाद में आया है,
1: टीवी तो बहुत बाद में
0: बाद
1: आया
0: में
1: है,
0: आया है,
1: तो
0: वो होता था सब लोग इकट्ठे होके बैठ
1: वो
0: जाते
1: भी
0: थे,
1: पहले
0: वो
1: दूरदर्शन आया था।
0: तो पहले दूरदर्शन पे हमारा अमृतसर चलता था उस समय,
1: अच्छा,
0: दूरदर्शन जब हुआ तो अमृतसर का ही वो टेलीकास्ट होता था,
1: क्या बात है।
0: तो
1: कोई
0: उसका
1: कोई प्रोग्राम अगर आप याद हो बताना चाहें तमाम सुनने वालों को।
0: वहां पर नुक्कड़ चलता था जब

0: तमाम सुनने वालों को।
1: वहां पर ये नुक्कड़ चलता था जब दूरदर्शन शुरू हुआ,
0: अच्छा
1: नुक्कड़ हुआ, मतलब
0: हाँ
1: ऐसे करके छोटे छोटे नाटक। फिर जब ये आना अपना न्यूज आना,
0: हाँ हाँ न्यूज तो
1: न्यूज आना, तब फिर मूवी आती थी, पिक्चर आती थी,
0: हाँ
1: शनिवार आ गई और सब इकट्ठे हो जाते थे,
0: हाँ
1: है ना,
0: इसी
1: बैठने भी चित्रहार आता था,
0: बिल्कुल सही
1: है ना।
0: चित्रहार तो सब लोगों को
1: हाँ जी
0: जुड़कर शाम को 8 बजे
1: हाँ
0: करीब आता था,
1: 8 बजे
0: और
1: चित्रहार
0: सुबह
1: का
0: सुबह रंगोली आती
1: रंगोली
0: थी
1: आती थी।
0: रविवार को।
1: हाँ जी, फिर वो शुरू, रामायण
0: हाँ रामायण
1: रामायण शुरू हो गई, महाभारत शुरू हो गया,
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: हाँ
1: तो ऐसे मतलब वो छोटे छोटे छोटे छोटे जो
0: हम्म,
1: सीरियल आने वो बहुत अच्छे होते
0: बहुत
1: थे।
0: अच्छी होती है। और आकाशवाणी की कुछ यादें
1: आकाशवाणी
0: हैं,
1: का,
0: इसकी कुछ यादें हैं?
1: आकाशवाणी में तो हम ज्यादातर गाने
0: सुनते थे। हाँ
1: सुनते थे, है ना, ये आकाशवाणी है अब आपके सामने, ऐसे करके बोलते थे, तो
0: हाँ
1: मतलब बहुत अच्छा लगता था, है ना। तो बच्चों को भी कहते थे कि हमारे टाइम में तो ये सब यही होता था, सब लोग इकट्ठे बैठे हैं आकाशवाणी की न्यूज सुनने हैं। ये
0: कभी कभी आपने कुछ फरमाइश की आकाशवाणी पे? नहीं,
1: नहीं, मैंने
0: जो
1: नहीं
0: पहले
1: करी।
0: पोस्टकार्ड, अभी भी हमारे आकाशवाणी बरेली के केंद्र पे
1: हाँ जी,
0: पोस्टकार्ड आते हैं फरमाइशी।
1: तो वो कहाँ पर मिलते हैं, कैसे होता
0: नहीं
1: है?
0: नहीं पोस्टकार्ड मतलब कि मान ली हमारे जो सुनने वाले हैं
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: वो पोस्टकार्ड लिखते हैं कि
1: अच्छा
0: हाँ
1: ही,
0: मैं फलाने
1: हाँ
0: यहाँ
1: जी,
0: से मुझे ये गाना सुनना
1: हाँ,
0: है।
1: वो तो मैंने सुना है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: उनकी फरमाइश पे हम ये
0: उनकी
1: गाना
0: फरमाइश
1: सुना रहे
0: आपने
1: हैं।
0: कभी की है?
1: नहीं, मैंने
0: फरमाइश
1: ऐसा कुछ
0: आपने
1: नहीं
0: नहीं
1: अभी।
0: की?
1: हाँ
0: फिर
1: जी,
0: भी अगर आप, अगर आपको कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि आज अगर आप कोई गाना सुनना चाहती हैं अपने पसंद का,
1: हाँ
0: तो कौन
1: जी,
0: सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: लो आ गई उनकी याद, वो
0: क्या
1: नहीं
0: बात,
1: आए।
0: क्या बात है, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए।

0: तो इसी खूबसूरत से गाने के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। अब
1: धन्यवाद
0: ये
1: बहुत बहुत,
0: लीजिए, गाना आपकी फरमाइश पे सुनाया भी जाएगा इस कार्यक्रम में,
1: धन्यवाद।
0: और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें बताई हैं उससे तमाम श्रोता ज़रूर लाभान्वित होंगे, और आपने जो जीवन शैली अपने परिवार में फॉलो कराई है उसको वो भी फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया
1: बराबर,
0: मैडम आपका यहाँ आने के लिए।
1: धन्यवाद
0: थैंक
1: जी, थैंक यू जी,
0: यू। ठीक है मैम,
1: अच्छा
0: थैंक
1: जी।
0: यू। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट। कार्यक्रम में आज मेहमान थी चंद्रकिरण जी, इनसे बातचीत कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आइए अब बता दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में। आप हैं यशोदा पुत्री मोहनलाल, उम्र है 35 वर्ष, निवासी है फतेहपुर थाना आलागंज जिला शाहजहांपुर। यशोदा जी की उम्र है 35 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट है, चेहरा गोल है, रंग सांवला है, आंखें सामान्य हैं। ये मानसिक रूप से कमजोर हैं, यानी कि विकृत हैं। इनके बाल छोटे हैं, कम हैं, इन्होंने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए हैं। यशोदा देवी से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपके पास हो तो आप इनके घर के नंबर 9956320259 पर या प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी बरेली को संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, घर का नंबर इनका 9956320259 पर आप खबर कर सकते हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक

जुलाई 2026 को सायं 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। इस रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार यानी कल दिनांक 14 जुलाई 2026 को सायं 4 बजे से। इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्या सिन्हा मौजूद रहेंगी। विवरण एक बार फिर से ये विषय रहेगा महिलाओं में बच्चेदानी की रसौली, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार। रिकॉर्ड की तारीख और समय हम आपको याद दिलाएंगे। रिकॉर्डिंग करेंगे हम कल यानी कि मंगलवार दिनांक 14 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर है हमारा 0581251720। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
0: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 45 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने SIT से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उन्नाव में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लखनऊ हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग के 32 किलोमीटर के एक खंड का लोकार्पण और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने जा रहे 4 लेन वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश बेहतरीन सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के लिए अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
7: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी

0: स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
1: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में कई बड़े निवेश आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में धरातल पर देखने को मिलेंगे।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और वहाँ जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा।
0: 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहाँ से ज्यादा होगा तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। पेश एक रिपोर्ट।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेडिकल रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने SIT की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। उधर श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं SIT ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। संतोष दुबे ने बताया कि SIT ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने SIT

0: एसआईटी के सम्मानित सदस्यों ने, अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हमारा पक्ष जाना, अपेक्षा की कि और भी कुछ आपके पास हो तो हम तक उपलब्ध करते हैं। जो बातें उन्होंने हमसे पूछा, मैंने उनको पूरा जो हमने देखा, सुना, जाना, समझा, वो सब बताया।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। ये समिति विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर मंथन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। कल सुबह ये समिति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके विचार जानेगी।
2: कल सुबह जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब के क्या विचार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना ये है कि अलग अलग दलों के इस पे क्या विचार है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। ये विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में प्रस्तावित है। इसमें ज्ञानवापी से जुड़े विभिन्न वादों के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़े अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि अगर मध्यस्थता से कोई समाधान नहीं निकलता तो मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 50 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पार्टी चाहिए,
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: इस द पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, इस वक्त समय हुआ है 7:31:05। ये समय है कार्यक्रम अनुरोध गीत का। तो कार्यक्रम का पहला गीत सुनाने जा रहे हैं आपको। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। इस गीत के लिए अनुरोध पत्र हम तक पहुंचा है। आप हैं ग्राम ततारपुर बिसौली बदायूं से डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, सुनंद यादव, मयंक कौशिकी और पुष्पा यादव। और आप हैं इसी गीत के लिए अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर और साथ में हैं गुड़िया और ज्योति ठाकुर। ये पत्र हमें मिला है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर जिला, आपको ये मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया और

साथ में हैं साजदरानी और हिना कौसर। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से माहिरा नूर, मोहम्मद रेहान, शमलीन परवीन, रियाज रिफाकत, नाजर सिद्दीकी और साथ में हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी। और आप ने हमें ये पत्र भेजा है। साथी हमारे हैं मोहल्ला तलैया उड़ जागीर से फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और राम प्रसाद शर्मा जी। पीर बहोड़ा बरेली से हैं आज़ाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम। साथ में हैं महरुन्निशा। और इसी गीत के लिए ये हम तक का अनुरोध पत्र पहुंचा है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 प्राणशाह बरेली से हैं अनोखलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, बेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, अरोही और स्वाति मौर्य का। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अमित शर्मा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से हैं शुभचंद्र बजाज और साथ में हैं साहिल और बिट्टा बजाज। ये पत्र मिला है हमें उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मुंडिला से कुमार चंदा, कुमार चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया कुमार और साथ में है रीता देवी। और आप हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, फारूक अली खान और गुन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान। ये सभी साथी हमें अनुरोध पत्र भेज रहे हैं। आप हैं एडवोकेट बारिश अली खान लिखने वाले हैं, साथ में इनके इस्लामुन्निशा, सहनवाज खान और शकील अहमद, साथ में हैं सलीम अहमद। पता इनका है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। और इसी गीत के लिए हम तक ये अनुरोध पत्र पहुंचा है सरगुजा पैन मैनपाट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रिश्मा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी कलोनी से हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आप हैं कोटवा नारायणपुर वापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शिरपुरकला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, आप ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र, आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ, और इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अनुरोध गीत। और अब हम सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में आपको ये अगला गीत। फिल्म का नाम है नागिन, इसे गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत है हेमंत कुमार का। इस गीत के लिए अनुरोध पत्र में मिले हैं, ये हैं मार्टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुकलानी, जगमोहन प्रजापति, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और मीनाक्षी हैं और साथ में हैं इनके सभी साथी। और आप हमें लिख रहे हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा साहब का ये खत हमें मिला है। और आप हमें ये पत्र भेज रहे हैं, साथ ही हमारे ककराला बदायूं से हैं डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमबीर, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी और भारत यादव, ये सभी लोग अनुरोध भेज रहे हैं। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उदावा से हैं जिला बदायूं तादागंज से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सरोज यादव, अमन यादव, केशव यादव, सोनी यादव, साथ में अंगिता यादव, विनीता यादव और सुरश्री यादव, अनिता यादव और साथ में हैं इनकी साथी सुनीता यादव। आप हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा और उनकी बेटी है प्राची वर्मा। आप हैं दिल्ली शहर मुरगेट से कन्हैया लाल, रिता देवी, शिल्पी रानी और आकाश कुमार का यह पत्र में मिला है। मलोड पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सेना शर्मा और साथ में निवान शर्मा। इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद शादिक, मोहतकाक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़, बीबी मंतशा और साथ में हैं मोहम्मद शादाब खत्री साहब। ये खत हमें मिला है वैष्णव कलोनी सनावत एमपी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और साथ में मोहम्मद शादाब खत्री। तो ये पत्र हमें मिला है यादव मोहल्ला सनावत एमपी से दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर, मुस्कान मालाकर और साथ में जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकर। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। आप सुनवाने जा रहे हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है मुद्दत और इसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने। अनुरोध है आप सभी का। आप हैं फूलबाग कला छावनी बरेली से विष्णुदत्त भारद्वाज, साथ में हैं शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देव की देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम, मुन्नी देवी और साथ में हैं सभी साथी इनके। और आप हैं छावनी अशरफ खां होली चौक बरेली से हैं, साथी हमारे राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय और सभी साथी। नरियावल से हाजी तूफैल अहमद, नाजमा अंसारी, मस्तान कश्यप, बीना देवी, जोरा शर्मा और नाटू बदारत। और ये पत्र हम तक पहुंचा है मीका विरक, पलविंदर विरक, जयदेव विरक और हरदेव मीका का। और आप हैं दादेखेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, परी एम महल का सन से हैं आवाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान। भटापारा से हैं ददरेगी से झावेंद्र कुमार झा, दीपक कुमार वर्मा।

अक्षर कुमार वर्मा और साथ में है द्वारका प्रसाद वर्मा, मोहल्ला कढ़िया बरेली से हैं मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवे शमसी और पूरन का परिवार। बत्ता परिवार लिख रहा है, साथ में मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। बक्सर बिहार से हैं सरफुद्दीन अंसारी, प्रणतालाब व डुमराव से बलियोल्ला अंसारी, साहिबपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, इंदिरा बिहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से हैं नरेंद्र कुमार यादव, छटिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफाबाद दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नीमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी, विमल ठाकुर, सरिता, शुभ, लव और साथ में हैं गुनगुन लिख रहे हैं बक्सर नेतागंज बदायूं से। और आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा लिख रहे हैं हमें प्रेमलागंज अलोट पंजाब से।

शुद्धम कार्यक्रम के आखिरी में सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है हिना। इसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, बोल है रविंद्र जैन के, संगीत है रविंद्र जैन का और अनुरोध आप सभी का है। आप हैं बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, अमान खान, बीरेश सिंह चौहान, सोनू मिश्रा, प्रदीप पाल नमन और आप हैं मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगना से, बरेली उत्तर प्रदेश से हैं पन्नीलाल सागर, बिनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रवि भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, ममता चौधरी, साथ में ओमती भारती और साथ में है बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अशोक, अश्वनी चुग, गोविंद, टोनी और गोविंद चुग, साथ में हैं सभी मित्र और शीशगढ़ बरेली से हैं इलियास इद्रीसी, नाजरा इद्रीसी, नईम इद्रीसी और नदीम इद्रीसी, साथ में हैं असद बाबू।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कुछ देना पड़ता है बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, आज का युग डिजिटल युग है और सोशल मीडिया उसकी सबसे प्रभावशाली पहचान बन चुका है। और कुछ वर्षों पहले तक संवाद का माध्यम केवल पत्र थे, रेडियो था, टेलीविजन था, और अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो समाचार पत्र थे। लेकिन आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, तमाम इस तरह के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनका इस्तेमाल अब हम न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि सूचना के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, जन जागरूकता के लिए, इन तमाम सारी बातों के लिए कर रहे हैं। क्या है सोशल मीडिया, क्या इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री मनीष कुमार, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ। मनीष जी, अपने तमाम सुनने वालों की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: बहुत धन्यवाद।
1: सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है हमारे जीवन में, पहले तो ये बताएं कि सोशल मीडिया है क्या?
3: देखिए, प्रिंट मीडिया हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता था, उसके बाद डिजिटल मीडिया आया और डिजिटल मीडिया के अंग के रूप में सोशल मीडिया। आपने सोशल मीडिया के आने से पहले देखा होगा कि जो ब्रॉडकास्ट मीडिया था, यानी हम टेलीविजन चैनल की बात करें, इतना टेक्निकल में जाने से लोगों को वैसे समझ में नहीं आएगी बात। कुछ टीवी चैनल्स जो है वो शुरू किए थे अपने यहाँ एक प्रोग्राम आज से 10-15 साल पहले, सिटीजन जर्नलिस्ट, यानी कि कोई भी आदमी कहीं की कोई परेशानी हो या अपनी कोई बात हो तो वो उस संस्थान में एज ए रिपोर्टर काम करके अपना वीडियो भेज सकता था और उसको चैनल वाले दिखाते थे। ये हो गई 15 साल पहले की बात लगभग। लेकिन अब हर आदमी अपने आप में एक पत्रकार है, एक इन्फ्लुएंसर है, और ये एक नया शब्द देखिए इन्फ्लुएंसर आया
1: जी,
3: जिसने ऐसा कोई कंटेंट लोगों के सामने वो लेकर आया जिसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा और उससे जुड़े।

0: वो इन्फ्लुएंसर हो गए। तो सोशल मीडिया का मतलब कुल मिलाकर यही हो गया कि जो मीडिया या जो बातचीत करने का माध्यम था वो एक सीमित दायरे में था। भाई अखबार चलाने के लिए वो काम सीमित दायरे में था, टेलीविजन चलाने का काम सीमित दायरे में था, लेकिन अब वो दायरा खत्म हो गया। अब एक आदमी भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है। मीडिया क्या है? अपनी बात को बहुत लोगों तक पहुंचाना, यही मीडिया है। जो पहले अखबार करते थे, टीवी करते थे, अब वो हमारे जो जितने नाम आपने गिनाए, यूट्यूब हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, चाहे जो भी हो, ये मीडिया हो गया। और इसके तहत एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत आदमी भी सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। और जिसकी जितनी फॉलोइंग, यानी जिसका जितना फॉलोइंग का वर्ग बड़ा, वो उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर,
1: उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर।
0: बिल्कुल। तो जो सूचना, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या वो इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ हो, इसको प्रसारित करने का, लोगों के बीच ले जाने का जो माध्यम पहले एक बंद दायरे में था, वो अब हर के लिए खुल गया है। और हर आदमी अपने आप में एक मैसेंजर है। कोई भी घटना होती है, आप देखिए, कल के अखबार का हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसा कि हमें पहले 10 साल 15 साल पहले अखबारों से पता चलता था कि ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन ये सोशल मीडिया का ही असर है और उसका प्रभाव है और मैसेज पहुंचाने की ताकत है कि हमें मिनटों में, घंटों में ये पता चल जाता है कि ये घटना हुई है।
1: मनीष जी, पत्रकार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सूचना को पहुंचाना बड़ा कठिन कार्य था। समाज की घटना के दोनों पहलुओं को वो उजागर करता था। एक बड़ी जिम्मेदारी थी एक सुसंगठित समाज को बनाने की। मैंने कोई वीडियो बनाई, सूचना तो पहुंच गई, लेकिन वो सही कितनी है, ये बात सामाजिक रूप से कौन डिसाइड करेगा?
0: ऐसा नहीं है कि गलतियां पहले नहीं होती थी या जानबूझकर गलतियां पहले नहीं की जाती थी, क्योंकि हमारे पास जानने के बहुत कम माध्यम थे, तो इसलिए हम जान नहीं पाते थे। ऐसा नहीं कि अखबार और टेलीविजन जो चलते आ रहे हैं उनसे किसी खबर को लेकर, किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर गलतियां नहीं हुई, ऐसा नहीं है। गलतियां तब भी होती थी, गलतियां आज भी हो रही हैं। चूंकि आप समझिए कि पहले 10 प्लेयर थे और आज 5000 प्लेयर हो गए हैं। जो गलतियां पहले 2 होती थी वो उसी अनुपात में तो अब बढ़ जाएंगी। इसीलिए आज के जमाने में देखिए, फैक्ट चेक एक व्यवस्था आ गई है, जो कि खुद सोशल मीडिया का ही इमर्जेंस है, उसके अंदर से ही है। कौन सी खबर, कौन सी सूचना, कौन सा इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, अब फैक्ट चेक करने वाले बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें ये बताते हैं। लेकिन इसका दूसरा और जो सबसे गलत तरीके से प्रभाव करने वाला है, वो इसको एज ए टूल इस्तेमाल करने का है कि गलत सूचना को भी हम कैसे उसको सही रूप में प्रसारित कर सकें, उसका बहुत प्रभाव। लेकिन ये काम भी आज का नहीं है।
1: अच्छा, इसके जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाए, फेक न्यूज या फेक खबरें न डाली जाए, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?
0: जो इसमें कहीं गलतियां हो रही हैं, चाहे वो जानबूझ के की जा रही हो या अनजाने में हो रही हो, फैक्ट एक बड़ा माध्यम है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है। और अब तो सरकार की तरफ से भी इसके बहुत प्रयास किए जाते हैं। PIB का अपना फैक्ट चेक का यूनिट है, जो कोई भी ऐसी सूचना जो बहुत फैलती है उसके बारे में वो बताता है कि ये गलत है कि सही है। लेकिन उसमें अंकुश के लिए, देखिए, इसीलिए हमारे इंडियन पीनल कोड में जो पहले था, कोई IT एक्ट नहीं था, लेकिन इन्हीं सब को देखते हुए, इन्हीं अपराधों को देखते हुए IT एक्ट जोड़ा गया। अलग से पुलिस भी बैठाई गई कि किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए। आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है।
1: जी।
0: तो हम उसके हिसाब से तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी इसलिए भी छोटी पड़ जाती है ना, क्योंकि इस मामले में प्लेयर्स, मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे हैं। इस वजह से हमें उस लेवल पर अभी फैक्ट चेक करना और गलत चीजों के खिलाफ लड़ने के लिए और हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी।
1: मनीष जी, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया में आज हर परिवार का, हर समाज का, हर वर्ग का लोग बहुत बुरी तरीके से जुड़ चुका है? उसको देखना ही देखना है, किसी भी तरह की खबरों हो, चाहे उससे मतलब की हो या उसके मतलब की ना हो। ये दूर कर रहा है लोगों को या आपस में जोड़ रहा है?
0: ये दूर भी कर रहा है और जोड़ भी रहा है। इसके दोनों पहलू हैं। एक साथ रहने वाले लोगों के बीच दूरी बढ़ गई है, लेकिन दूर रहने वालों के बीच नजदीकी बढ़ गई। हमारे मामा के लड़के का बेटा, उससे हम बात कर लेते हैं फोन पे, एक घंटा बात कर लेंगे, लेकिन घर में अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी माँ, इनसे बात करने का उतना समय शायद आज खासकर शहरी, हालांकि शहरी और देहात

0: जनता के बीच अब इस मामले में तो कोई भेद नहीं रह गया है। तो कोई भी चीज जिससे हमें बहुत सारी सुविधा मिलती है, उसकी कुछ असुविधा को हमें सहन करना पड़ता है।
1: मनीष जी, आज हर घर में समाचार पत्र आज भी आता है, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के साथ एक चुनौतीपूर्ण समय है क्या?
0: नहीं, चुनौतीपूर्ण समय तो पिछले 1.5 दशकों से चल रहा है, खासकर कोरोना के बाद से तो बहुत ही मुश्किल हो गई है। इसीलिए आप देखिए कि प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसकी जगह डिजिटल मीडिया ने ले ली है। और यही वजह है कि चाहे कोई अखबार का संस्थान हो या टीवी का संस्थान हो या कोई भी हो, आप देखिए सबका अपना स्ट्रांग डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि उसके बिना अब सर्वाइवल नहीं है। जहां तक आपने अखबार और टीवी की बात की, वो एक आदत भी है जो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में खासकर जो जेनरेशन अब की है, जो कॉलेज में जा रही है, अब वो जब नौकरी करने लगेगी 5 साल बाद 7 साल बाद, वो कितना अखबारों से अटैच हो पाएंगे, टेलीविजन चैनल से अटैच हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब अपनी जरूरत के हिसाब से सूचना प्राप्त करनी है, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब जो मिल रहा है उसे ही लेना हमें नहीं भाता है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को लेते हैं, और इसीलिए डिजिटल मीडिया इतना फेमस है।
1: युवाओं से आप अगर ये कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, कब करें, क्यों करें, किस लिए करें, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: नहीं, उनको तो बिल्कुल इससे भरसक दूर ही रहना चाहिए जब तक कि वो अपनी अच्छी पढ़ाई लिखाई में है, क्योंकि आपके पास इसका बहुत समय है। थोड़ा मोड़ा उसके बारे में जानकारी रखना भी जरूरी है, क्योंकि जमाने में क्या बदल रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, उसके बारे में जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। एडिक्शन, उससे बचना जरूरी है। इससे आप इंफॉर्मेशन लें, अपने हित में उसका इस्तेमाल करें, दुनिया में क्या चेंजेज आ रहे हैं उसके बारे में आप अपडेट रहें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जितना यूथ है जो पढ़ाई कर रहा है, सावधान रहने की जरूरत है।
1: सोशल मीडिया और हमारा जीवन, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज बातचीत करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार जी। मनीष जी, हम आपका आकाशवाणी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फरीदा खानम की गाई गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फरीदा खानम की गाई गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: हमारे बुजुर्ग जैसे बरगद की छांव, किस्से कहानियां दादा दादी के, प्यार दुलार नाना नानी का, जीवन की इस सांझ के अनुभवों को याद दिलाता है हमारा ये कार्यक्रम अक्षयवट। हर रविवार 1:30 बजे मीडियम वेव 747 MHz पर। तो सुनना ना भूलें अक्षयवट।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 KHz पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया।

0: श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3

0: लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
2: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। एआई आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
3: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
4: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
3: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जल डमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं सी रामचंद्र, फिल्म का नाम है अनारकली।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है ताजमहल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है कमर जलाल आबादी ने, धुन है हंसराज बहल की, फिल्म का नाम है चंगेज खान।

मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती।

आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है प्रेम धवन ने। संगीत है रोशन का, फिल्म का नाम है वल्ला क्या बात है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है शकील बदायूनी। संगीत है रवि का। फिल्म का नाम है घूंघट।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है काली घटा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है उड़न खटोला।
3: चले आज तुम जहां से, ठिकाना

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: यह है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर,
1: जिसे दुनिया चंदन टाकू के नाम से जानती है। और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो क्या चाहती हो?
2: मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे?
1: मांग कर देखो, 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख।
2: मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आज खिकोटे पर पैसा घुंघरुओं के झनकार के साथ बरसता है, जब चाहूं बटोर सकती हूँ।
1: फिर क्या चाहिए?
2: इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप सच जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है। आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ

0: दे सकते हैं, आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं।
1: तुम में किसी शरीफ का खून है, ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है। मैं वादा करता हूं जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा, बेझिझक उसके साथ चली जाना।
2: सन 1940 से सन 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहने वाले अभिनेता प्राण केवल सिकंद की गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीमारा में जन्म हुआ था प्राण का। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माता जी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण को शिमला जाना पड़ा जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण बने थे सीता, और प्राण ने सीता की भूमिका निभाई थी।
3: आज चाय भजी आज कोर्स नहीं मिलेगा, आज दुकान बंद है।
4: दुकान बंद है?
3: किस खुशी में? तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश।
4: अरे मैं क्यों खुश भाई?
3: हम जो बनते हो आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते, उससे खुशर पुशर बातें करते और पूछते मुझसे हो खुशी किस बात की।
4: किसने कहा तुझे सब?
3: एक काले कौए ने।
4: काले कौए ने?
3: हाँ, सुबह ही सुबह आया था। हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है।
4: साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे?
3: अरे बड़े खुश नसीब। अच्छा ये बताओ कि अब कब इंतजाम करूँ?
4: किस चीज का?
3: अरे पंडित का, मंडप का, ढोल तमाशे का, बाजे का,
4: बस,
3: बारात
4: बस, बस,
3: का।
4: बस, बस, बस, बस, प्यारे भैया यही तो तुम में एक कमजोरी है।
3: क्या?
4: आम पके नहीं कि सारे मोहल्ले को दावत दे दी।
3: अरे भैया जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी, एक बार मुझे उससे मिला दो
4: ताकि तू तो अपनी बड़बड़ शुरू कर दे।
3: अरे भाई तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुन सुन सुनो, गुस्से मत हो, अगर तुम बोलो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

0: जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोल।
1: लाहौर की हीरा मंडी में मौजूद एक दुकान पर संयोगवश प्राण की मुलाकात दल सुख पंचोली की यहाँ नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी।
2: कैदी नंबर 602
3: हाजिर है।
2: सर झुकाकर बात करो।
3: ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा।
2: बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड

0: कर चुका हूँ।
1: तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है।
0: लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूँ। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए।
2: सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुईं, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही

मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से

0: उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला।
1: मेरे बात करने का तरीका गलत था।
2: तरीका छोड़ो साहेब, बात गलत था। Anyway, have a drink. कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा।
1: नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता।
2: पर हम तो 24 घंटा पीता है साहेब। आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू व्यक्ति। लेट गो, कोई मतलब का बात है? बोलो।
1: आप ही के मतलब की बात है मिस्टर बर्गेंद्र। मैं पूछने आया हूँ आपको कितना पैसा चाहिए।
2: हमको कितना पैसा चाहिए? क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं।
1: बिल्कुल ठीक सुना है आपने मिस्टर बर्गेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं, और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 30,000, 50,000।
2: पैसा का खिताब लेकर आया तुम? मैन तुम वेट, यू वेट मिस्टर नाथ, तभी बताता है तुमको, यू वेट। किताब लेकर आया, पैसा दिखाना है, यू वेट मैन, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, तुम क्या समझता पैसा तुम्हारे पास, पैसा हमारे पास नहीं, देखो। लेकिन तुम बड़ा लोग के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। और हम छोटा लोग के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना उसको हम बेचता नहीं है, समझा तुम?
3: बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे, धंधा।
1: इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे?
0: फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई, और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गईं।
4: तू सुना, कॉलेज का क्या हाल है?
5: ठीक ही है, पर तू कॉलेज के बारे में क्यों पूछने लगा?
4: वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना,
5: वो हितोपदेश पंचतंत्र में से
4: कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई।
5: कौन सी?
4: वो गीदड़ बिल्ली और खरगोश की।
5: हाँ हाँ,
4: जहाँ गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे।
5: क्या बात है, दूसरे क्यों देख रहा? कहने का चाहता है
4: यही कि खरगोश अब भी संभल जा वरना फंस जाएगा। 2 दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
0: करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किया है,

0: एक तरफ होते दिलीप कुमार देव आनंद या राज कपूर हीरो के रूप में, और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण।
1: झूठ और झूठ का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोग।

0: के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम गाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमदर्द गोलू गवाह, अरे गोलू गवाह AWD मतबल एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया?
1: आया सेठ रतिराम।
0: आओ सेठ रतिराम मलंग, हमें क्या करना होगा काम?
1: तलाक का है काम, बीवी पर बचलने का इल्जाम।
2: मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ, राम कसम मुझे बचा ले।
0: अरे सतनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं
2: गोलू, ये 100 रुपया गवाही के एडवांस है।
0: सेठ अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम, अब इधर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम। चलो
1: एक नंबर का यहाँ से सेठ।
0: अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट
3: गोलू भैया।
0: अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई?
3: सेठ रतिराम की बीवी हूँ, 3 बच्चे लेकर कहाँ जाओ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं।
0: ओ भाई ये हमें नहीं मालूम, हमारा तंदा गवाही देना, तू ज्यादा पैसे दे दे।
3: उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूं।
0: ओ यही तो मुसीबत है, ये ले फट अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसी की दूंगा।
4: हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रहीं।

0: फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई।
1: देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ।

0: फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे, उन्हें महीने में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपए मिला करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रंग भी डाला। ये फिल्में थी कश्मीर की कली, पूजा के फूल और हाफ टिकट।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया।

0: गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: गुजरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: प्राण अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे, खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

मेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अब आइए सुनते हैं रूपक, इस्पात संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। लेखक हैं शाहिद अनवर, प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव रंजन तिवारी, वाचन है तासीर शाहिद का और संयोजन है राजेश कुमार राय का।

जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आँखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी

0: सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकते, वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। जेपी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन्स ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां इस सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप्स है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट्स है, सिंगबूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे, उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास, यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं। जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर किया जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती हैं कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय

0: विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
1: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
0: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में एनएमएल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
1: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाइपर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर, इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
2: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं।
0: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
2: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग ईवी, रोबोटिक्स, अभी AI का युग आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जी भाई, ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
3: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी

0: पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉरपोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है, जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन

0: विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉरपोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है, जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
2: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उसमें मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
1: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
2: बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
1: एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपने आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
2: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
1: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
3: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल के दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है, ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
1: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
3: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ो मादर की थाप गुजती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारी जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों के बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
1: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम

0: बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
1: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
1: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है। और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहते हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई, और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहां लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है TFA का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं, ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम

0: में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो एक कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
1: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
2: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुरती जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है। तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
2: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहां पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
3: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियाँ मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आँखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहाँ प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहाँ खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहाँ संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहाँ विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है, तरक्की की

ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग बारुआ में उस्ताद नसीर खां का सारंगी वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग बारुआ में उस्ताद नसीर खां का सारंगी वादन। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है।

0: जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधान